0: 4 PM on Radio Tarana.
1: हाय लिसनर्स, रेडियो तराना सुन रहे हैं आप और मैं हूं नेहा आपके साथ. स्वागत करती हूं आप सभी का अभी के रेडियो तराना पर इन द शो चिल विद नेहा. वेल सैटरडेज को मैं थोड़ा जल्दी आ जाती हूं आपके साथ चिल करने के लिए. 12 बजे के बाद से ही हम साथ में चिल करते हैं. वैसे यूजुअली मंडे टू फ्राइडे इट्स 1 PM to 4 PM एंड सैटरडे फ्रॉम 12 PM to 4 PM. अच्छा, अब कल फ्राइडे हमने बड़ी फैंटास्टिक पार्टी की और पार्टी वाला जो मूड है ना वो इतना ज़बरदस्त बना. इतने हमारे लिसनर्स ने उस पार्टी म्यूजिक को एंजॉय किया कि मैंने सोचा कि आज उस पार्टी मूड को बरकरार रखते हुए शो के पहले 2 आवर्स में हम म्यूजिक को थोड़ा अपबीट एंड हैप्पी एंड पार्टी साउंड का ही रखते हैं. 2 बजे के बाद फिर थोड़े मेलो एंड रोमांटिक नंबर्स की तरफ चलेंगे, बट अभी से लेकर 2 बजे तक और पार्टी करते हैं. और आज 90s की डांस पार्टी करते हैं क्योंकि ये थीम भी मेरे लिसनर्स बहुत पसंद करते हैं. और जब भी कभी मैं 90s की डांस पार्टी लेकर आती हूँ ना तो बस सबका एक अलग ही तरह का मूड बन जाता है. सो आज 90s डांस पार्टी में ओनली 90 के डांस नंबर्स आपके लिए स्टार्टिंग विद दिस सॉन्ग.

0: Streaming now on Rover. Tirana.
1: Chemist Warehouse has now opened in Fangaparua. Find the new Chemist Warehouse in Fangaparua next to the Coast Shopping Mall.
2: With the biggest range of all your health and beauty essentials at the lowest prices. They've got everything you need to look and feel your best. They are open 7 days a week from early till late, including public holidays. If you can't make it in-store, shop online 24/7. Chemist Warehouse, great savings every day.
3: पापाटोई, फ्लैटबुश और पापाकुरा के बाद अब डीएच सुपरमार्केट का सबसे बड़ा स्टोर खुल गया है इन हेंडरसन.
4: दैट्स राइट, योर लोकल इंडियन ग्रोसरी स्टोर नाउ इन हेंडरसन एट 5 मोजेल एवेन्यू ऑफ लिंकन रोड हेंडरसन. ह्यूज क्लीन हाइजीनिक प्लेस टू शॉप विद एम्पल पार्किंग. यहाँ पर आपको मिलेंगे फ्रेश वेजिटेबल्स, ऑथेंटिक स्पाइसेस और सभी इंडियन ग्रोसरी सामान बहुत ही अच्छे प्राइसेस में. डीएच सुपरमार्केट नाउ इन हेंडरसन एट 5 मोजेल एवेन्यू ऑफ लिंकन रोड.
5: घर बनाना स्टार्ट किया है, अब तो टेंशन ही टेंशन है.
6: बिल्डर कौन है तुम्हारा?
5: अभी डिसाइड ही नहीं किया, सब अलग अलग बातें बोल रहे हैं.
6: यार सिंपल है, केएमबी कंस्ट्रक्शन से बात करो.
5: क्या स्पेशल है उनमें?
6: अरे वो घर ऐसा बनाते हैं बिना स्ट्रेस, टाइम पे और बजट के अंदर. 18 सालों का एक्सपीरियंस है ऑकलैंड में और जो काम लेते हैं कम्प्लीट करके ही देते हैं. भूपेंद्र कुमार को कॉल करो 021-874-871 पर या विजिट करो kmbconstruction.co.nz.
7: Harvey Norman's Super Weekend. Spend $500 or more on selected products and get 10% of your purchase price in Harvey Norman bonus gift cards. That's 10% of your purchase price back in bonus gift cards. Shop in store and online. See stores or online for more details. Harvey Norman's Super Weekend. Spend $500 or more on selected products and get 10% of your purchase price in Harvey Norman bonus gift cards. Must end Sunday. Terms, conditions, and exclusions apply. Bonus gift cards valid for 36 months.

0: dreaming now on Rover, Tirana.
1: Harvey Norman's Super Weekend. Spend $500 or more on selected products and get 10% of your purchase price in Harvey Norman bonus gift cards. That's 10% of your purchase price back in bonus gift cards. Shop in store and online. See stores or online for more details. Harvey Norman's Super Weekend. Spend $500 or more on selected products and get 10% of your purchase price in Harvey Norman bonus gift cards. Must end Sunday. Terms, conditions and exclusions apply. Bonus gift cards valid for 36 months.
2: न्यूजीलैंड के कई बड़े बड़े इवेंट्स में होने वाले जो बड़े बड़े माकी आप देखते हैं ना, अरे मनकाओ दिवाली सिख गेम्स में ये माकी इवेंट्स ऑकलैंड माकी एंड पार्टी हायर के हैं। 20 सालों से हैं बिजनेस में। इनके माकी बड़े स्ट्रांग होते हैं बॉस। घर पे फंक्शन हो तो टाइम पर माकी लग जाएगा और टाइम पर उतर भी जाएगा। इवेंट्स ऑकलैंड का नंबर लिखें 09265 0505 और सुनिए, ये पोर्टल लू भी हायर पर देते हैं। इवेंट्स ऑकलैंड को कॉल करें 09265 0505
3: और तराना का नाम मेंशन करने पर आपको स्टेज हायर्स, मंडप और माकीज पर अप टू 5% का डिस्काउंट भी मिलेगा।
4: यार मुझे फिजी जाना था।
5: कब जाना है?
4: दिसंबर की छुट्टियां हो जाए तब जाएंगे।
5: रेंटल सॉर्ट आउट कर लिया?
4: नहीं यार, नहीं मिला कुछ।
5: आई थिंक यू शुड कॉन्टेक्ट कोस्टल रेंटल कार्स। इनके पास फैमिली कार्स, SUVs और सभी लग्जूरियस गाड़ियां हैं और गाड़ियां अच्छी कंडीशंस में।
6: कोस्टल रेंटल कार्स, विजिट coastalrentalcars.com.fj और फॉर बुकिंग्स कॉल ऑन 00679-652-0228।
7: एक्सप्लोर फिजी द कोस्टल वे।
8: Indelible Homes are specialized in building high-quality standalone and terraced houses at very reasonable prices. Please send your RC, BC drawings and they will build for you. Visit IndelibleHomes.co.nz or call 0800-233-111. That's 0800-233-111.
9: Radio Tirana, ka hai ye plan? Business ko banaye Superman.
10: Apne business ko lekar jaiye nayi unchaiyon par by advertising on the leading radio station, Radio Tirana.

Call Ajeshni today on 021-96-1386 for sales on Tarana. So yaad rakhna, number ghumana, 021-96-1386 for advertising on Radio Tarana. यस, रेडियो तराना के साथ अगर आप एडवर्टाइज करना चाहते हैं तो अजेशनी को 021-96-1386 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. एंड यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस इनक्रेडिबल प्लेस विच इज द वर्ल्ड ऑफ रेडियो एडवर्टाइजिंग. जब कोई सुनता है तो सुनकर उन्हें किस तरह से अपीलिंग लगता है आपका प्रोडक्ट या आपकी सर्विस, एंड हाउ दे फील दैट हाँ, इस बिजनेस के साथ हमें भी जुड़ना है या हमें भी इन्हें कॉन्टैक्ट करना है. एंड आई टेल यू व्हाट, जो चीज़ें हम सुनते हैं ना, वो कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस में रहती हैं. तो सपोज़ किसी को अभी एकदम, जैसे अभी एक ड्राई क्लीनर की ऐड आती है, ज़रूरी नहीं कि मुझे अभी ड्राई क्लीनर की ज़रूरत है, बट जब भी कभी होगी ना, मुझे वो ड्राई क्लीनर का ध्यान नहीं आएगा जिसके बारे में शायद मैंने कहीं ऐड देखी थी या कहीं पैम्फलेट पढ़ा था. सीधा जो मैंने सुना था ना, वो नाम एकदम से मेरे दिमाग में रेजोनेट होगा, वो जहन में आएगा, क्योंकि वो चीज़ सुनी हुई थी. तो अंदर से जब आपका माइंड आपसे बात करेगा, जब आप खुद से अंदर कहेंगे यार ड्राई क्लीनर चाहिए, यार ड्राई क्लीनर, तो अंदर से वो आवाज़ आई है, स्टोडा रोड ड्राई क्लीनर्स, हमने सुना था. दैट इज़ हाउ रेडियो एडवर्टाइजिंग वर्क्स एंड दैट इज़ हाउ पावरफुल इट इज़. तो अगर आप भी ट्राई आउट करना चाहते हैं रेडियो एडवर्टाइजिंग, तो ज़रूर अजेशनी से बात कीजिएगा ऑन 021-96-1386. फिलहाल आप इन्जॉय कर रहे हैं 90s की डांस पार्टी मेरे नेहा के साथ में. और आज क्या है कि मैं जोड़ियों में गाने प्ले कर रही हूँ. जैसे आपने नोटिस किया होगा, पहले मैंने आपको दो गाने सुनाए फ्रॉम द फिल्म मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, फिर दो डांस नंबर्स हमने इन्जॉय किए फ्रॉम द फिल्म इश्क. अब इसी तरह से दो 90s के डांस नंबर्स हम इन्जॉय करने वाले हैं बैक टू बैक फ्रॉम द फिल्म बड़े मियाँ छोटे मियाँ.

0: स्ट्रीमिंग नाउ ऑन रोवर टिराना।
1: वीकेंड में घर का सामान लेना है तो ग्रोसरी शॉपिंग के लिए पहुंचे 5 मोजेल एवेन्यू ऑफ लिंकन रोड हेंडरसन, जहां पर है DH सुपरमार्केट। और वीकेंड स्पेशल्स में आपको मिलेंगे फ्रेश टमाटोज 199 kg, ओकरा 999 kg, होल मिल्क पाउडर फ्रॉम इक्लिप्स 1 kg 999, एंड मेनी मोर इन स्टोर डील्स एट DH सुपरमार्केट हेंडरसन।
2: डिड यू नो अ सिंपल क्लीन ऑफ योर हीट पंप फिल्टर कुड सेव यू अप टू $50 अ ईयर ऑन योर एनर्जी बिल्स? All it takes is a quick vacuum or a light wash every few months. Search EECA, that's EECA, get winter ready.
3: NZ Post is always nearby. With over 560 stores across the country, you can always count on us to keep bringing the services you need close to home. Find your local at nzpost.co.nz.
4: Stay tuned to Tarana for all IPL updates.
5: IPL, the Indian Premier League. Get behind your favorite IPL team. Kyunki hum denge IPL par sabhi updates, reviews aur previews. Stay tuned to Tarana.
6: Brought to you by Indelible Homes and Chasers.
7: Hi, I'm Ravina Tandon and you're listening to Radio Tarana New Zealand.

0: है एकदम डिलाइटफुल 100% वेजिटेरियन जेलेटिन फ्री एंड ग्लूटेन फ्री। स्मूदीज बनानी हो या मैरिनेशन मसाला या बस सीधा टब से खाने का दिल हो तो इंजॉय करे कशिश नेचुरल योगर्ट क्योंकि ये है नेचुरली डिलिशियस। अवेलेबल एट ऑल इंडियन सुपरमार्केट्स अक्रॉस न्यूजीलैंड। ब्रिंग होम द टेस्ट ऑफ ट्रेडिशन कशिश नेचुरल योगर्ट।
1: ताजी एजे के घर दिया और हमें
2: तुम्हारे पास तो है घर
1: वो तो हम खरीदा है तुम नहीं देगा हमें कुछ
2: ये तुम लोगों को जो मंगता हमसे है हमें दे देगा कि नहीं यार
1: रान दो नहीं मंगता
2: तुम चाहे मुंह फुलाओ चाहे चिल्लाओ एक सेंट नहीं देगा।
1: हाँ सब लेके जाना।
2: हाँ हम लेके जाएगा लड़कन तो हमने कंगाल कर दी यार चल दो यहाँ से।
3: ताजी के नहीं तंग करो अपन घर अपने बनवा लो। इंडेलिबल होम्स के रिंग करो 0800-233-111 पे।
4: For 53 years, no one has sold more sofas to New Zealanders than Big Save. Whatever your style, we have the perfect sofa for you. And today we're having a massive sofa sale. Get huge savings on three-seater sofas, recliners, lounge suites, corner suites and lazy boy recliners. Three-seaters from only $6.99 or get two recliners only $9.99. Stock is limited. These sofa deals won't last. Only at Big Save.
5: बोर्ड
6: उदास हो
5: एक्साइटमेंट की बत्ती फ्यूज
6: तो सुनो चटपटी ट्रेंडिंग न्यूज
5: उस पर जो जोड़े आपको अपनों के साथ आपका साथी परसों पुराना
6: चलो समेटो खुशियों का खजाना
5: ओनली ऑन।

0: चिल विद नेहा
1: मंडे टू सैटरडे रेडियो तराना पर 1 से 4
0: चिल विद नेहा
1: हम करेंगे मिलकर चिल Hi listeners, रेडियो तराना सुन रहे हैं आप और मैं हूँ नेहा आपके साथ इन द शो चिल विद नेहा. स्वागत करती हूँ एक बार फिर आप सभी का आज शनिवार की दोपहर के इस प्रोग्राम में जिसमें आज चल रही है हमारी 90s की डांस पार्टी. मजा आ रहा है क्योंकि ये वो सारे गाने हैं जो हमने उस दौर में सुने हैं, मतलब फॉर मोस्ट ऑफ अस हु हैव ग्रोन अप इन द 90s जब हम यू नो वी वर जस्ट स्टूडेंट्स. और स्टूडेंट लाइफ में जो गानों के साथ आप कनेक्ट करते हो क्योंकि उस टाइम पे आपकी एनर्जी अलग होती है डांस करने की. मतलब आई रिमेम्बर मैं जब कोई फंक्शन में, बर्थडे में या शादी वगैरह में जाती थी, मुझे सिर्फ होता था कि मैं यहाँ डांस करने आई हूँ. और हमें क्या, मेरे को कोई वो शर्म नहीं आती थी कि अभी कोई डांस फ्लोर पे है नहीं तो मुझे जाकर नहीं डांस शुरू करना चाहिए. मैं जाके डांस शुरू कर देती थी. कई बार मुझे बाकी रिलेटिव्स कहते थे, अरे अभी कोई डांस नहीं कर रहा, साइड में आके बैठ जाओ. मुझे लगता था कोई और नहीं कर रहा तो मुझे तो डांस करने दो यार. तो आई मोस्टली यूज टू ओपन द डांस फ्लोर इन माई फैमिली फॉर ऑल द फंक्शंस. एंड उसके बाद जब धीरे धीरे म्यूजिक और लाउड हो जाता था और भी ज़्यादा फ्लो में चलने लग जाता था और पार्टी और ज़बरदस्त हो जाती थी, उसके बाद तो मैं डांस फ्लोर छोड़ती ही नहीं थी. फिर खाना वहाँ लग जाता था, मेरी मम्मी को आके मुझे खींचना पड़ता, नेहा चल खाना खा ले खाना. मुझे नहीं खाना है यार, खाना खाने थोड़ी आते हैं पार्टी में. पार्टी में तो पार्टी करने आते हैं, डांस करने आते हैं. सो या आई रियली कनेक्ट विद दीज सॉन्ग्स क्योंकि ये वो सारे गाने हैं जो हम उन पार्टीज में सुनते थे. और जैसे ही ये गाने बजते थे, बी इट मेरा पिया घर आया या शहर की लड़की या तू चीज बड़ी है मस्त मस्त या सपने में मिलती है, तो अपने आप धड़ाधड़ डांस शुरू हो जाता था. जिसे कहते हैं ना, डांस निकल ही जाता था अपने अंदर से. तो इस आवर में भी इस 90s की डांस पार्टी को जारी रखते हुए और भी मस्त मस्त गाने एंजॉय करते हैं. और इस बार जो दो गाने मैं जोड़ी में प्ले करने वाली हूँ, अरे बड़े ही ज़बरदस्त गाने हैं. दोनों सुपर्ब AR रहमान कॉम्पोजिशंस एंड दे आर रंगीला एंड हम्मा हम्मा. एंजॉय.

0: Dreaming Now on Rover Tirana.
1: बच्चों बताओ डिस्टेंस कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला है?
2: मैम डिस्टेंस इक्वल्स स्पीड इनटू टाइम।
1: जीनियस। अब बताओ रीपेमेंट बढ़ाए बिना मॉर्गेज जल्दी खत्म करने का क्या फॉर्मूला है?
2: मैम ग्लोबल फाइनेंस का मॉर्गेज जीनियस प्लान।
3: बच्चा जानता है कि मॉर्गेज जल्दी खत्म करने का यही फॉर्मूला है ग्लोबल फाइनेंस का मॉर्गेज जीनियस प्लान। फोन 09255500। टीज एंड सीज अप्लाई। इस मदर्स डे को बनाए और भी स्पेशल डिजी सेल के साथ। बस भेजे $20 या उससे ज्यादा का टॉप अप या $300 या उससे ज्यादा का कैश ट्रांसफर इनकी किसी भी पार्टनर वेबसाइट से माई कैश वॉलेट के साथ टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स इन द पैसिफिक। और आपका नाम तुरंत जाएगा ड्रॉ में टू विन वन ऑफ द 15 $500 कैश प्राइज। तो $20 का टॉप अप भेजे या $300 का कैश और डीजी सेल के साथ मौका पाए जीतने का $500 कैश। टीज एंड सीज अप्लाई।
4: Get mum a gift, she'll love them.
5: We've got plants, the hanging baskets, the seedlings. We've got a really good range of coloured pots as well. This year, give a Mother's Day gift that keeps on growing.
6: 17 centimetre peace lily, only $52.97. Fisker's Ruby Bypass Pruners, $36.95. Northcote Pottery 20 centimetre Paloma Egg Pot, just $19.98.
5: Pop into Bunnings and find something she'll love.
7: Bunnings Warehouse.
5: Lowest prices are just the beginning.
3: पापा टॉय फ्लैट बुश और पापाकुरा के बाद अब DH सुपरमार्केट का सबसे बड़ा स्टोर खुल गया है इन हेंडरसन। दैट्स राइट, योर लोकल इंडियन ग्रोसरी स्टोर नाउ इन हेंडरसन एट 5 मोजेल एवेन्यू ऑफ लिंकन रोड हेंडरसन। ह्यूज क्लीन हाइजीनिक प्लेस टू शॉप विद एम्पल पार्किंग। यहाँ पर आपको मिलेंगे फ्रेश वेजिटेबल्स, ऑथेंटिक स्पाइसेस और सभी इंडियन ग्रोसरी सामान बहुत ही अच्छे प्राइसेस में। DH सुपरमार्केट नाउ इन हेंडरसन एट 5 मोजेल एवेन्यू ऑफ लिंकन रोड। Yes, DH सुपरमार्केट है 5 मोजेल एवेन्यू विच इज ऑफ लिंकन रोड हेंडरसन में। और वीकेंड में काफी अच्छे इनस्टोर स्पेशल्स ये दे रहे हैं, जैसे फ्रेश टमाटोज 199 kg, फ्रेश ओकरा 999 kg। इसके अलावा दे हैव गॉट डील्स ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक सनफ्लावर ऑयल 5 लीटर 16.99, एक्लिप्स होल मिल्क पाउडर 1 kg 9.99, और भी बहुत सारी इनस्टोर डील्स है विच यू माइट वॉन्ट गो एंड चेक आउट एट DH सुपरमार्केट जो अब खुल चुका है एट 5 मोजेल एवेन्यू ऑफ लिंकन रोड इन हेंडरसन। ओके, शॉपिंग वॉपिंग भी होती रहेगी और साथ में पार्टी शार्टी भी चलती रहेगी 90s की डांस पार्टी में। इस बार एंजॉय करते हैं ये गाना।

0: Streaming now on Rover. Tirana.
1: इस मदर्स डे को बनाए और भी स्पेशल डिजी सेल के साथ बस भेजे $20 या उससे ज्यादा का टॉप अप या $300 या उससे ज्यादा का कैश ट्रांसफर इनकी किसी भी पार्टनर वेबसाइट से माय कैश वॉलेट के साथ टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स इन द पैसिफिक और आपका नाम तुरंत जाएगा ड्रॉ में टू विन वन ऑफ द $15,500 कैश प्राइज तो $20 का टॉप अप भेजे या $300 का कैश और डीजी सेल के साथ मौका पाए जीतने का $500 कैश टीज एंड सीज अप्लाई
2: यार मुझे फिजी जाना था
3: कब जाना है
2: दिसंबर की छुट्टियां हो जाए तब जाएंगे
3: रेंटल सॉर्ट आउट कर लिया
2: नहीं यार नहीं मिला कुछ
3: आई थिंक यू शुड कॉन्टेक्ट कोस्टल रेंटल कार्स इनके पास फैमिली कार्स SUVs और सभी लग्जूरियस गाड़ियां हैं और गाड़ियां अच्छी कंडीशंस में
4: कोस्टल रेंटल कार्स विजिट coastalrentalcars.com.fj और फॉर बुकिंग्स कॉल ऑन 00679-652-0228
5: एक्सप्लोर फिजी द कोस्टल वे
6: Resene is New Zealand's most trusted paint brand, made in New Zealand for our unique conditions. Resene's quality, innovative paints and wood stains plus the huge variety of colors are ideal for homeowners and professional painters. Always choose Resene for your decorating projects.
7: White Dwarf free-range chicken, full of natural goodness and deliciousness. For that summer barbecue feeling, all the feels for all the meals. Available in your local supermarket now.
8: Ladies and gentlemen,
9: after all the morning hustle and bustle, and before the evening rush, it's time to chill in the afternoon. Chill with Neha. Chill with Neha. Monday to

0: Dreaming Now on Rover, Tirana.
1: चाहे पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हो या आप फ्यूचर की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, स्मार्ट चॉइस अब सिंपल है. वेस्ट सिटी GWM हवेल. हवेल की हाइब्रिड और प्लग इन हाइब्रिड रेंज पर डिस्काउंट्स और सिर्फ 4.95% फाइनेंस ऑफर्स. आज ही वेस्ट सिटी ऑटो ग्रुप पहुँचे और जिमी टेला और उनकी एक्सपर्ट टीम से मिले. लिमिटेड टाइम ऑफर, टीज एंड सीज अप्लाई. For more information, visit westcityautogroup.nz or search on socials for West City Auto Group.
2: Harvey Norman's Super Weekend. Spend $500 or more on selected products and get 10% of your purchase price in Harvey Norman bonus gift cards. That's 10% of your purchase price back in bonus gift cards. Shop in store and online. See stores or online for more details. Harvey Norman's Super Weekend. Spend $500 or more on selected products and get 10% of your purchase price in Harvey Norman bonus gift cards. Must end Sunday. Terms, conditions and exclusions apply. Bonus gift cards valid for 36 months.
3: श्री वेंकटेश्वरा देवस्थानम चैरिटेबल ट्रस्ट आप सबको आमंत्रित करते हैं इनके भोजन मेला फूड कार्निवल में टू सपोर्ट लॉर्ड वेंकटेश्वरा टेंपल प्रोजेक्ट.
4: ये होगा संडे 17th मई को 11 AM टू 4 PM
3: 378 आरारीमू रोड रामारामा साउथ ऑकलैंड में. एंट्री फ्री है. फ्री सॉफ्ट ड्रिंक्स रहेंगे. फ्री फूड बाय शिवानी रेस्टोरेंट एंड इडली सांबर. ज्वेलरी एंड क्लोथिंग स्टोर्स, हेना आर्टिस्ट, फेस पेंटिंग, बाउंसी कासल्स और बहुत कुछ.
4: और इन्फॉर्मेशन के लिए कॉन्टेक्ट करें शिवानी जी को 0218700012 पर.
3: One temple, one community, eternal blessings.
4: इस मदर्स डे को बनाए और भी स्पेशल डीजी सेल के साथ. बस भेजे $20 या उससे ज्यादा का टॉप अप या $300 या उससे ज्यादा का कैश ट्रांसफर इनकी किसी भी पार्टनर वेबसाइट से माई कैश वॉलेट के साथ टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स इन द पैसिफिक. और आपका नाम तुरंत जाएगा ड्रॉ में टू विन वन ऑफ द 15 $500 कैश प्राइज. तो $20 का टॉप अप भेजे या $300 का कैश और डीजी सेल के साथ मौका पाएं जीतने का $500 कैश. टीज एंड सीज अप्लाई. मदर्स डे आने वाला है नेक्स्ट संडे को. विल बी सेलिब्रेटिंग मदर्स डे. सो यार जस्ट अ वीकेंड टू गो, मतलब जस्ट अ वीक टू गो एंड नेक्स्ट वीकेंड में मदर्स डे रहेगा. आई एम श्योर आपने भी अपनी मामा के लिए कुछ स्पेशल प्लान कर लिया होगा. एंजॉय एंड हैव अ ग्रेट मदर्स डे एवरीवन. फिलहाल वी आर हैविंग अ ग्रेट टाइम. इस वीकेंड को भी हम इन्जॉय कर रहे हैं. वैसे इन्जॉयमेंट आज शाम को भी बड़ी ज़बरदस्त वाली होने वाली है. फिकलिंग कन्वेंशन सेंटर में आज शाम को हमारा भजन क्लबिंग इवेंट हो रहा है जिसका नाम है सात्विक बीट्स. देखो जब ये बढ़िया बीट्स बजती हैं, जब इस तरह का म्यूजिक बजता है, हमारा डांस करने का दिल करता है ना. बट जनरली क्या होता है, पार्टीज को लोग कनेक्ट करते हैं विद लॉट ऑफ एल्कोहल, ड्रिंक्स एंड दैट काइंड ऑफ एटमोसफेयर. बट ये एक डिफरेंट एटमोसफेयर आपको आज शाम को एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा फिकलिंग कन्वेंशन सेंटर में, जहाँ सात्विक माहौल रहेगा. सो देर इज़ नो एल्कोहल, देर इज़ नो यू नो मीट, देर इज जस्ट प्योर क्लीन हैप्पी पॉजिटिव एनर्जी एंड देर इज गुड म्यूजिक, यू नो गुड लाउड हैप्पी म्यूजिक जिसके साथ आप भी झूम सकेंगे, नाच सकेंगे, इंजॉय कर सकेंगे एक सात्विक अंदाज में. तो अगर आप ये एक्सपीरियंस करना चाहते हैं आज शाम को जरूर आइएगा. देयर आर वेरी फ्यू टिकट्स, आई थिंक लास्ट 50 टिकट्स ही बची हैं जो डोर सेल्स के लिए हमने रखी हैं. सो ड्रॉप बाय इफ यू कैन एट फिकलिंग कन्वेंशन सेंटर आज शाम को 7:30 PM टू 9:30 PM ये भजन क्लबिंग इवेंट होने वाला है. पर फिलहाल हम यहाँ पर हमारी क्लबिंग और पार्टी को जारी रखते हुए इस बार 90s डांस पार्टी में इंजॉय करते हैं कुछ गोविंदा सॉन्ग्स. क्योंकि अगर गोविंदा साहब के गाने ना बजे और डांस फ्लोर पर गोविंदा के स्टाइल में हमने ठुमके नहीं लगाए तो फिर वो पार्टी 90s डांस पार्टी अधूरी रह जाएगी. सो हियर आर सम गोविंदा नंबर्स फॉर ऑल ऑफ यू. एंजॉय.

0: Drawing inspiration from urban communities around the world,
1: we present Big O Toy Toy, a brand new urban development in Papa Toy Toy. Brick, low maintenance, 2 and 3 bedroom homes from 649,000.
0: 5 minutes from New World, eateries, schools, City Rail Link, Pohinui Bus Interchange, and major motorways.
1: Join the new community. Selling now. Find out more at Big O Toy Toy. .nz.
0: That's PIKOTOETOE.NZ.
2: गौर से सुने, ब्लॉक हाउस बे में फुली फेनिस्ड ग्रैनी फ्लैट रेंट पर अवेलेबल है. एक्सेलेंट क्वाइट लोकेशन, न्यू हीट पंप जस्ट इंस्टॉल्ड, वाईफाई सर्विस अवेलेबल, रेंट ओनली $450 पर वीक. कॉन्टेक्ट 021-708-080. That's 021-708-080.
3: There's never been a better time to send Solly with Western Union. Right now, when you give to your family back home, you'll get a little something for yourself too. Make 2 transfers of $200 New Zealand or more to Fiji before the 4th of May, and you'll get a Digicel or Vodafone mobile top-up voucher. Oh, who's that calling? Say hi from Western Union. Stocks limited. Visit westernunion.com for terms and conditions and participating agent locations.
4: Harvey Norman's Super Weekend. Spend $500 or more on selected products and get 10% of your purchase price in Harvey Norman bonus gift cards. That's 10% of your purchase price back in bonus gift cards. Shop in store and online. See stores or online for more details. Harvey Norman's Super Weekend. Spend $500 or more on selected products and get 10% of your purchase price in Harvey Norman bonus gift cards. Must end Sunday. Terms, conditions and exclusions apply. Bonus gift cards valid for 36 months.
5: Want to save $500 on your booking at Flight Centre? Bundle your international flights with travel insurance plus an international cruise or tour of 7 nights and save. Terms and conditions apply. Book in store now.
6: सुबह की जद्दोजहद के बाद और शाम की अफरा तफरी से पहले दोपहर में करे थोड़ा chill with Neha
7: Monday to Saturday 1 PM to 4 PM on Radio Tarana.
0: हेलो हेलो हेलो, वेरी गुड आफ्टरनून लिसनर्स. रेडियो तराना सुन रहे हैं आप और मैं हूं नेहा आपके साथ इन द शो चिल विद नेहा. स्वागत करती हूं एक बार फिर आप सभी का आज शनिवार की दोपहर के इस प्रोग्राम में. अच्छा, डांस वांस करके अब जब हम थक गए हैं या जब हम थक जाते हैं तो क्या करते हैं, फिर हम रिलैक्स करते हैं और कुछ सूदिंग गानों का मजा लेते हैं. तो 90s की थीम को बरकरार रखते हुए अब मैंने सोचा है कि पहले 2 घंटों की डांस पार्टी के बाद अब 90s रोमांटिक फीवर की तरफ हम आगे बढ़ते हैं. 90s अनडाउटेडली एक ऐसा एरा था जिसमें सम ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल रोमांटिक नंबर्स आए और हमारे दिल को छू गए, और वो गाने हम आज तक याद करते हैं, गाते हैं, गुनगुनाते हैं और उनमें कहीं खो जाते हैं. तो आज 90s के उस रोमांटिक मैजिक में चलिए मैं और आप दोनों खो जाते हैं.

0: स्ट्रीमिंग नाउ ऑन रोवर Tirana.
1: अपने किसी भी स्पेशल ओकेजन को और भी यादगार बनाइए डीजे दिनेश के साथ. मल्टी डीजे आर नोन टू शूट क्वालिटी वेडिंग वीडियोस एंड ब्रेथटेकिंग फोटोग्राफ्स. दे ऑफर डीजे वेडिंग वीडियो एंड फोटो पैकेजेस फ्रॉम ड्रोन एंड गिम्बल शॉट्स टू 4K वीडियो शूटिंग फॉर योर नेक्स्ट बर्थडे पार्टी, गेट टुगेदर और मैसिव वेडिंग. कॉन्टैक्ट मल्टी डीजे.
2: विद ऑल लेटेस्ट इक्विपमेंट दे ऑल्सो ऑफर इजी पेमेंट ऑप्शंस. कॉन्टैक्ट डीजे दिनेश. फोन नंबर 0215847111.
3: Hey Hamiltonians, guess what? अब आपके यहाँ Hamilton में आ गया है Global Finance. For any kind of home loan, business loan, commercial loan, refixing या refinancing के लिए contact करें Global Finance को, जो mortgage के साथ साथ insurance में भी specialize करते हैं. Life, trauma, health insurance, हर चीज के लिए Global Finance. Now in Hamilton at Unit 26. 20 Clyde Street, Hamilton East. Phone 0757-0888. Global Finance, now in Hamilton. India jana hai? तो सफर भी तो वैसा ही होना चाहिए. Fly with Air India from New Zealand. Easy return connections via Australia or Singapore to India. और फिर seamless travel within India. दिल्ली हो या अमृतसर, मुंबई हो या अहमदाबाद, Air India connects you to every corner of India. वही अपनी भाषा और वही अपना स्वाद और वही friendly Indian hospitality के साथ. तो अगली बार घर का सफर हो, fly Air India. For more information, visit your local travel agent today.
4: Get the tech from Mum this Mother's Day and shop massive store-wide savings this weekend at Briscoe's. Whether it's cozy bedding or kitchen favourites, shop mum-approved deals and massive store-wide savings at Briscoe's. See online for T's and C's.
5: Do you need a new washing machine, dryer, fridge or dishwasher? Then don't miss this. Big Save's having a massive whiteware washout today. We've got New Zealand's best value whiteware deals, like get a Panasonic 6kg washing machine only $3.98 or a Samsung 236-litre fridge now only $7.99. Plus, we have stock. Take them home today, only at Big Save.

0: streaming now on Rover. Tirana.
1: अरे, Indelible Homes वाली गुड़िया इतनी बड़ी हो गई।
2: Hi, मैं हूँ गुड़िया, भाई गुड़िया, जिसके भैया ने उसे रूम से बाहर निकाल दिया था। अब मेरे पास मेरा अपना रूम है, बहुत बड़ा, बहुत अच्छा। Thanks to Indelible Homes. Thank you. See you.
1: नया घर बनाना हो या सब डिवाइड करना हो, Indelible Homes. Phone 0800-233-111.
3: भाई साहब आइए, कैसे हैं?
4: नमस्ते नमस्ते। मंडप बड़ा खूबसूरत बना है, नजर पहले वहीं गई।
3: एग्जैक्ट मंडप का है, कितना प्यारा लग रहा है ना।
4: प्यारा मंडप तो है, पर खर्चा बड़ा किया होगा भाभी जी।
3: नहीं नहीं, देखो खर्चा तो वैसे होता ही है शादी में, पर एग्जैक्ट मंडप के मंडप बहुत ही अफोर्डेबल होते हैं।
5: मंडप के मंडप खूबसूरत, अफोर्डेबल, और यू विल डील विद प्रोफेशनल्स। कॉल टुडे ऑन 0926505005 और विजिट एग्जैक्ट मंडप फेसबुक पेज।
6: और तराना का नाम मेंशन करने पर स्टेज हायर, मंडप और मार्कीज पर आपको मिलेगा 5% का डिस्काउंट।
7: पापा टोय, फ्लैट बुश और पापाकुरा के बाद अब DH सुपरमार्केट का सबसे बड़ा स्टोर खुल गया है इन हेंडरसन। दैट्स राइट, योर लोकल इंडियन ग्रोसरी स्टोर नाउ इन हेंडरसन एट 5 मोजेल एवेन्यू ऑफ लिंकन रोड, हेंडरसन। ह्यूज क्लीन हाइजीनिक प्लेस टू शॉप विद एम्पल पार्किंग। यहाँ पर आपको मिलेंगे फ्रेश वेजिटेबल्स, ऑथेंटिक स्पाइसेस और सभी इंडियन ग्रोसरी सामान बहुत ही अच्छे प्राइसेस में। DH Supermarket now in Henderson at 5 Moselle Avenue off Lincoln Road.
8: कौन?
9: मैं यमराज हूँ।
8: ओहो, जय हो महाराज, लेने आए हो तो चलो।
9: कमाल है, जाने की इतनी जल्दी?
8: हाँ, मैंने अच्छी लाइफ जी है अभी तक, और आगे मेरे फैमिली का भविष्य भी एकदम सेट है। ग्लोबल फाइनेंस वालों ने मेरा लाइफ इंश्योरेंस एकदम अप टू डेट कर रखा है।
9: फिर तो तुम्हें यहाँ कुछ और दिन रहना चाहिए और ये ज्ञान सब में बांटना चाहिए।
8: ओके, थैंक यू महाराज, मैं बांटता हूँ ये ज्ञान। सभी को कॉल करना चाहिए ग्लोबल फाइनेंस को 0925555500 पर।
10: नमस्ते ओकलैंड, मुश्किल वक्त में सिंग्स फ्यूनरल सर्विसेज आपके साथ हैं।
11: ये ऑफर करते हैं कंप्लीट फ्यूनरल पैकेज सिर्फ $4,299 से।
10: इस पैकेज में शामिल है ट्रांसफर्स, एम्बामिंग और सर्टिफिकेट, ग्रोवना कास्केट, लाइव स्ट्रीमिंग, एक घंटे का चैपल सर्विस, क्रिमेशन या बुरियल, डॉक्टर सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट अप्लाई एंड प्रोड्यूस करना, ओवरसीज रिपेट्रिएशन अवेलेबल है।
11: ये विन्स अप्रूव्ड है, ऑकलैंड रीजन के लिए वैलिड।
10: ऑकलैंड के बाहर के लिए कॉम्पिटिटिव रेट्स के लिए कॉन्टेक्ट करें शलिन सिंह को 0272929776। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
3: कई बार ना वैसे मैं हैरान हो जाती हूँ हमारी एड्स की इन टाइमिंग्स पे। अभी देखो बैक टू बैक पहले मॉर्गेज वाली एड प्ले हुई, किसकी? ग्लोबल फाइनेंस की, नहीं मॉर्गेज नहीं, इंश्योरेंस की, उनके इंश्योरेंस की वो एड थी यमराज वाली। उसके सीधा बाद सिंग्स फ्यूनरल की एड आ गई। आई मीन नॉट टू मेक फन ऑफ एनी थिंग, इट्स द ट्रूथ, वन डे वी ऑल हैव टू गो, बट आई एम जस्ट लाफिंग अबाउट कि कैसे ये दोनों एड्स प्लेस्ड थी, कि एक समय पर हम एकदम से यू नो मैं यमराज हूँ, तुम्हें लेने आया हूँ, और उसके बाद ही सिंग्स फ्यूनरल। अगर जाने का समय आ जाए तो फिर आपका परिवार कहाँ जाए? वो जाए सिंग्स फ्यूनरल के पास। एंड दिस इज एक्चुअली यू नो, हम कई बार इन चीज़ों को लेकर थोड़ा सा आई डोंट नो शाय अवे कर जाते हैं या उसके बारे में खुल के बात नहीं करते हैं, बट दिस इज द अल्टीमेट ट्रूथ, इससे क्या भागना। मैं, आप, हम सब ने एक दिन जाना है, और मुझे ऐसा लगता है कि इस ट्रुथ से शाय अवे करने से बेहतर है कि इसे मुस्कुरा कर देखो, यू नो लुक एट दैट ट्रुथ, क्योंकि जब वो ट्रुथ आपके सामने होगी और मुस्कुरा रही होगी आप पर कि देख एक दिन मैं आने वाली हूँ, यू नो ये समझो कि आपकी मौत आपसे कह रही है कि एक दिन मैं आने वाली हूँ, मृत्यु आपसे कह रही है, तो आप भी मुस्कुरा कर कहोगे कि अच्छा तूने तो आना ही है एक दिन, तब तक लेट मी एंजॉय माई लाइफ, लेट मी लिव अ गुड लाइफ, यू नो नॉट जस्ट एंजॉय लाइफ बट लेट मी लिव अ गुड लाइफ, सो दैट एटलीस्ट वाइल आई एम हियर आई एम एटलीस्ट यूजफुल फॉर दिस प्लैनेट, यू नो दिस इज माई थिंकिंग, कि जब तक यहाँ पर हो, इस धरती पर हो, तो सिर्फ धरती पर बोझ बन के मत रहो, धरती पर रहकर कुछ ऐसा करो कि धरती को भी एक मान हो कि हाँ भाई ये एक मेरा बच्चा था जो बहुत अच्छा काम करके गया है जब तक इस धरती में था, फिर बाद में तो उसी धरती में समा जाना है। तो बातों ही बातों में देखो इतनी गहरी बात आ गई। गहरी बात इसलिए आई क्योंकि गहरा म्यूज़िक भी चल रहा है, दिल की गहराइयों से निकला हुआ रोमांटिक गीतों का जो सिलसिला है वो जारी है और उसी को आगे बरकरार रखते हुए चलते हैं, एंजॉय करते हैं 90s के कुछ और बड़े ही खूबसूरत लव सॉन्ग्स।

0: streaming now on Rover. Tirana.
1: The bell has gone, but is the day really over? Between sports meetups, play dates, homework, and late shifts, you need to be putting in the right stuff. Packed with calcium, vitamins, and protein, grab some Anchor. Real milk, real good.
2: क्या काम की भाग दौड़ से कपड़ों का ढेर बढ़ता जा रहा है? वरी मत कीजिए. स्टोडा रोड लॉन्ड्री एंड ड्राई क्लीनर्स मॉन्ट्रोस के लाभ की मदद के लिए तैयार हैं. यहाँ आपको मिलता है 24 आवर्स सेल्फ सर्विस लॉन्ड्रोमैट. या फिर आप अपने कपड़े छोड़ दीजिए और इनकी टीम वॉश, ड्राई और फोल्ड करके आपको बिल्कुल तैयार देगी. यहाँ सूट्स, ब्लेजर्स, शर्ट्स, ड्रेसेस और फॉर्मल वेयर की प्रोफेशनल ड्राई क्लीनिंग भी करते हैं. और इडुवे ब्लैंकेट्स, स्पोर्ट्स गेयर की सफाई भी यहाँ पर होती है. स्टोडा रोड लॉन्ड्री एंड ड्राई क्लीनर्स 220 आसान, भरोसेमंद और 24/7.
3: वीकेंड में घर का सामान लेना है तो ग्रोसरी शॉपिंग के लिए पहुँचे 5 मोजेल एवेन्यू ऑफ लिंकन रोड हेंडरसन, जहाँ पर है DH सुपरमार्केट. और वीकेंड स्पेशल्स में आपको मिलेंगे फ्रेश टमाटोज 199 kg, ओकरा 999 kg, होल मिल्क पाउडर फ्रॉम इक्लिप्स 1 kg 999, एंड मेनी मोर इन स्टोर डील्स एट DH सुपरमार्केट हेंडरसन.
4: रेडियो तराना है ये प्लान, बिजनेस को बनाए सुपरमैन.
3: अपने बिजनेस को लेकर जाइए नई ऊंचाइयों पर बाय एडवर्टाइजिंग ऑन द लीडिंग रेडियो स्टेशन रेडियो तराना.

0: उदास हो?
1: एक्साइटमेंट की बत्ती फ्यूज।
0: तो सुनो चटपटी ट्रेंडिंग न्यूज,
1: उस पर जो जोड़े आपको अपनों के साथ, आपका साथी बरसों पुराना।
0: चलो समेटो खुशियों का खजाना। ओनली ऑन।

जीवन में कुछ पल बहुत ही अलग होते हैं और जब किसी प्रियजन को अलविदा कहना हो तो हर चीज आसान होनी चाहिए और सम्मानजनक भी। ओकलैंड इंडियन फ्यूनरल होम में सभी धर्मों के अंतिम संस्कार की सेवा प्रदान की जाती है। इनके इजी पे फ्यूनरल प्लान के साथ परिवार के लिए काम थोड़ा आसान हो जाता है और एडवांस पेमेंट ऑन इजी इंस्टॉलमेंट टर्म्स के बारे में जानकारी के लिए आप उन्हें आज ही 2788600 पर रिंग करें। ओकलैंड इंडियन

0: savings this weekend at Briscoe's. Whether it's cosy bedding or kitchen favourites, shop mum-approved deals and massive store-wide savings at Briscoe's. See online for T's and C's.
1: बच्चों बताओ डिस्टेंस कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला है?
2: मैम डिस्टेंस इक्वल्स स्पीड इनटू टाइम।
1: जीनियस। अब बताओ रीपेमेंट बढ़ाए बिना मॉर्गेज जल्दी खत्म करने का क्या फॉर्मूला है?
2: मैम ग्लोबल फाइनेंस का मॉर्गेज जीनियस प्लान।
3: बच्चा बच्चा जानता है कि मॉर्गेज जल्दी खत्म करने का यही फॉर्मूला है ग्लोबल फाइनेंस का मॉर्गेज जीनियस प्लान। फोन 09255550। T's and C's apply।
4: चिल विद नेहा।

Việt Nê hả?

हेलो हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून लिसनर्स। रेडियो तराना सुन रहे हैं आप और मैं हूं नेहा आपके साथ इन द शो चिल विद नेहा। और आज तो सच्ची प्रोग्राम इतनी रफ्तार से निकला ना, पता ही नहीं लगा। मतलब प्रोग्राम के आखिरी आवर में अब हम आ गए हैं, क्योंकि आई गेस मेरे फेवरेट एरा का म्यूजिक मैं आपके लिए प्ले कर रही हूं, तो मैं भी बहुत थरली इंजॉय कर रही हूं। 90s की पहले हमारी डांस पार्टी 2 घंटे रही, और फिर 2 आवर्स 90s का रोमांटिक म्यूजिक, जिसमें से 1 आवर निकल गया। और 1 और आवर में इतने सारे गाने लाइंड अप हैं, खास तौर से जो आपने रिक्वेस्ट किए हैं वो भी मैंने शामिल किए हैं। वैसे अगर आप भी शो के दौरान मेरे साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो मुझे टेक्स्ट या व्हाट्सएप कर सकते हैं ऑन 02122 1386। और प्रोग्राम के इस आवर को मैं शुरू करने वाली हूँ 90s की एक सुपर डुपर हिट फिल्म के 2 सुपर डुपर हिट गानों के साथ। ये फिल्म मैंने पता है सिनेमा में कितनी बार देखी थी? 7 times, आई एम नॉट किडिंग, 7 times आई एक्चुअली सॉ दिस मूवी इन द सिनेमा हॉल। एंड ये मूवी है परदेश।

0: स्ट्रीमिंग नाउ ऑन रोवर टरना।
1: फ्यूल का दाम रोज बढ़ रहा है और स्मार्ट ड्राइवर्स अब स्विच कर रहे हैं। फ्यूचर है इफिशियंट ड्राइविंग का और वेस्ट सिटी ओमोडा जेको के साथ ये शिफ्ट और भी इजी हो जाता है। इंट्रोड्यूसिंग द पावरफुल J7 सुपर हाइब्रिड सिस्टम, परफॉर्मेंस भी, इफिशियंसी भी और ऑल इलेक्ट्रिक J5 EV, जीरो एमिशंस, मैक्सिमम सेविंग्स। आज ही वेस्ट सिटी ऑटो ग्रुप पहुंचे और जिमी टेलर और उनकी एक्सपर्ट टीम से मिले। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट westcityautogroup.nz और सर्च on socials for West City Auto Group.
2: Harvey Norman's Super Weekend. Spend $500 or more on selected products and get 10% of your purchase price in Harvey Norman bonus gift cards. That's 10% of your purchase price back in bonus gift cards. Shop in store and online. See stores or online for more details. Harvey Norman's Super Weekend. Spend $500 or more on selected products and get 10% of your purchase price in Harvey Norman bonus gift cards. Must end Sunday. Terms, conditions and exclusions apply. Bonus gift cards valid for 36 months.
3: Introducing Pizza Hut's new tikka and paneer range. Rich tikka base, creamy paneer, bold flavor. Get the first taste from $10.99 pickup at Pizza Hut. Limited time only. T's and C's apply.
4: Stay tuned to Tarana for all IPL updates.
5: IPL, the Indian Premier League. Get behind your favorite IPL team. क्योंकि हम देंगे IPL पर सभी अपडेट्स, रिव्यूज और प्रीव्यूज। Stay tuned to Tarana.
6: Indelible Homes and Chasers.
1: Alrighty listeners, चल के आज आपने रेडियो तराना पर मेरे नेहा के साथ में उसके लिए थैंक यू। अब मुझे दीजिए इजाजत, मैं चलती हूँ यहाँ से फटाफट। मुझे जाना है, अपने हेयर करवाने हैं, मेकअप कराना है और फिर पहुंच जाना है फिकलिंग कन्वेंशन सेंटर, जहाँ पे आज शाम को माइक उठाकर मैंने गाना है जय जय राधा रमन हरि बोल। तो आज शाम को हमारी भजन क्लबिंग होने वाली है। वी गोना हैव अ ग्रेट टाइम एंड जितने भी लिसनर्स मुझे आज शाम को यहाँ मिलने वाले हैं, आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू। एंड अगर आप और किसी इवेंट में जा रहे हैं, कोई फंक्शन में, कोई बर्थडे है, शादी है, एनीथिंग, यू नो ऑकलैंड इज सच अ बजिंग प्लेस, हमेशा यहाँ पे इतने इवेंट्स होते रहते हैं। इनफैक्ट वेलिंगटन में आज की है, चित्रा जी का शो है आज शाम को, तो वेलिंगटन में हमारे काफी सारे लोग जो सुन रहे हैं अभी शायद वहां जाने वाले होंगे। ओके, सो या हैव अ ग्रेट ग्रेट सैटरडे नाइट एवरीवन एंड एंजॉय द रेस्ट ऑफ योर वीकेंड। मैं अब आपसे मिलूंगी मंडे दोपहर को 1 बजे इन द शो चिल विद नेहा। टिल देन टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग। बाय।

0: streaming now on Rover Tirana.
1: अपनी डेली कुकिंग को बनाए और भी हेल्दी और भी टेस्टी कशिश ब्रांड के रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स के साथ. और अब आप इंजॉय कर सकते हैं कशिश का फ्रेश डोसा बैटर फॉर सॉफ्ट फ्रेश इडलीज एंड क्रिस्पी डोसास. अपनाए कशिश का डोसा एंड इडली बैटर. और सीमित समय के लिए इनकी एक्साइटिंग ऑफर में डोसा बैटर रेंज में से कोई भी डोसा बैटर लें और साथ में पाए 250 ग्राम्स का कशिश जिंजर गार्लिक पेस्ट फ्री. नो एडेड केमिकल्स, नो विनेगर. फ्रेशली ग्राउंड इन न्यूजीलैंड जिंजर गार्लिक पेस्ट बाय कशिश. और कशिश का डोसा बैटर अवेलेबल एट ऑल मेजर इंडियन आउटलेट्स.
2: डैडी कैसे? राम राम.
3: ठीक बेटा. राम राम. घर बने? कहाँ तक पहुँचा?
2: पेंटिंग हुए डैडी.
3: कितना अच्छा बिल्डर मिल गए रे. क्या नाम है उन लोगों के?
2: Indelible Homes.
3: हमारे पास भी 10-15 घर रहता. अगर हमारे टाइम पे ऐसा बिल्डर मिल जाता.
2: अभी भी सकता बनाए रेडी. बनाए के हमें दे दो. हाँ,
3: वाह.
4: न्यूजीलैंड के मोस्ट ट्रस्टेड और एक्सपीरियंस सब डिविजन एंड बिल्डिंग स्पेशलिस्ट Indelible Homes. फोन 0800-233-111.
1: इंडिया जाना है तो सफर भी तो वैसा ही होना चाहिए. Fly with Air India from New Zealand. Easy return connections via Australia or Singapore to India. और फिर seamless travel within India. दिल्ली हो या अमृतसर, मुंबई हो या अहमदाबाद, Air India connects you to every corner of India. वही अपनी भाषा और वही अपना स्वाद और वही friendly Indian hospitality के साथ. तो अगली बार घर का सफर हो, Fly Air India. For more information, visit your local travel agent today.
5: मेरी पसंद सोमवार रात 7 से हेमंत के साथ.

0: ਜੀਆਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਇਸ ਕਵਾਲੀ ਨੂੰ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਰੌਣਕ ਮੇਲਾ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਰੌਣਕ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਅਗਰ ਨਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਸ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੋ ਲਿਸਨਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਪਸੰਦ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
1: Fall in love with your home again with an ANZ Reno loan. A home loan top-up of up to $50,000 at just 2.5% per annum, fixed for 3 years. Minimum 20% equity eligibility lending rules, terms and fees apply. Available for a limited time. ANZ, we do how.
2: इस मदर्स डे अपनी मम को एक ऐसा गिफ्ट दें जो पूरा साल उनके साथ रहे। iSubscribe.co.nz पर आप मैगजीन सब्सक्रिप्शन पर अप टू 56% की बचत कर सकते हैं, जहां पर आपको ओवर 2000 मैगजीन मिलेंगी। iSubscribe वो बेस्ट जगह जहां पर आपको अपनी मम के लिए मैगजीन मिल सकती है। प्लस इनका रिवॉर्ड्स प्रोग्राम ज्वाइन करने पर इंस्टेंट $5 का क्रेडिट पाएं। आज ही सेव करें iSubscribe के साथ iSubscribe.co.nz।
3: श्री वेंकटेश्वर देवस्थानम चैरिटेबल ट्रस्ट आप सबको आमंत्रित करते हैं इनके भोजन मेला फूड कार्निवल में टू सपोर्ट लॉर्ड वेंकटेश्वर टेंपल प्रोजेक्ट।
4: ये होगा संडे 17th मई को 11 AM टू 4 PM
3: 378 आरारीमू रोड रामारामा साउथ ऑकलैंड में। एंट्री फ्री है, फ्री सॉफ्ट ड्रिंक्स रहेंगे, फ्री फूड बाय शिवानी रेस्टोरेंट एंड इडली सांबर, ज्वेलरी एंड क्लोथिंग स्टोर्स, हेना आर्टिस्ट, फेस पेंटिंग, बाउंसी कासल्स और बहुत कुछ।
4: और इन्फॉर्मेशन के लिए कॉन्टेक्ट करें शिवानी जी को 0218700012 पर।
3: One temple, one community, eternal blessings.
5: क्या काम की भागदौड़ से कपड़ों का ढेर बढ़ता जा रहा है? वरी मत कीजिए, स्टोडार्ड रोड लॉन्ड्री एंड ड्राई क्लीनर्स मॉन्ट्रोस आपकी मदद के लिए तैयार हैं। यहाँ आपको मिलता है 24 आवर्स सेल्फ सर्विस लॉन्ड्रोमैट, या फिर आप अपने कपड़े छोड़ दीजिए और इनकी टीम वॉश, ड्राई और फोल्ड करके आपको बिल्कुल तैयार देगी। यहाँ सूट, बिजनेस शर्ट, ड्रेसेस और फॉर्मल वेयर की प्रोफेशनल ड्राई क्लीनिंग भी करते हैं। अरे डूबे ब्लैंकेट, स्पोर्ट्स गेयर की सफाई भी यहाँ पर होती है। स्टोडार्ड रोड लॉन्ड्री and dry cleaners 220 Stoddard Road Mount Roskill Assam Bharoseman or 24/7
0: ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ
6: 3 4

0: Rana.
1: Proudly brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better with Kashish Foods.
2: हे गुड इवनिंग तराना स्टूडियोज में शाम के 6 बज चुके हैं. मैं आ गया हूं और हमारे अन्य साथी भी धीरे धीरे आ रहे हैं हमारा साथ देने के लिए. आप जहां पर प्रोग्राम सुन रहे हैं आपका स्वागत हम कर रहे हैं. अभी सुनते हैं दिन भर के समाचार और सूचनाएं, फिर शुरू करेंगे हैप्पी आवर.
3: दिस इज तराना न्यूज. तराना न्यूज.
4: नमस्कार. और अब नित्यानंद सुंदर से आज के समाचार. 12 वर्ष की उम्र से ऑस्ट्रेलिया में रह रहे एक अफ्रीकन बॉर्न न्यूजीलैंड सिटीजन को न्यूजीलैंड डिपोर्ट करने का निर्णय लिया ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन अथॉरिटीज ने. कई अपराधों में दोषी पाए गए उस व्यक्ति ने अपने पारिवारिक जनों को बताया कि न्यूजीलैंड जाने के बजाय वह अपनी जान ले लेगा. 12 वर्ष की उम्र में वह अपने परिवार के साथ ऑस्ट्रेलिया माइग्रेट हुआ था. लवा नॉर्थ आइलैंड में स्थित एक अलेज्ड शॉपलिफ्टिंग रिंग आया कानून के दायरे में. हजारों डॉलर कीमत के मीट, कॉस्मेटिक्स एंड क्लोथिंग की चोरी के अभियोग 4 लोगों पर लगाए गए हैं. अभी पुलिस और लोगों को पकड़ने की कोशिश कर रही है. फिजी. श्री सत्य साई संजीवनी हार्ट हॉस्पिटल फिजी ने कदम आगे बढ़ाते हुए अपनी सेवा बच्चों से बड़ों तक किया है. यहाँ ट्रीटमेंट्स एंड प्रोसीजर्स मुफ्त प्रदान किए जाएंगे. हेल्थ केयर इन फिजी के लिए सेवा के क्षेत्र में यह एक महत्वपूर्ण कदम है. पश्चिम बंगाल में 29 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान हुआ और इसके अगले दिन ईवीएम और पोस्टल बैलेट बॉक्स को रखने वाले स्ट्रॉन्ग रूम को लेकर विवाद शुरू हो गया. दूसरे चरण में राज्य की 142 विधानसभा सीटों पर वोट डाले गए थे. मतगणना 4 मई को होगी. तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने स्ट्रॉन्ग रूम को लेकर पुलिस और प्रशासन पर धांधली के आरोप लगाए. बीजेपी ने जवाब में कहा कि ममता बनर्जी की पार्टी हार की आशंका से ऐसे आरोप लगा रही है. स्ट्रॉन्ग रूम एक बेहद सुरक्षित निर्धारित कमरा या हॉल होता है जिसका इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, खासतौर पर कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट आदि संबंधित चुनावी कागजात या सामग्री को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है. पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर विपक्षी पार्टियों ने विधानसभा में शराब पीकर आने का आरोप लगाया है. राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने सीएम भगवंत मान का विधानसभा में बोलते हुए एक वीडियो शेयर करते हुए उन पर शराब पीकर विधानसभा में बोलने का आरोप लगाया है. उन्होंने एक्स पर लिखा, आज फिर से पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान लोकतंत्र के मंदिर पंजाब विधानसभा में शराब के नशे में चूर होकर पहुंचे हैं. वहीं शिरोमणि अकाली दल ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, यह बहुत शर्म की बात है कि आज मजदूर दिवस के अवसर पर सीएम भगवंत मान शराब के नशे में धुत होकर विधानसभा के पवित्र सदन में आ गए. आप खुद देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री विधानसभा में कैसा बर्ताव कर रहे हैं. दिल्ली में अब 19 किलो सिलेंडर की कीमत 3071.5 रुपए हो गई है. वहीं घरेलू सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है. कीमत बढ़ने के बाद राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, पहला वार गैस पर और अगला वार पेट्रोल डीजल पर. राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, कह दिया था चुनाव के बाद महंगाई की गर्मी आएगी. आज कमर्शियल गैस सिलेंडर 993 रुपए महंगा हो चुका है. एक ही दिन में यह सबसे बड़ी बढ़ोतरी है. यह चुनावी बिल है. पाकिस्तान ने देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिर से बढ़ोतरी की घोषणा की है. पेट्रोलियम विभाग के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में प्रति लीटर 6.51 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत 19.39 रुपए प्रति लीटर बढ़ाई गई है. पाकिस्तान में अब पेट्रोल की नई कीमत 399.86 रुपए प्रति लीटर, जबकि हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 399.58 रुपए प्रति लीटर हो जाएगी. बीबीसी न्यूज पेजियन के मुताबिक ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने कहा है कि ईरान और अमेरिका के बीच वार्ता में पाकिस्तान आधिकारिक मध्यस्थ है. उन्होंने जोर देते हुए कहा, कई देश इस संबंध में मदद करने को तैयार हैं, लेकिन वार्ता में आधिकारिक मध्यस्थ पाकिस्तान है. एक टेलीविजन इंटरव्यू में बगाई ने कहा, अगर बातचीत करने का फैसला लिया जाता है तो हम सब कुछ पारदर्शी तरीके से घोषित करेंगे. बगाई ने ईरानी विदेश मंत्री अब्बास आरागची की हाल ही में हुई रूस यात्रा और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ उनकी मुलाकात का भी जिक्र किया. चीन शुक्रवार से सिर्फ एक देश छोड़कर बाकी के सभी अफ्रीकी देशों पर से टैरिफ खत्म करेगा। यह एकमात्र देश इस फाटिनी है क्योंकि उसके ताइवान के साथ राजनीतिक संबंध हैं। दिसंबर 2024 तक चीन 33 सबसे कम विकसित अफ्रीकी देशों के लिए पहले ही ड्यूटी फ्री नीति लागू कर चुका था। संयुक्त अरब एमिरेट ने अपने नागरिकों के लिए ईरान, इराक और लेबनान की यात्रा करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। यूएई के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा, मौजूदा हालात को देखते हुए विदेश मंत्रालय ने यूएई के नागरिकों के ईरान, इराक और लेबनान की यात्रा पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। साथ ही यूएई ने इन तीनों देशों में मौजूद अपने नागरिकों से अपील की है कि वे तुरंत देश वापस लौट आएं। बीबीसी न्यूज पर्शियन के मुताबिक ईरान के इस्फहान में रहने वाले 21 साल के युवक सासन आजादवर जोंगानी को फांसी पर लटका दिया गया। उन्हें इसी साल जनवरी में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान गिरफ्तार किया गया था। आजादवर को इस्फहान की दस्तगर्द जेल में फांसी दे दी गई। उनके परिवार के करीबी एक सूत्र ने मानवाधिकार वेबसाइट HRANA को बताया कि उनका अंतिम संस्कार गुरुवार दोपहर एक सुरक्षित क्षेत्र में किया गया। म्यांमार के सरकारी मीडिया के मुताबिक देश की पूर्व नेता आंग सान सू ची को हाउस अरेस्ट में शिफ्ट किया गया है। वे पहले हिरासत में थीं। 80 साल की नोबेल पुरस्कार विजेता को 2021 में सैन्य तख्तापलट में सत्ता से हटाए जाने के बाद से हिरासत में रखा गया था। और फिलिस्तीन समर्थक एक्टिविस्टों का कहना है कि गजा के लिए मदद लेकर जा रहे एक फ्लोटिला की 22 नावों को ग्रीस के क्रीक द्वीप के पास अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में इजरायली बलों ने रोक लिया है। ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला के आयोजकों ने इस कार्रवाई को डकैती बताया है। गजा में इसराइल ने 9 सैनिक नाकाबंदी कर रखी है। ये थे आज के समाचार और अब अपने अनाउंसर नित्यानंद सुंदर को इजाजत दें। हमारी और आपकी भेंट होगी कल रात 7 बजे एक बार फिर। तब तक के लिए नमस्कार।
1: जागोरे कम लाइफ का आयोजन किया गया है पास्ता अनिल और रीना कान द्वारा। ये हिल्स चर्च 179 हिल्सबरा रोड में होने जा रहा है 9 मई को शाम को 6 बजे से। और जानकारी के लिए आप 0211017959 पर संपर्क कर सकते हैं। पुलिस रिक्रूटमेंट सेमिनार का आयोजन किया गया है शनिवार 23 मई को सुबह 9:30 से दिन में 12 बजे तक फिकलिंग कन्वेंशन सेंटर 546 माउंट एल्बर्ट रोड।

0: मैं यमराज हूँ।
1: ओहो जय हो महाराज, लेने आए हो तो चलो।
0: कमाल है, जाने की इतनी जल्दी?
1: हाँ, मैंने अच्छी लाइफ जी है अभी तक, और आगे मेरे फैमिली का भविष्य भी एकदम सेट है। ग्लोबल फाइनेंस वालों ने मेरा लाइफ इंश्योरेंस एकदम अप टू डेट कर रखा है।
0: फिर तो तुम्हें यहाँ कुछ और दिन रहना चाहिए और ये ज्ञान सब में बांटना चाहिए।
1: ओके थैंक यू महाराज, मैं बांटता हूँ ये ज्ञान। सभी को कॉल करना चाहिए ग्लोबल फाइनेंस को 09255500 पर।
2: गौर से सुने, ब्लॉक हाउस बे में फुली फेनिस्ड ग्रैनी फ्लैट रेंट पर अवेलेबल है। एक्सेलेंट क्वाइट लोकेशन, न्यू हीट पंप जस्ट इंस्टॉल्ड, वाईफाई सर्विस अवेलेबल, रेंट ओनली $450 पर वीक। कॉन्टेक्ट 021-708-080, दैट्स 021-708-080।
3: सिद्ध गुरु वर सिद्धेश्वर ब्रह्म ऋषि गुरुदेव की पावन उपस्थिति में न्यूजीलैंड में इन शहरों में जरूर पधारे। ऑकलैंड में उनका प्रवचन मंडे 27 अप्रैल स्वामी नारायण कॉम्प्लेक्स पापा टोईटोई क्राइस्ट चर्च में, सैटरडे 2 मई रोलेस्टन कम्युनिटी सेंटर, और वेलिंगटन में संडे 3 मई को इंडियन कल्चरल सोसाइटी हॉल पिठोनी में। प्रोग्राम्स 3 PM से शुरू होंगे, एंट्री फ्री है और महाप्रसाद भी होगा। और जानकारी के लिए उषा कुमार जी को कॉल करें 021-073-0829 पर।

0: bulletproof for kids.
1: Register now for this term at Kandala, Johnsonville, Rewarewa, Tawa and Plimoton school pools. Just visit easyswim.co.nz.
0: Easy Swim's the easy way to waterproof a kid.
1: This is Happy Hour Non-Stop Music.
2: उधर फिजी एंड रुआ और हाइलैंडर्स वाला मैच ये खेला जा रहा है इन फिजी और फिर इसके बाद अभी इधर माउंट यानी कि एल्बनी में जो मैच है ये खेला जाएगा एंड व्हाट अ गेम दैट विल बी और मोना पेसिफिक का साथ में ब्लूज के बीच जो मैच ये रहेगा. कल रात आपने भी शायद सुपर रग्बी का मैच देखा होगा जिसमें क्रुसेडर्स की हार एक और मैच में हुई और अब नेक्स्ट वीक क्रुसेडर्स और ब्लूज का खेल होगा. तो ये सब इक्वेशन है, अब देखना है कौन सी टीम नेक्स्ट कपल ऑफ राउंड्स के बाद नंबर वन पर ठहरती है. ओके, तो इसके बारे में भी कुछ बातें करेंगे. और उधर ऑकलैंड एफसी का जो एलिमिनेशन वाला फाइनल मैच है ये भी खेला जा रहा है इधर माउंट स्मार्ट स्टेडियम में, इसके बारे में भी कुछ जिक्र हम करेंगे. आप अपना ड्रिंक्स वगैरह रेडी कर रहे हैं जहां पर भी पार्टी आपकी शुरू हो रही है, हमारे साथ आप भी शामिल हो जाएं. स्वागत है.

0: This is Happy Hour Non-Stop Music.
1: There's never been a better time to send Solly with Western Union. Right now, when you give to your family back home, you'll get a little something for yourself too. Make two transfers of $200 New Zealand or more to Fiji before the 4th of May, and you'll get a Digicel or Vodafone mobile top-up voucher. Oh, who's that calling? Say hi from Western Union. Stocks Limited. Visit westernunion.com for terms and conditions and participating agent locations.
2: इस Mother's Day को बनाए और भी special Digicel के साथ. बस भेजे $20 या उससे ज्यादा का top up या $300 या उससे ज्यादा का cash transfer इनकी किसी भी partner website से My Cash Wallet के साथ to your family and friends in the Pacific. और आपका नाम तुरंत जाएगा draw में to win one of the 15 $500 cash prize. तो $20 का टॉप अप भेजे या $300 का कैश और डीजी सेल के साथ मौका पाएं जीतने का $500 कैश. T's and C's apply.
3: Bunnings gift card is a great gift for Mother's Day because it unlocks the whole warehouse for mum. She's in for a treat. She'd be like, oh my gosh, yes, now I can buy all those extra plants that I was looking for the front garden. Perfect. Bunnings
4: Warehouse. Get the tick from Mum this Mother's Day and shop massive store-wide savings this weekend at Briscoe's. Whether it's cosy bedding or kitchen favourites, shop Mum-approved deals and massive store-wide savings at Briscoe's. See online for T's and C's.
5: Radio Tirana, aapka apna favourite radio station.
0: This is Happy Hour Non-Stop Music.
6: इधर रिलायंस वेंटिलेशन वाले भी हमारा साथ दे रहे हैं, इनको भी हम शामिल कर रहे हैं. प्रेम रेड्डी साहब आप हैं एवेंडेल में, उधर राकेश सिंह भाई आपका भी स्वागत हम कर रहे हैं, फ्रीमोंट कैलिफोर्निया में प्रोग्राम सुन रहे हैं. और इसके साथ में इधर बिपिन, इनको भी हम शामिल कर रहे हैं. सैक्रामेंटो में कुछ हमारे दोस्त हैं, प्रोग्राम का मजा ले रहे हैं. वन डे मफातू इन द गाइज, उधर मनीरवा में इनका जो पतरा वाला मिक्स है ये हो चुका है, कावा का मजा ले रहे हैं. मास्टर सत्यदत्त जी आपको भी हम शामिल कर रहे हैं. साथ में उधर अनूप इन द गाइज मैटामैटा में है, यहां पर प्रोग्राम सुन रहे हैं. तो देखना है आज जितने सारे स्पोर्टिंग इवेंट्स हो रहे हैं. उधर ब्लैक कैप्स वाला जो मैच है ये भी खेला जाएगा, इसके बारे में भी जानकारी आपके लिए हम लेकर आते रहेंगे. हमारे साथ साथ आप भी चलते रहें. ब्लूज और मोना पेसिफिका वाला जो मैच है, क्या मोना पेसिफिका जाकर कुछ अपसेट कर सकती है या ब्लूज आज बोनस पॉइंट से इनको हराकर नंबर वन पर चले जाएंगे. सो दैट विल बी समथिंग आज हम जिसके बारे में बातें करेंगे ऑन सैटरडे नाइट हंगामा. फिलहाल थोड़ी देर में उन दोस्तों को याद करेंगे जो आज अपना बेहतरीन मना रहे हैं.

0: Dance Basanti.
1: This is Happy Hour Non-Stop Music.
2: Chemist Warehouse has now opened in Fangaparoa. Find the new Chemist Warehouse in Fangaparoa next to the Coast Shopping Mall.
1: With the biggest range of all your health and beauty essentials at the lowest prices. They've got everything you need to look and feel your best. They are open 7 days a week from early till late, including public holidays. If you can't make it in-store, shop online 24/7. Chemist Warehouse. Great savings every day.
3: माँ
4: हाँ मेरे लाल
3: खुश हो ना माँ
4: बहुत मेरे पुत्र
3: नागर अच्छा है ना माँ
4: बहुत वधिया है पुत्र
3: आशीर्वाद दो ना माँ
4: हमेशा खुश रहे चढ़दिया कलावाच रहे हैं मेरे पुत्र
3: गालियाँ तो वैसे ही देती रहती है माँ
4: चुप फिट्टे मुँह तेरे ओ ते मेरा प्यार है मेरे बच्चे
5: न्यूजीलैंड के मोस्ट ट्रस्टेड और एक्सपीरियंस्ड सब डिविजन एंड बिल्डिंग स्पेशलिस्ट इंडेलिबल होम्स फोन 0800-233-111
3: कानून तोड़ दिया अब तो तू बेटा क्रिमिनल हो गया
6: तुम पे बहुत तरस आता है यार पर पुलिस का मामला है तो
7: डरो मत गलती कभी कभी हो ही जाती है और कानूनी गलती हो जाने पर एक दरवाजा हमेशा खुला रहता है गुल्ला लीगल सर्विसेज फाउंडर मिस्टर गुल के पास लॉ के साथ साथ पुलिस डिपार्टमेंट का भी एक्सपीरियंस है वो आपको सलाह ही नहीं देंगे बल्कि आपकी सिचुएशन को समझेंगे भी कॉल टुडे ऑन 0222-353-0872 और विजिट gullaw.co.nz
8: इट्स 10 AM एंड यू फॉरगॉट अबाउट डिनर एट योर्स टुनाइट योर फ्रिज इज एम्प्टी योर प्लेस इज अ मेस आफ्टर वॉचिंग लास्ट नाइट्स गेम एंड यू आर स्टिल पेंटेड द सेम ब्लू एज योर टीम नो टाइम टू डू द शॉप Get what you need with New World Online Same Day Click and Collect. T's and C's and exclusions apply. See newworld.co.nz for details.
9: इस मदर्स डे को बनाए और भी स्पेशल डीजी सेल के साथ बस भेजे $20 या उससे ज्यादा का टॉप अप या $300 या उससे ज्यादा का कैश ट्रांसफर इनकी किसी भी पार्टनर वेबसाइट से माई कैश वॉलेट के साथ टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स इन द पैसिफिक और आपका नाम तुरंत जाएगा ड्रॉ में टू विन वन ऑफ द $1,500 कैश प्राइज तो $20 का टॉप अप भेजे या $300 का कैश और डीजी सेल के साथ मौका पाए जीतने का $500 कैश T's and C's apply.
10: आप सुन रहे हैं रेडियो तराना You're listening to Happy Hour.
11: Happy
10: Hour.
11: हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू आज जो लोग बर्थडे मना रहे हैं हमारी ओर से दिन आपको एक बार शुभ हो हैप्पी हैप्पी बर्थडे और सत्यजीत राय इनका नाम आपने सुना होगा लेजेंडरी फिल्म मेकर इंडियन सिनेमा आइकॉन और ये आज अपना बर्थडे मना रहे हैं वैसे आज डेविड बेकम इनका भी बर्थडे आज ऑब्जर्व किया जा रहा है यानी कि मनाया जा रहा है इनको भी हमारी ओर से हैप्पी हैप्पी बर्थडे बैंडिट लाइक बेकम मौका लगे तो ये फिल्म जरूर आप देखिए इनके साथ में आज के हमारे केक विनर हैं निकोलस सिंह ये अपना बर्थडे मना रहे हैं वाइफ है जेनेट डॉटर है इजाबेला फाइव ब्रदर्स हैं साथ में वन सिस्टर है मम्मी है सुजी सभी ने आज आपको याद किया है उम्मीद है आपका दिन अच्छी तरह से बीत रहा होगा हैप्पी बर्थडे और फर्स्ट बर्थडे ग्रैंडसन हंटर मायना कुमार मांगरे में ये मना रहे हैं हैप्पी बर्थडे आपको और आपने 29 अप्रैल को मैसेज भेजा था आई थिंक कल परसों में आपका बर्थडे था तो हमारी ओर से दिन आपको एक बार शुभ हो हैप्पी हैप्पी बर्थडे और भारतीय समाज चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से सुरेंद्र पाल कौर सेठी जी ताकानीनी में आज ये भी अपना बर्थडे मना रहे हैं हैप्पी बर्थडे हमारी ओर से उम्मीद है आपका दिन भी अच्छी तरह से बीत रहा होगा और इसके साथ में जितने भी और आपके दोस्त हैं उनको भी हम शामिल कर रहे हैं हैप्पी बर्थडे इनको भी रितेश चंद आपने हमारे पास मैसेज भेजा है वाइनुई माता लोवा हार्ट वेलिंगटन से आज उनकी प्यारी सी गुड़िया माही त्रिशा चंद यही अपना बर्थडे मना रही हैं 7 साल की हो गई हैं हैप्पी बर्थडे आपको माही त्रिशा चंद और सिस्टर्स हैं अर्चना चंद फ्रॉम वाइनुई माता और रचना चंद है नीज है यानी कवि न रमेश की नीज आप हैं मोंगारा की लोवा हार्ट से और लोथका से दादा दादी है रमेश चंद काका काकी है चंद्रेश चंद और मिस्टर मिसेज सतीश शर्मा कमलेश मेलबर्न से शैलेश शर्मा साथ में फुआ है अरुणा देवी ताकानीनी से जितने भी फैमिली फ्रेंड्स हैं सभी ने आज आपको याद किया है हमारी ओर से भी जितने भी दोस्त आज बर्थडे शादी की सालगिरह या खुशी का कोई भी मौका है जहां पर भी हैं ये दिन आपको आने के बाद मुबारक हो

0: This is Happy Hour Non-Stop Music.
1: बच्चों बताओ डिस्टेंस कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला है?
2: मैम डिस्टेंस इक्वल्स स्पीड इनटू टाइम।
1: जीनियस। अब बताओ रीपेमेंट बढ़ाए बिना मॉर्गेज जल्दी खत्म करने का क्या फॉर्मूला है?
2: मैम ग्लोबल फाइनेंस का मॉर्गेज जीनियस प्लान।
3: बच्चा जानता है कि मॉर्गेज जल्दी खत्म करने का यही फॉर्मूला है ग्लोबल फाइनेंस का मॉर्गेज जीनियस प्लान। फोन 09255-5500। टीज एंड सीज अप्लाई। पापा टोय फ्लैट बुश और पापाकुरा के बाद अब DH सुपरमार्केट का सबसे बड़ा स्टोर खुल गया है इन हेंडरसन। दैट्स राइट, योर लोकल इंडियन ग्रोसरी स्टोर नाउ इन हेंडरसन एट 5 मोजेल एवेन्यू ऑफ लिंकन रोड हेंडरसन। ह्यूज क्लीन हाइजीनिक प्लेस टू शॉप विद एम्पल पार्किंग। यहाँ पर आपको मिलेंगे फ्रेश वेजिटेबल, ऑथेंटिक स्पाइसेस और सभी इंडियन ग्रोसरी सामान बहुत ही अच्छे प्राइसेस में। DH सुपरमार्केट नाउ इन हेंडरसन एट 5 मोजेल एवेन्यू ऑफ लिंकन रोड।
4: अरे इंडेलिबल होम्स वाली गुड़िया इतनी बड़ी हो गई।
5: हाय, मैं हूँ गुड़िया, भाई गुड़िया जिसके भैया ने उसे रूम से बाहर निकाल दिया था। अब मेरे पास मेरा अपना रूम है, बहुत बड़ा, बहुत अच्छा, थैंक्स टू इंडेलिबल होम्स। थैंक यू, सी यू।
4: नया घर बनाना हो या सब डिवाइड करना हो, इंडेलिबल होम्स। फोन 0800-233-111।
6: इट्स अ मम वांटिंग अ फ्री किड्स हेयर कट फॉर हर एडल्ट सन। इट्स अनदर च्युइंग गम एंड हेयर मिसहैप। इट्स समवन आस्किंग अ फ्रॉस्टेड टिप्स अबाउट कन्फेशन। There's a lot on the line starting a business. To see how ANZ can help, search ANZ How To. Eligibility criteria, T's and C's apply.
7: A healthy relationship has both sides.
8: Speak out your heart to us by liking and following our Facebook page. facebook.com/RadioTaranaNZ.
0: This is Happy Hour Non-Stop Music.
9: उधर वर्षा जगदीश भाई वेलिंगटन में हैं, आप दोस्तों का भी स्वागत है। डीजे देसी ब्रदर आपको भी हम शामिल कर रहे हैं। एंड आई होप ऑल इज वेल इन वेलिंगटन। जितने भी हमारे दोस्त वहां पर है प्रोग्राम सुन रहे हैं, कल तो हरिकेन्स की जीत हुई तो जश्न तो बनता है और आज भी कुछ गेम्स अभी हो रहे हैं और फिज एंड रुआ और साथ में हाइलैंडर्स वाला मैच ये खेला जा रहा है, काफी एक्साइटिंग मैच। आप भी इंजॉय कर रहे हैं अपने घर पर अपने सोफा पर बैठकर। और इसके बाद ब्लूज वाला जो मैच है ये भी, और उधर ऑकलैंड एफसी वाला जो मैच है ये भी खेला जा रहा है, इसके बारे में भी हम जानकारी आपके लिए हम लेकर आते रहेंगे। शेली एंड जैन आप दोस्तों को भी हम शामिल कर रहे हैं, वेस्ट ऑकलैंड में प्रोग्राम भी सुन रहे हैं अभी ऐप के जरिए। प्रोग्राम आप सब इंजॉय कर रहे हैं तो इंजॉय करते रहें और आप दोस्तों के साथ हम भी शामिल होते रहेंगे। बस थोड़ी देर में शुरू करेंगे द शो ऑफ द वीक सैटरडे नाइट हंगामा।
10: दोस्तों आज इस महफिल में कई मस्ताने हैं, एक शम्मा दो परवाने, एक हसीना और दो दीवाने हैं, लेकिन एक है हीरो और एक है जीरो। अब आप ही बताइए कौन है हीरो और कौन है

0: Let's get ready to rumble. The show of the week hai ye, Saturday night hangama.
1: Welcome, ladies and gentlemen. Saturday night hangama shuru. Udhar match bhi shuru. North Harbour Stadium, jahan par Blues are taking on Moana Pacifica. I think they are first from the bottom.
0: Moana?
1: Moana hai ki Drua hai?
0: No, Moana is first from the bottom. They haven't won any games this season. Drua to at least 2-3 khel wo jeet gaye hain. Drua is actually coming 9th. Western Forces are the team jo abhi 10th position par hai. So let's see, can the Blues continue their streak, kyunki abhi wo top 3 mein shamil hain, and if they want to keep that spot top 3 mein, tab unko baki jo matches hai ye bhi jeetna padega, and temporarily they can also move into second spot as well. Aur uske sath mein ye jo next wala match rahega, Australian Derby, Queensland Reds versus the ACT Brumbies, very exciting match over there. और NRL में जो मैचेस होने वाले हैं, अभी जो मैच समाप्त हुआ, टाइटंस और रेडर्स, 7:30 पर द पैरामीटर ईल्स टेकिंग ऑन द 1NZ वॉरियर्स ऑफ द वॉज, और फिर 9:35 पर सिडनी रूस्टर्स और ब्रिस्बेन ब्रोंकोस ये खेलने वाले हैं.
1: ओके, डोंट गो एनीवे, हमारे साथ शामिल रहे, बहुत ही मजेदार किस्से हैं आज.
0: मजेदार
1: किस्से हैं.
0: शो शुरू नहीं हुआ.
1: आई वेंट टू मीट पेरेंट टीचर कॉन्फ्रेंस में स्टैटिस्टिक्स वाला टीचर से, तो इमेजिन मैंने कहा वो आई एम स्ट्रगलिंग टू से दैट वर्ड, लेकिन मैंने बोला आई थिंक माई सन इज डूइंग वेल इन योर सब्जेक्ट.
0: वो सोच रहे होंगे हाउ डिड यू बिकम अ टीचर.
1: ऑल द फंबल्स, ये सब कुछ आपके लिए हम लेकर आएंगे. डोंट गो एनीवेयर.
0: विश ऑफ द वीक है ये सैटरडे नाइट हंगामा.

0: जिंदगी बहुत कीमती है तो फ्यूनरल भी अलग ही होना चाहिए, ठीक वैसे जैसे जिंदगी उन्होंने जी थी। ऑकलैंड इंडियन फ्यूनरल होम ने पिछले कई सालों से हमारी कम्युनिटी को बेस्ट फ्यूनरल सर्विस दी है। हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन और भी किसी भी रिलीजन की जरूरत को समझकर बिल्कुल सही तैयारी की जाती है। यहाँ इजी पे फ्यूनरल प्लान भी अवेलेबल है। इजी इंस्टॉलमेंट टर्म्स पर एडवांस पेमेंट के बारे में पता करने के लिए कॉल करें 2788600।
1: Hey Hamiltonians, guess what? अब आपके यहाँ हैमिल्टन में आ गया है ग्लोबल फाइनेंस। For any kind of home loan, business loan, commercial loan, refixing या refinancing के लिए contact करें Global Finance को, जो mortgage के साथ साथ insurance में भी specialize करते हैं। Life, trauma, health insurance, हर चीज के लिए Global Finance. Now in Hamilton at Unit 26, 20 Clyde Street, Hamilton East. Phone 07577088. ग्लोबल फाइनेंस नाउ इन हैमिल्टन।
2: राजस्थान की मेहमान नवाजी के तो क्या कहने, और अब वही मेहमान नवाजी और वही स्वाद आपको मिलेगा यहाँ ऑकलैंड में एट श्री रेस्टोरेंट। ऑथेंटिक राजस्थानी एंड डिलीशियस इंडियन वेजिटेरियन क्विजीन, राजस्थान की मशहूर दाल बाटी चूरमा, चाट आइटम्स एंड मेनी अदर स्नैक्स एंड फुल मील्स। ऑकलैंड के मशहूर शेफ रामेश्वर आप सबको निमंत्रण दे रहे हैं टू द श्री रेस्टोरेंट एट 11 bar 726 ग्रेट साउथ रोड, मानिकाव, ऑपोजिट रेनबोज इन। और यहाँ फंक्शंस होस्ट करने के लिए भी बड़ी जगह अवेलेबल है। श्री रेस्टोरेंट ओपन 6 days, क्लोज्ड ऑन वेंसडेज। इस मदर्स डे अपनी मम को एक ऐसा गिफ्ट दें जो पूरा साल उनके साथ रहे। isubscribe.co.nz पर आप मैगजीन सब्सक्रिप्शंस पर अप टू 56% की बचत कर सकते हैं, जहां पर आपको ओवर 2000 मैगजीन्स मिलेंगी। isubscribe वो बेस्ट जगह जहां पर आपको अपनी मम के लिए मैगजीन मिल सकती है। प्लस इनका रिवॉर्ड्स प्रोग्राम ज्वाइन करने पर इंस्टेंट $5 का क्रेडिट पाएं। आज ही सेव करें isubscribe के साथ isubscribe.co.nz।
3: Join the Great Big Balance Check at New World. Whether it's treating yourself to a chocky bar or treating the whole fam to dinner, you could have New World dollars waiting to spend. Check your balance in the New World app or ask a checkout to spend your New World dollars today. Only with Club Card. Only at New World. T's and C's apply.
4: NZ Post is always nearby. With over 560 stores across the country, you can always count on us to keep bringing the services you need close to home. Find your local at nzpost.co.nz.
5: अरे भाई साहब आइए, कैसे हैं?
6: नमस्ते नमस्ते। मंडप बड़ा खूबसूरत बना है, नजर पहले वहीं गई।
5: एनजेड मंडप का है, कितना प्यारा लग रहा है ना।
6: प्यारा मंडप तो है पर खर्चा बड़ा किया होगा भाभी जी।
5: नहीं नहीं, देखो खर्चा तो वैसे होता ही है शादी में, पर एनजेड मंडप के मंडप बहुत ही अफोर्डेबल होते हैं।
7: मंडप के मंडप खूबसूरत, अफोर्डेबल, और यू विल डील विद प्रोफेशनल्स। कॉल टुडे ऑन 09265050505 और विजिट एनजेड मंडप फेसबुक पेज।
8: और तराना का नाम मेंशन करने पर स्टेज हायर, मंडप और मार्किस पर आपको मिलेगा 5% का डिस्काउंट।
9: रेडियो तराना का है ये प्लान, बिजनेस को बनाए सुपरमैन।
10: अपने बिजनेस को लेकर जाइए नई ऊंचाइयों पर बाय एडवर्टाइजिंग ऑन द लीडिंग रेडियो स्टेशन, रेडियो तराना।

0: दर्शक भी खाइए
1: सैटरडे नाइट हंगामा
0: लविंग द न्यू म्यूजिक ब्रदर
1: करेंगे तो लोग भी थक जाएंगे तो वी हैव टू कीप रोलिंग विद द टाइम्स
0: रोलिंग गोइंग विद द फ्लो सो हियर वी आर लास्ट वीक क्राइस्टचर्च से प्रोग्राम हम लेकर आ रहे थे एंड व्हाट एन अमेजिंग टाइम वी हैड एट क्राइस्टचर्च
1: What a great time we had, man. The boys, like we always are, a little bit silly, funny moments, hilarious moments. और जिस तरह से फर्स्ट टाइम मैंने डीजे देखा उन्होंने कैसे वो ड्रायर और वॉशर यूज कर हिस्टोरिक मोमेंट में फोटो उतार रहा था डीजे से पीछे घूम कर ताक रहे ले कुछ नहीं करता
0: उससे पहले शुरू करते हैं आज जो प्रोग्राम है फर्स्ट सेगमेंट है व्हेन वी अराइव्ड एट ऑकलैंड एयरपोर्ट सो वी आर वेटिंग फॉर कैप्टन मैं पहले आ गया आई वेंट टू चेक आउट दैट पोस्ट ऑफिस वाला पब देयर इज अ पब ऑकलैंड वो कौन सा एरिया इंडस्ट्रियल एरिया में
1: वो मेंगरी एयरपोर्ट ऑक्स
0: या सो वहां पर पब में मैंने कुछ अजीब देखा अजीब ये था कि जहाँ लाइट होता है वहाँ लाइट पर पुराने जमाने वाला कुर्सी से
1: रिवर्स
0: टाई कर दिया गया है उसके अंदर से लाइट ऐसे बढ़ रहा है सो इट्स अ नाइस प्लेस फॉर पीपल टू हैंग आउट इट्स कॉल्ड द पोस्ट ऑफिस
1: या इट्स कॉल्ड द पोस्ट ऑफिस और ढेर सारे लोग वहाँ पर जाते हैं स्पेशली ऑन अ फ्राइडे इवनिंग डीजे काम के बाद में वहां पर वो जाते हैं ड्रिंक्स वगैरह करते हैं और कभी कभार वहां पे 7 PM मैचेस भी शुरू हो जाता है तो कुछ लोग अपने सुपर रग्बी यूनिफॉर्म में आते हैं वहां पे मैचेस भी देखने के लिए सो इट्स अ गुड प्लेस टू गो
0: एंड कभी कभी तुम और मिस्टर शर्मा भी जाते
1: हो या वी गो विद अ कपल ऑफ आवर क्लाइंट्स जो उधर आसपास में रहते हैं सो कभी कभार वहां पर एंड नॉट बैड एक जग लेकर शेयर कर लो दो तीन जग्स शेयर कर लो चिकन विंग्स भी होता है गर्मा गर्म लेकर आते हैं सो गुड गुड फन
0: अभी मैं यहाँ स्टूडियो के अंदर हूँ
1: ऑल आई कैन सी तुम ऐसे हाथ ऊपर नीचे कर रहे हो और ऐसे फू कर रहे
0: मुझे शिल्पा शेट्टी का जो नहीं करिश्मा कपूर का एक्स हस्बैंड याद आ गया वो कौन सा गेम खेल रहे थे उसके मुंह के अंदर भर रहे चला गया था अभी
1: कौन सा मुंह गेम था
0: अरे वो पोलो कुछ खेल रहे थे ऐसा ना हो कि मैं यहाँ स्टूडियो के अंदर ये जो भिनभिना रहा है हमारे सामने
1: मुंह के अंदर
0: ओके तो वी वेंट डाउन टू द न्यू स्टेडियम वहां पर क्या हमने देखा है नया एक्सपीरियंस और एक नया हे ड्रिंक हमने वहां पर डिस्कवर किया इसके बारे में भी बातें करेंगे मीनवाइल मोना पेसिफिका और ब्लूज के बीच जो मैच ये खेला जा रहा है एंड ऑब्वियसली इस मैच में ब्लूज आर द फेवरेट्स टू विन सोनल
1: अनलाइक लास्ट वीक ओ रेड्स वाला गेम नहीं हो जाए कि बचते एंड में बचते बचते अपने आपको बचा दे द शो ऑफ द वीक है यस सैटरडे नाइट

0: The show of the week here is Saturday Night Hangama.
1: Saturday Night Hangama. No Mona again tonight. And Askal Mona kahin nazar aa rahi hai ki nahi bhai?
0: Well, last week maine aapko dikhaya tha nahi reel pe. She made some sort of video, I think, with her sister-in-law. उन्होंने कुछ वीडियो बनाकर छोड़ा था इंस्टाग्राम पे, बट या दैट्स इट, फिर कुछ नहीं देखा.
1: दैट्स इट,
0: उसके बाद में कुछ वीडियो नहीं देखा.
1: एनीवे मोना, जहां पर भी हो, वी आर मिसिंग यू एंड वी होप कि आएगा बिछड़ा यार हमारा.
0: हम आपको याद कर रहे हैं, एकदम तन मन धन से आपको याद कर रहे हैं.
1: सैटरडे नाइट हंगामा, वी से गुड इवनिंग टू गाइस द लिसनिंग ऑनलाइन. प्रोग्राम सुन रहे हैं उधर यूएस में, विपिन इनको भी हम शामिल कर रहे हैं, और इसके साथ में उधर राकेश भाई आपका भी स्वागत है. आजकल सुपर रग भी आप लोग भी फॉलो कर रहे हैं, और चीफ्स के भी काफी अच्छे फैंस हो गए हैं. एंड एवरीबॉडी नाउ नोज कि चीफ्स हमारी टीम है. अभी रेडियो नहीं चल रहा है, बट फिर भी ऐप के जरिए जितने भी हमारे दोस्त हैं हमारे साथ जुड़ गए हैं, और अभी भी डेली कोई ना कोई कॉल करता है, पूछता है क्या हुआ तराना का.
0: या एवरीबॉडी इज आस्किंग, बट आई थिंक दिस इज द लास्ट वीक और लास्ट वीकेंड. नो, फर्स्ट वीक को मई में बताया गया था
1: तराना की
0: For the radio to start working again.
1: Yeah. So if you are listening to us kahin par, aap DJ Shal and Facebook page par ek message bheje and we'll try and do a shout out for you. I know the guys in Wellington, the Ramila, aur saath mein Dalal family, aur saath mein Dress Cycle 21 ke jitne bhi humare dost the, unko bhi hum shamil kar rahe hain on Saturday Night Hangama. Well, tonight the Blues are taking on Mona Pacifica, and isme mujhe kafi hansi aayi jab Mona Pacifica ne last week ka game haarne ke baad kaha, next week we'll be at home against the Blues in North Hawa.
0: I think वो look forward करते हैं ना to play somewhere जहाँ पर उनका home है, and doesn't look like कि बहुत far वो जाने वाले हैं. एक तो ये season में, दूसरा super rugby में. So जितने भी कुछ games, handful of games बाकी, but they played well last week. They really put up a tough fight against the Hurricanes. We know कि second half में Mona Pacifica वो नहीं खेल पाते हैं उसी तरह से. So unlucky for them. फिर इसके बाद में एक very crucial clash रहेगा, क्योंकि the Brumbies, they've lost a few games in a row now. और उनका जो खेल है, they're traveling to Queensland to take on the Queensland Reds.
1: What a game that will be, man. I think that's the match. वो एक गेम, और कल रात जो हुआ Hurricanes और Crusaders वाला मैच, what a game that was, man. Crusaders और Hurricanes, अब Chiefs इन तीनों के बीच में टक्कर रहेगा, I guess, for top spot, Sonal, as we head into the second part of Super Rugby competition. और so we'll see इसमें सबसे टॉप कौन जाता है, एंड कौन सी टीम है कहां पर फाइनल खेलेगी. एंड हैविंग सेड दैट, लास्ट वीक वी मेट द हरिकेन्स प्लेयर्स एट द लाउंज.
0: ओह या, दैट वाज ग्रेट. कैप्टन ने फोटो वगैरह भी उतारा था, जोडी बैरेट थे वहां पे, एंड देयर वाज अ फ्यू अदर प्लेयर्स दैट वर ऑब्वियसली ट्रैवलिंग बैक होम टू वेलिंगटन. दूसरी ओर बस अभी शुरू हो जाएगा The Eels versus the 1NZ Warriors NRL.
1: What's happening to my team, Storms, bhai?
0: Oh, bhai. kal raat ko unhone Finn se khela. Dolphins ke saath mein jo khel hua, don't want to say too much about it.
1: Lekin idhar up the walls.
0: Yeah, up the walls, looking to keep that second place position on the table. Agar aaj ratri ko unki jeet hoti hai Sydney mein against the Parramatta Eels.
1: Last week hum gaye the ek walk par in Christchurch, aur kahan gaye the hum, kya humne dekha, kaise video humne banaya, ye sabhi kuch aapse hum share karenge. Don't go anywhere, sunte rahein.
0: The show of the week is Saturday Night Hangama.
1: This is our

0: Get the tick from Mum this Mother's Day and shop massive store-wide savings this weekend at Briscoe's. Whether it's cosy bedding or kitchen favourites, shop Mum-approved deals and massive store-wide savings at Briscoe's. See online for T's and C's.
1: Moa Point Wastewater Treatment Plant se untreated wastewater Cook Strait mein discharge ho raha hai aur Wellington South Coast tak ja sakta hai. Water quality jankariyon ke liye hamesha yaad karke LAWA website dekhe. Tairne jane se pehle lawa.org.nz dekh lein. South Coast ke Tarakena Bay se dur rahein. Untreated wastewater tat ke kareeb discharge ho sakta hai short notice par aur bagair chetavani ke. Khaas taur par gambhir barish ke samay. Aur जानकारी के लिए wellingtonwater.co.nz देखें।
2: न्यूजीलैंड के कई बड़े बड़े इवेंट्स में होने वाले जो बड़े बड़े माकी आप देखते हैं ना, अरे मनगाओ दिवाली सिख गेम्स में ये माकी इवेंट्स ऑकलैंड माकी एंड पार्टी हायर के हैं। 20 सालों से हैं बिजनेस में। इनके माकी बड़े स्ट्रांग होते हैं बॉस। घर पे फंक्शन हो तो टाइम पर माकी लग जाएगा और टाइम पर उतर भी जाएगा। इवेंट्स ऑकलैंड का नंबर लिखें 09265 0505 और सुनिए ये पोर्टल लू भी हायर पर देते हैं। इवेंट्स ऑकलैंड को कॉल करें 09265 0505
3: और तराना का नाम मेंशन करने पर आपको स्टेज हायर्स मंडप और माकी पर अप टू 5% का डिस्काउंट भी मिलेगा।
4: हर थर्सडे रात 10 बजे से तराना के रंग रूपा के साथ।
5: कौन?
6: मैं यमराज हूँ।
5: ओह जय हो महाराज, लेने आए हो तो चलो।
6: कमाल है जाने की इतनी जल्दी।
5: हाँ मैंने अच्छी लाइफ जी है अभी तक और आगे मेरे फैमिली का भविष्य भी एकदम सेट है। ग्लोबल फाइनेंस वालों ने मेरा लाइफ इंश्योरेंस एकदम अप टू डेट कर रखा है।
6: फिर तो तुम्हें यहाँ कुछ और दिन रहना चाहिए और ये ज्ञान सब में

0: The show of the week here is Saturday night Hangama.
1: Idhar one day mafatu in the guys the kava ka maza le rahe hain. Master Satya Dutt aapko bhi shamil kar rahe hain. Enjoying the kava aur the Sydney mein kuch hamare dost hain program ka maza le rahe hain. Inka bhi swagat hum kar rahe hain. Sydney kava mein jitne bhi hamare dost hain unka bhi swagat hai. Aur Naveen se last humne jab baatein ki to he said come over to Sydney kava for top 50 of 2026. 26 और साथ में मोहना पेसिफिका धर्मेश मस्ट बी हैप्पी. और उधर ब्लूज जो टीम है लास्ट वीक कैप्टन गॉट क्वाइट फ्यूरियस एंड एनिमेटेड ब्लूज का परफॉर्मेंस देखकर.
0: या एंड ही वाज क्वाइट एंजॉयिंग द गेम एक्चुअली एज वेल. यू नो वो देख रहे थे अचानक से ओप ओप ओप ओप और डीजे ने बोला ये गेम ड्रॉ नहीं हो जाए. एंड में वही बात फुल टाइम तक गेम ड्रॉ.
1: और हम लोग बैठे थे उस अपार्टमेंट में बीएनबी वाला जो था और मैं एक कोने में जाकर बैठ गया था अपना फोन चार्ज करने लगा. सोनल अपने लैपटॉप पर मैच देख रहे थे और कैसे मुझे बुला रहे थे.
0: हाँ भाई हाँ तुम्हारी टीम की खेल हो रही है.
1: इतना बुरा प्रदर्शन किया स्टोम्स ने कि मुझे मैच देखने में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी. मैंने सोनल से कहा
0: मैं फुल टाइम अपडेट दे रहा था. ट्राई बन गया बनीज ने बनाया और दो आई थिंक दो बार या एक बार स्टोम्स ने भी ट्राई बनाया था. फिर वीडियो रेफ ने कहा वो बंका ने कहा सॉरी नो ट्राई.
1: सोनल मुझे सस्पेंस बता रहे बोले स्टोम जाए. मैं दिल ही दिल में खुश रहा कि अब बन गया ट्राई. फिर धीरे से रुक कर ताक कर पोस्ट करके नहीं बना
0: नहीं बना. कौन
1: मैन ऐसे ही वापस हम आए और अभी भी लोग मुझसे पूछ रहे हैं डिड यू गो ओनली टू वॉच द चीफ्स गेम इन क्राइसिस. मैं उनको बता रहा हूँ कि वही वाला गेम मिस हो गया.
0: बोले कल लोग जानते कि हम गए बस कौन वाला गेम देखा वो सब नहीं हुआ.
1: मैं जबरदस्त चीफ्स का डाई हार्ट फैन लेकिन उस दिन पहन कर ब्लूज वाला सोनल वाला जेजी में ट्राई कर रहा था
0: और वो थोड़ा सा स्ट्रेच हो गया. यू नो
1: हाउ यू गोना पे
0: सो आई गोना रिम्बस.
1: आई गॉट सम ओल्ड ब्लूज
0: नहीं ओल्ड वाला नहीं आई वांट द न्यू वन नाउ 30 इयर्स वाला मुझे रेट्रो जेजी. ओ हाउ अबाउट दिस हाउ अबाउट यू गिफ्ट दैट जेजी फॉर माय बर्थडे दिस वीक.
1: दो तीन महीना में तो बोल देता हाँ ये तो हाँ बोले याद है इसके नहीं
0: चूसते को बनते हैं बोला चूसते को
1: चूसते कैसा रहा हिंदी रे सोमार
0: बिफ बी आई एम बिफ बुद्ध. ओह मैन दैट वाज अ ग्रेट. मैंने जब देखा हो मैंने सेम टाइम स्क्रीनशॉट करके मैंने खूब हंसा. मैंने बोला द थिंग्स दैट वी टॉक अबाउट घूम घुमा कर कहीं ना कहीं हमें दिख जाता है वो.
1: एंड द फनी वे द किड्स से सनीचर दे कैन इवन से इट.
0: हाउ डू दे से इट
1: पता नहीं सनीचर
0: सनीचर इज अ सनीचर
1: सनीचर. But anyway, last week हम थे स्टेडियम में एंड what a stadium man, one NZ stadium, amazing.
0: Fantastic. ढेर सारे लोगों ने मुझसे भी पूछा कि how did you find the stadium? मैंने कहा one of its kind. जिस तरह से उसको बनाया गया उसका आर्किटेक्चर the seats, you know, just looking down onto the ground और बीच में स्पाइडर गेम में लगा हुआ है. और क्या मैंने बोला था बोले बोल बोले व्यायाम लग गए.
1: मैं देख रहा हूँ सोनल एकदम जोश में गेम देख रहे हैं और चिया कर रहे हैं. अचानक से मैं कुछ फोन पर कर रहा था मुझे सुना ए बॉय बोल वाया लंगे
0: वाया का वाया.

0: The show of the week hai ye.
1: Saturday night hangama.
0: Well, as I say, kaise us din ek game ko dekh ke maine bola tha, it's a lackluster game. Aur Sonal ne bola, lackluster ka hai, acha to hai.
1: Mere points to bane. Bhaka points bane.
0: Oh, can you say this is a dead rubber?
1: Kaun sa? Ye Moana Pacifica. Yeah. For Moana Pacifica, yes. For the Blues, no. They're still fighting for the top two spots.
0: डेड रबा का मतलब क्या है?
1: डेड रबा का मतलब है बोथ टीम्स आर प्लेइंग फॉर नथिंग. तो ब्लूज के लिए दे लुकिंग टू सिक्योर द टॉप टू स्पॉट.
0: अच्छा, मान लो फाइनल में पहुंच गए चीफ्स और ब्लूज, मैच है हैमिल्टन में.
1: ओह, वी विल गो.
0: विल गो.
1: बट
0: देयर इज अनदर वन कमिंग अप, चीफ्स और हैमिल्टन.
1: बट वी कांट गो बिकॉज़ आपको स्कूल बोल है.
0: या 30th मई इज आई एम ऑलरेडी बुक्ड फॉर द स्कूल बोल. So, but it would have been a nice.
1: Can we take the ball down to him?
0: But the Waratahs, I think, are coming to play the Chiefs, na? खेल चुके हैं. But the Chiefs are now traveling to play the Reds.
1: Yeah, and then they'll also be traveling down to Christchurch to take on the Crusaders.
0: Let's see, grab one में कितना grab a seat में, not grab one.
1: नहीं, grab one. Yeah, abhi the flights are, I think, okay. Things are getting back to normal. So, 99, 120, even $169 wala tickets bhi aajkal aate hain.
0: Us din kisi ne mujhe kaha fuel bullet Tudla mein aayenge, Tudla 98 or something.
1: Yes, it's just touching that barrier.
0: So kya wo Hamas mein jo chal raha tha wo ho gaya mamla?
1: Yeah, Hamas.
0: Hamas ke
1: kya? Hamas to wo dekhna wo hai. Hamas terrorist group hai, brother. Hamas is straight up Hamas. Main dono ko mix up mat karna.
0: मामला कहाँ चल रहा था ब्रो?
1: Yeah, straight of Hormuz में. But it looks like कि the tensions are calming down. Supply तो आ रहा है धीरे-धीरे. Haven't heard of anything new. No bombings, no blastings. ऐसे कुछ तो नहीं है. तो hopefully things stay like this और दुनिया में थोड़ा सा normality जो है ये आने लगेगा.
0: Is it true कोई Donald Trump पर कोई हमला करने गया?
1: Oh yes, yes. Washington DC में they were hosting a night. तो वो सभी जितने भी पॉलिटिशियंस हैं व्हाइट हाउस के, वो और उसके साथ में जर्नलिस्ट आए हुए थे. और यूजली यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप सभी को बुलाते हैं और फिर उनका मजाक जो है ये उड़ाते हैं, उनको रोस्ट करते हैं मीडिया को. बट वो मौका नहीं मिला. जैसे वो बैठे, कोई बंदूकधारी और
0: I saw one video TikTok पर किसी ने शेयर किया था कि कैसे डोज हट करके उसको लेकर गए.
1: एग्जैक्टली. और एक वीडियो मैंने देखा था कि जहां पर लोग भाग रहे थे, एक बंदा जो है अपने टेबल पर बैठ कर ऐसे लोगों को देख रहा है, भाग रहा है, और वो अपना जो खाना है ऐसे आराम से खा रहा है. नो वरी इन द वर्ल्ड कि क्या हो रहा है.
0: बट एनीवे, लास्ट वीक क्राइस्टचर्च हम गए और क्राइस्टचर्च में वी हैड टू डू सम कुकिंग एज वेल ऑब्वियसली. तो फ्राइडे नाइट हम पहुंचे. एंड इफ यू आर हेडिंग टू दिस प्लेसेस लाइक दिस नो साउथ आइलैंड में, नो 9 o'clock के आसपास सब डेड हो जाता है एंड यू डोंट गेट टू गेट अल्कोहल ना.
1: Yeah, all the liquor shops are closed by 9 o'clock is the time. 9 PM.
0: लकी कुछ केन हम लोग लेकर गए थे यहाँ से. एंड कैप्टन वेंट टू डू हिज शॉपिंग और फिर वहां से कुछ वोडका का हमने पिया उस रात. एंड देन यप नेक्स्ट डे कुछ कुकिंग भी किया गया.
1: बट द बेस्ट थिंग फॉर ट्रेवलिंग इज दैट राइस, जो पैकेट वाला राइस आता है ऑलरेडी कुक्ड.
0: काफी लोगों को मालूम नहीं होगा, उसके बारे में बताओ.
1: या सो हमने तो वो सनराइज वाला जैस्मिन राइस खाया था. वी थॉट वी हैड टू पुट इट इन द पैन एंड बॉईल इट एंड व्हाट नॉट, बट वो ऑलरेडी कुक होता है. कम्स इन अ लिटिल पाउच, इट्स ऑलरेडी कुक्ड. आप उसको सिर्फ बाउल में निकाल कर एंड जस्ट हीट इट इन द माइक्रोवेव फॉर अबाउट 1 मिनट, 1.5 मिनट्स, एंड इट्स जस्ट एज गुड एज नॉर्मल राइस.
0: तो रोहित जी आज कहाँ पर है बैठ की?
2: आज तो कहीं नहीं है, बट मैं आप लोग के स्टेशन क्यों नहीं पकड़ रहा है.
0: स्टेशन क्यों नहीं पकड़ रहा है? वो नेक्स्ट वीक तक राइट हो जाएगा, अभी ट्रांसमीटर पर काम हो रहा है.
2: क्या नहीं, काफी दिन हो गया तो मैं कंफ्यूज था थोड़ा कि और स्टेशन तो नहीं हो गया इसीलिए.
0: नहीं नहीं नहीं, ऐप पर डाउनलोड कर लो, ऐप पर चलेगा तेरा ना ऐप. ठीक है,
2: फोन पर.
0: हाँ, फोन पर अभी सुन सकते हैं. मोटर में आप कनेक्ट कर सकते हैं ब्लूटूथ के जरिए. ओके
2: ओके, कूल, थैंक यू फॉर द इन्फॉर्मेशन.
0: नाउ वर इज सर जी, एंड कीप लिस्निंग टू तराना. लाइक आई से, अभी ऑनलाइन काफी लोग प्रोग्राम सुन रहे हैं. इधर शेली एंड जैन को भी हम शामिल कर रहे हैं. ये भी हेल्प्स कर रहे हैं वेस्ट ऑकलैंड में. लास्ट वीक इन्होंने फिश फ्राई करके फोटो भेजा हमारे पास. हमने कहा हो सके तो संडे वाला भेज दो, मुझे ट्राई नहीं करना पड़ेगा.
1: आई एम बैक, सेंड इट टू मी.
0: ऐसे फोटो तो नहीं भेजे हम लोग, नो फोटो देख कर आ जाते हैं घर पर.
1: लालच आ जाती है लाल जी.
0: डोंट गो एनीवेयर, इट्स ऑल हैपनिंग.
1: द शो ऑफ द वीक इज द नाइट हंगामा.

0: चाहे पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हो या आप फ्यूचर की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, स्मार्ट चॉइस अब सिंपल है। वेस्ट सिटी GWM हवेल, हवेल की हाइब्रिड और प्लग इन हाइब्रिड रेंज पर डिस्काउंट्स और सिर्फ 4.95% फाइनेंस ऑफर्स। आज ही वेस्ट सिटी ऑटो ग्रुप पहुँचे और जिमी टेला और उनकी एक्सपर्ट टीम से मिले। लिमिटेड टाइम ऑफर, टीज एंड सीज अप्लाई। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट westcityautogroup.nz और सर्च ऑन socials फॉर वेस्ट सिटी ऑटो ग्रुप।
1: गेट द टेक फ्रॉम मम दिस मदर्स डे एंड शॉप मैसिव स्टोर वाइड सेविंग्स दिस वीकेंड एट ब्रिस्कोज। Whether it's cozy bedding or kitchen favorites, shop mum-approved deals and massive store-wide savings at Briscoe's. See online for T's and C's.
2: Happy-

0: जब घर रखना हो गरम या ठंडा, रिलायंस वेंटिलेशन का हाजिर हो जाएगा बंदा। कॉल अस नाउ फॉर अ फ्री कोट ऑन 0800-787-111।
1: रिलायंस वेंटिलेशन मेक्स हैप्पी हेल्दी होम्स।
2: रेडियो तराना का है ये प्लान, बिजनेस को बनाए सुपरमैन।
3: अपने बिजनेस को लेकर जाइए नई ऊंचाइयों पर बाय एडवर्टाइजिंग ऑन द लीडिंग रेडियो स्टेशन, रेडियो तराना।

0: show of the week, aka Saturday Night Hangama.
1: Saturday Night Hangama, ye jari hai, aur thodi der mein ek aur match rahega. Which one is the other game happening tonight, bro?
0: Yeah, we've got the Queensland Reds hosting the ACT Brumbies. Ye wala jo hai, kafi exciting khel rahega, kyunki both of these teams have a chance to cement their place in the top 6. और काफ़ी क्रूशल ये जो है रहेगा. अभी ब्रम्बीज टीम लगातार मैचेस जो है ये हारते हुई है. सो आफ्टर 10 गेम्स दे सिटिंग ऑन 25 पॉइंट्स फिफ्थ पोजीशन पर, और एक मैच कम खेला हुआ रेड्स उनके पास में 23 पॉइंट्स है. तो अगर आज वो मैच जीत जाते हैं उनको थोड़ा सा एडवांटेज मिल जाएगा फॉर द प्लेऑफ्स.
1: मैं ये सोच रहा हूँ कि रेड्स अगर आज हार गए तो नेक्स्ट वीक दे आर प्लेइंग द चीफ्स.
0: Shake the head and they'll be hosting them too.
1: And Reds ने कई बार इवन यहाँ पर आकर चीफ्स को हराया ना.
0: Yeah, so it's like their bogey team.
1: Bogey कैसे?
0: Bogey.
1: Bogey.
0: B-O-G-E-Y. So ये proper spelling. हमारा spelling B-O-G-E-Y. Bogey.
1: Bogey. Okay, तो इसके बारे में बातें करेंगे. कुछ अपडेट्स हमारे फेसबुक पेज पर भी रहेगा आज की रात. देवेन महाराज भाई आपको भी हम शामिल कर रहे हैं, धर्मेश ये भी है, और काफी ब्लूज के जो फैंस हैं प्रोग्राम भी इंजॉय कर रहे हैं आज की रात. आप दोस्तों का भी स्वागत हम कर रहे हैं.
0: और देवेन महाराज जो हमारे सबवे के है काफी कीन, यू नो वो सुपर रग्बी जब होता है ही वॉचेज एवरी गेम, इवन मैसेज लास्ट वीक. और अभी एक फैंटेसी लीग होता है सुपर रग्बी का, तो हम मेरे और उनके बीच में एकदम क्लोज टू क्लोज टक्कर है, वो फर्स्ट पर मैं सेकंड पर. So, अभी जब तक ये सीजन चलेगा, let's see who wins.
1: So, how does that work, fantasy league?
0: So, you pick your players every week, कि कौन सा players, पूरा टीम आप पिक करो, प्रॉप से लेकर फुलबैक तक.
1: Oh, really?
0: You pick your own players, and then during the week, जैसे टीम्स नेम होता है, then you can change every week.
1: कभी तुम्हारा दम प्रपा रहा?
0: Of course, most of it. I led for a few weeks, at least 2 weeks तो मैंने lead किया था, अभी वो वापस ऊपर चले गया, I think 100 points का कुछ difference है.
1: So, out of how many people?
0: There's heaps of people. हमारा तो अलग सा लीग है, छोटा सा लीग. There's 8 people, different people जो उन्होंने ऐड किया था, तो मुझे भी उन्होंने ऐड किया. But I think out of 50,000 people, I was coming or at least half of that.
1: Oh really?
0: Yeah, yeah.
1: Oh, okay.
0: So got some good super rugby knowledge. Sometimes you have to be lucky. Like you don't know कि कोई player अगर इस week, जैसे last week वो बंदा ने 4 try बनाया था. We got some good points for that.
1: Do you get any prize or anything?
0: Yes, last week ek prize tha ki the top scoring bande ko $2,500 cash.
1: Really?
0: Inam, yeah.
1: And where do you play that?
0: Online.
1: Online?
0: Haan, it's just an app, free hai, aapko kuch paisa nahi bharna
1: padta. What's the app called?
0: Woh Super Rugby Fantasy. The Super Rugby ka jo website hai, it's called Super Rugby Fantasy.
1: Main chiefs wala karu kya?
0: Of course, you can always enter it. I think Divan ne aapko bheja hoga shayad. You might have to go back to your messenger and see.
1: Okay, so let's do it guys, if you are into rugby. और जाएं अभी प्ले स्टोर पर सुपर रग्बी फैंटेसी.
0: या और ये सभी स्पोर्ट्स पर होता है. एनआरएल का भी अलग फैंटेसी होता है, प्रीमियर लीग का भी अलग फैंटेसी प्रीमियर लीग होता है. एंड इट्स नॉट जस्ट फॉर फ्री, फ्री आप खेल सकते हैं, बट दे आर प्राइजेस टू बी वन इफ यू रियली गुड एट इट.
1: और हु गिव्स द प्राइजेस?
0: ओह, द पीपल हु होस्ट इट. तो सुपर रग्बी आपको प्राइज देता है.
1: ओह रियली?
0: या एनआरएल आपको प्राइज देता है.
1: कहां रहा अभी तक? Super Rugby Fantasy app. Next minute, देखो DJ जीत गया 2500.
0: Let's party, boys.
1: Chat GPT से पूछ के. Who is going to play for the Chiefs this week?
0: Can you please tell me what team I should have this week?
1: Legend of Vasuli Bhai.
0: LGB.
1: This is LGBQ. This is DJ Desi.
0: On the show of the week, Saturday night.

0: लड़कियों थोड़ा म्यूजिक कम करो। अरे अरे अरे भाई साहब आइए, कैसे हैं?
1: नमस्ते नमस्ते। मंडप बड़ा खूबसूरत बना है, नजर पहले वहीं गई।
0: एनजेड मंडप का है, कितना प्यारा लग रहा है ना।
1: प्यारा मंडप तो है पर खर्चा बड़ा किया होगा भाभी।
0: अरे नहीं नहीं, देखो खर्चा तो वैसे होता ही है शादी में, पर एनजेड मंडप के मंडप बहुत ही अफोर्डेबल होते हैं।
2: मंडप के मंडप खूबसूरत, अफोर्डेबल, और यू विल डील विद प्रोफेशनल्स। कॉल टुडे ऑन 09265050505 और विजिट एनजेड मंडप फेसबुक पेज।
0: और तराना का नाम मेंशन करने पर स्टेज हायर, मंडप और मार्कीज पर आपको मिलेगा 5% का डिस्काउंट।
3: आर यू हैविंग ट्रबल विद पुलिस और फेसिंग क्रिमिनल चार्जेस एंड नीड समवन हु कुड बेस्ट रिप्रेजेंट यू इन द कोर्ट ऑफ लॉ? गुल लॉ लीगल सर्विसेज विद ओवर 20 इयर्स ऑफ एक्सपर्ट क्रिमिनल लिटिगेशन एक्सपीरियंस, दे नो बोथ प्रोसिक्यूशन एंड डिफेंस साइड ऑफ द लॉ। देयर फाउंडर मिस्टर गुल, एन एक्स सीनियर न्यूजीलैंड पुलिस प्रोसिक्यूटर, स्पीक्स योर लैंग्वेज। यूज गुल लॉ लीगल सर्विसेज वेयर एक्सपर्टीज मीट्स अंडरस्टैंडिंग। विजिट gullaw.co.nz टुडे और यू कैन कॉल ऑन 022-353-0872 today.
4: Kick off the winter season with these winning deals from Rebel, like 20% off all women's Puma, New Balance and Under Armour clothing and running shoes, and 20% off football, rugby and netball equipment. These deals and so much more are now at Rebel Sport. See online for T's and C's.
5: The DJ Shalin Show.
6: DJ Shalin Show every Saturday, 6 to 6.
2: बच्चों बताओ डिस्टेंस कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला है?
7: मैम, डिस्टेंस इक्वल्स स्पीड इनटू टाइम।
2: जीनियस। अब बताओ रीपेमेंट बढ़ाए बिना मॉर्गेज जल्दी खत्म करने का क्या फॉर्मूला है?
7: मैम, ग्लोबल फाइनेंस का मॉर्गेज जीनियस प्लान।
0: बच्चा बच्चा जानता है कि मॉर्गेज जल्दी खत्म करने का यही फॉर्मूला है ग्लोबल फाइनेंस का मॉर्गेज जीनियस प्लान। फोन 09255500। टीज एंड सीज अप्लाई।
8: एल्स डिस्काउंट फर्नीचर पापा टॉय में चल रहा है अमेजिंग स्पेशल्स, फ्रॉम बेड्स, डाइनिंग स्वीट्स एंड लाउंज स्वीट्स। खरीदिए ब्यूटीफुल 7-पीस डाइनिंग स्वीट या क्वालिटी कॉर्नर लाउंज स्वीट और लग्जूरियस क्वीन पिलो टॉप पॉकेट स्प्रिंग मैट्रेस एट रीजनेबल प्राइस। क्वालिटी फर्नीचर लो प्राइस में। एल्स डिस्काउंट फर्नीचर, लिमिटेड स्टॉक अवेलेबल, 355 ग्रेट साउथ रोड, पापा टॉय।
0: घर बनाना स्टार्ट किया है, अब तो टेंशन ही टेंशन है।

0: बिल्डर कौन है तुम्हारा?
1: अभी डिसाइड ही नहीं किया, सब अलग अलग बातें बोल रहे हैं।
0: यार सिंपल है, केएमबी कंस्ट्रक्शन से बात करो।
1: क्या स्पेशल है उनमें?
0: अरे वो घर ऐसा बनाते हैं बिना स्ट्रेस, टाइम पे और बजट के अंदर। 18 सालों का एक्सपीरियंस है ऑकलैंड में, और जो काम लेते हैं कंप्लीट करके ही देते हैं। भूपेंद्र कुमार को कॉल करो 021-874-871 पर, या विजिट करो kmbconstruction.co.nz।
2: Stay tuned to Tarana for all IPL updates.
3: IPL, the Indian Premier League. Get behind your favorite IPL team. Kyunki hum denge IPL par sabhi updates, reviews aur previews. Stay tuned to Tarana.
4: Brought to you by Indelible Homes and Chasers. Shani.

0: The show of the week here is Saturday Night Hangama.
1: Yo, Saturday Night Hangama is on. It's a long weekend. Kafi logon ne extra long bana diya. And, you know, kafi log Monday ko, Tuesday ko bhi ghar par the. They didn't even bother going to the work. Aur abhi bhi, you know, log plan kar rahe hain. Is weekend shayad Monday ko kaatenge kona. And some people love just getting, you know, a 4-day or 3-day week.
0: Some people actually like not doing anything. Hmm. Like, unke liye chutti ka matlab is like chutti. Just don't do anything. Kuch nahi karo, utho, relax mein, thoda sa din mein kuch kar diya, fir wapas se let jao, movie dekhte hai, aram karenge. Like, some people enjoy that.
1: थोड़ी देर में मैच शुरू हो जाएगा उधर सनकॉप स्टेडियम ब्रिस्बन में, जहां पर आज रेड्स होस्ट कर रहा है ब्रम्बीज को. ये एक बहुत ही खतरनाक गेम होगा. एंड उधर लोकल नो डाबी है फॉर ऑस्ट्रेलियन टीम. और फिर उसके बाद एक और मैच आई बिलीव लेटर ऑन इन द नाइट होने वाला है सोनल. और उधर आईपीएल अभी अपनी चरम सीमा पर पहुंचने वाला है. एनीथिंग एक्साइटिंग हैपनिंग इन आईपीएल? आई डोंट नो, लास्ट वीक यू आर टेलिंग मी द स्टोरी ऑफ दैट बॉय.
0: Yeah, he's still doing well. I think over the week they beat the unbeaten team, जो थे पंजाब सुपर किंग्स. They were on top of the table and Rajasthan beat them.
1: Oh, really?
0: उनके home ground में जाकर वो हरा कर आए. And वहाँ पर भी वो 15 साल के लड़के ने उन्होंने बनाया 41 runs of about 23 balls ऐसे कुछ.
1: Wow.
0: And he is the leading, well, at that moment, he was the leading run scorer of the tournament and he's hit the most sixes in the tournament already. तो अगर इस तरह से वो खेलते रहे, शायद वो क्रिस गेल का जो रिकॉर्ड है वो ब्रेक कर देंगे ये सीजन में.
1: आईपीएल का है फैंटेसी लैप
0: ऑफ कोर्स. यस, उसमें भी है. एंड आई वंडर हाउ मेनी पीपल एक्चुअली चूज हिम बिकॉज़ ही हिट्स अ लॉट ऑफ सिक्सेस एंड फोर्स.
1: तुम भी तो नहीं उसमें?
0: ना उतना टाइम नहीं होता है. बट लास्ट वीक जब उन्होंने 100 बनाया था, सॉरी द मैच बिफोर उन्होंने जो सेंचुरी बनाया था, उसमें से एटलीस्ट 60 रन वो इन बाउंड्रीज. 60 रन, सोचो अगर आप 100 बनाते और उसमें से 80 रन बाउंड्रीज में आता है. Imagine the power this kid has. जिस तरह से आसानी से वो सिक्स मारते हैं. अभी उस दिन पैट कमिंस ने जिन्होंने बॉल किया था और उन्होंने सिक्स मारा था, उन्होंने फिर मैच आफ्टर मैच इंटरव्यू में कहा, बोले दिस किड इज माई न्यू फेवरेट प्लेयर.
1: ओह रियली?
0: या रिकी पोंटिंग ने भी कहा कि अब इनको इंडियन टीम में शामिल करना चाहिए. जिस तरह से वो जस्ट कोई भी बॉल आए सभी को सिक्स में ही डील करता है वो.
1: कितना एज क्या हो गया अभी?
0: 15. He's only 15 डीजे. अभी आपके घर पे देवू अभी स्टिल स्मॉल, बट जब वो 15 का हो जाएगा, जस्ट इमेजिन कि ये बंदा आईपीएल वर्ल्ड स्टेज पर खेल रहा है.
1: Yeah, and isn't that amazing? So there you go. और आईपीएल भी एक्साइटिंग, इंग्लिश प्रीमियर लीग भी एक्साइटिंग, और साथ में इधर अभी सुपर रग्बी का एक और मैच खेला जाएगा. इस पर भी जानकारी आपके लिए हम लेकर आएंगे. डोंट गो एनीवेयर, हमारे साथ आप भी चलते रहे.
0: The show of the week here is Saturday Night Hangama.
1: इधर पापा टोटो में कुछ हमारे दोस्त प्रोग्राम सुन रहे हैं. आपका भी स्वागत है.

0: DJ Desi on the mix.
1: Bhige chunar wale rang barse.

0: डीजे देसी
1: हर भंग का रंग जमा हो चकाचक इरलो पान चबाए और ऐसा झटका

0: The show of the week है ये Saturday night Hangama.
1: Yes, और भी बहुत कुछ आज रात होने वाला है, इधर मैच भी खेला जाएगा अभी बस कुछ ही देर में, और हमारे साथ आप भी शामिल रहे. इधर मदर्स डे भी आने वाला है, और दीपू ने मैसेज भेजा, पापा फॉर मदर्स डे आई वांट टू गिव मम अ सेंटेड कैंडल.
0: फार आउट.
1: ओके, कीप इट अ सीक्रेट. सो कितना दाम है भाई?
0: डिपेंड्स व्हिच वन यू वांट.
1: वही तो ऐसे नहीं
0: है. अच्छा वाला अगर दोगे तो $50-$60 वाला बात है. बट इफ यू गो टू प्लेसेस लाइक वेयरहाउस और केमार्ट, और अगर आप ब्रिस्कोस भी चले जाते हैं, $10-$20 में आपका काम बन जाएगा भाई.
1: $10-$20 में हो जाएगा?
0: हाँ, आराम से.
1: ओके, तो मदर्स डे है कब? नॉट टुमारो ना?
0: नॉट, इट्स नॉट द फर्स्ट संडे, इट्स द सेकंड संडे इफ आई एम नॉट रॉन्ग. सो 8th, 9th, 10th को है, 10th.
1: Okay. Anyway, so last week we had a great time, and it was a boys' weekend. And Saturday morning, I was longing to go for a walk, or main soch raha tha koi gym chale jao. Lekin captain, he was quite tired looking. He was tired, or maine socha wo walk nahi karenge. Lekin Sonal was 50-50. But then we all went for a walk. Tell us about the walk, kaisa raha?
0: Yeah, because I've been in that area a few times now. So mujhe pata hai ki wahan par Hagley पार्क है, राइट? हेगली पार्क, हेगली ओवल, ऑब्वियसली वहां पर क्रिकेट होता है, बट उसके आजू बाजू में इट्स लाइक अ मैसिव पार्क, मैसिव पार्क. तो मैंने देख लिया था, मैप में भी देख लिया था, और हमारे अकोमोडेशन के पास में ही था. तो मैंने बोला कि व्हाई नॉट लेट्स वॉक डाउन देयर एंड देन लेट्स वॉक अराउंड द पार्क. तो वो जोश में इवन कैप्टन बोला, अच्छा राइट, चलो पूरा अपना पफा जैकेट कैटमेंडू ऐसे बीनी वीनी पहनकर. And it looked like it was cold outside. सुबह तो थोड़ा सा ऐसे चिली चिली सा था. And then we walked. So from our place to Hagley Park was about 1 kilometer. और जैसे वहां पर हम पहुंचे, कैप्टन तो एकदम खुश हो गए, बोले वाओ, ये देखो पेड़, बोले ये देखो रिवर, बोले स्ट्रीम, बोले दिस इज द बेस्ट. और वहां पर शुरू कर दिया उन्होंने अपना वीडियो बनाना. ठीक है दोस्तों, हाँ आज मंडे है, आपके कैप्टन छुट्टी है, बट आई विल स्टिल बी विद यू. और उन्होंने वो स्केड्यूल किया था मंडे के लिए ना. तो किसी ने उनका वीडियो देखा और उन्होंने मुझे मैसेज किया. उन्होंने बोला, सोनल तुमने झूठ क्यों बोला? अब साला थोड़ा देरी मैं सल खजवा रहा हूँ ना. तो मैं बोला कि व्हाट हैपन, व्हाट डिड आई लाई अबाउट? उन्होंने बोला, बोले तुम तो बोला, बोले तुम संडे का आएगा ना, बोले मंडे के वीडियो, बोले तुम अभी भी क्राइस्टचर्च में. मैंने बोला, भाई वो वीडियो जो है वो प्री रिकॉर्डेड वाला वीडियो है जो कैप्टन ने मंडे को पोस्ट किया. आई वॉज बैक होम ऑन संडे. तो आजकल लोग एकदम यू नो नजदीक से देखते हैं कि हम कहाँ पर हैं, क्या करते हैं, और ये सब कुछ अपने बैक ऑफ द माइंड वो हमेशा रखते हैं. सो आई हैड टू एक्सप्लेन कि यू नो आई वॉज बैक ऑन संडे, आई वॉज इन देयर टिल मंडे. बट वॉट अ प्लेस दैट वॉज मैन, वी डिड अबाउट टोटल ऑफ जस्ट ओवर 10 kilometers ऑफ वॉकिंग. हमने शुरू किया नॉर्थ हेगली में. लॉट ऑफ पीपल ऑन दैट सैटरडे मॉर्निंग आउट फॉर वॉक अपने डॉग्स के साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ में, और यहाँ पर डी जे और कैप्टन फुल टाइम. बोले ओ ये अच्छा स्पॉट है, फोटो वीडियो. हाँ मैं हूँ आपका डी जे. सो आने वाले दिनों में रेडियो तराना के फेसबुक पेज पर अगर आप देखेंगे तो डी जे वॉज इन क्राइस्ट चर्च, सम लवली व्यूज. फिर जैसे नॉर्थ वाला सेक्शन खत्म हुआ, वी वेंट टू साउथ हेगली, और वहां पर भी हमने चला. वी सो हेगली ओवल जहां पर क्रिकेट होता है. वी सो अ लॉट ऑफ स्पोर्ट्स फील्ड, रग्बी, क्रिकेट, सॉकर. हमने नेटबॉल कोर्ट्स भी क्रॉस करके गए भाई, जहां पे नेटबॉल होता है.
1: सब कुछ भाई,
0: सब कुछ क्रॉस करके. अच्छा राइट, फिर जब हम इस हाफ में आ गए, देन आई डिसाइडेड कि व्हाई नॉट जस्ट वॉक स्ट्रेट टू आवर अकोमोडेशन फ्रॉम हियर इंस्टेड ऑफ गोइंग बैक.
1: एक वॉक में हमने बहुत कुछ नो कवर किया.
0: सो वी सो डीजे को एकदम मन था कि चलो हम उस बोट वाले जगह पे जाए जो एवन रिवर पर है. एंड कोइंसिडेंटली आवर वॉक टुक अस थ्रू दैट प्लेस जहां पर वो बोट वाला जगह होता है. व्हाट्स इट कॉल्ड? What's the name of the place?
1: Oh, Puntingwala.
0: Puntingwala, yeah. So, जहाँ पर आप, I think $35-$40 भर के आपको वो along the river वो canoe style boat में लेकर जाता है. So we saw that. फिर उसके बाद में हमने वो जो remembrance वाला bridge देखा है Christchurch में, वो भी हमने देख लिया. And on the way back, जैसे हम lights पे खड़े हुए थे cross करने के लिए, मेरी आँख पड़ी summit बिया पर.
1: Oh, that was the best part of the walk.
0: और मैंने बोला कि भाई लोग, 1 kilometer बाकी है घर पहुँचने में. How about we stop for a refreshment break?
1: And it must have been around 11 o'clock?
0: Yeah, around 11, 11:30. No, after 12 ho gaya tha. After 12 ho gaya tha. Haan, it was just because wo, before 12 koi khol nahi sakta tha. It was NZ day. Right. So it was definitely about 12:30 kuch ho gaya tha. The sun was beaming. It started to get a little hot. Then the boys decided ki hum wo ek pub mein jo hai, एक ड्रिंक्स ब्रेक जो है ये लेंगे एंड वी एंजॉयड नाइस चिल्ड वन ग्लास नाइस चिल्ड समिट अल्ट्रा.
1: उसके बाद सोनल का नेक्स्ट क्वेश्चन था भाई तुम पीता है कितना लेता ऑकलैंड.
0: Yeah, I was just trying to see कि you know pubs में क्या होता है. So I think it was about $11, $12 a glass, but पूरा pint था वो.
1: जैसे उस दिन मैं एक bar में गया west में, तो वहाँ पर it was like buzzing, काफी लोग थे. In weekday में था, I think you know, so I had to buy some stuff for my daughter. Oh, she likes the chicken tacos from there. तो मैंने opposite देखा super लिखा खुला है, तो मैं being वसूली भाई, मैंने कहा can I have just one pint ना?
0: Yeah.
1: तो लड़की बता कि मतलब जग पी ला आदमी वन पॉइंट काम आ गया. तो फिर उसके बाद मैंने क्या किया वही जुगाड़ इधर ओडा ओडा करके अक्रॉस द रोड गया जैसे चाइनीज गए ऑपरेटिंग दैट सुपर लिखा. मैंने कहा ब्रदर यू गॉट एनी वोडका ऑन स्पेशल.
0: व्हाट्स ऑन स्पेशल गिव इट टू मी.
1: गाड़ी में रख के नो चल रहा है फिर उसके बाद. बट एनीवे क्राइस्टचर्च में वी हैड एन अमेजिंग टाइम और एक ड्रिंक हमने वहां डिस्कवर किया व्हाइल वाचिंग द गेम. तो ड्रिंक का नाम क्या है?
0: Hey!
1: Or what is it? उसमें क्या है?
0: So HEY is the name. It was just vodka and sparkling water.
1: And there's another thing, lemon lime bitters.
0: वो अलग अलग flavour में था. एक lemon lime bitters का था और एक lemon and mango या orange and mango कुछ था. So it was just flavouring.
1: I always fumble with the flavouring. मैं नहीं देखता. अभी जैसे मैंने weekend जो लाया.
0: हाँ वो आप वो जो hard rated solo लेकर आए. हाँ sorry hard rated solo लेकर आए. Even उस दिन भी जब हम गए थे उठाने के लिए आपने first गरम box में उठा लिया था orange लेमन मैंगो. फिर आपने बोला ओ, तो मैंने बोला ये तो गर्म होगा ना ठंड वाला लेते हैं वो आइस फ्रिज वाला लेते हैं. देन व्हेन वी वेंट इनसाइड देन आपने लेमन वाला उठाया. मैंने बोला ओ दिस इज डिफरेंट. थोड़ा सा बाद में लिखा मैंगो.
1: Lemon and mango mein pira hu.
0: Lemon and mango bhai.
1: Hello, can you explain? Brother, I don't like this.
0: Hey, dekho.
1: This is DJ Desi.
0: On the show, Saturday night. Hangama.
1: This is my pineapple picker.

0: इस मदर्स डे अपनी मम को एक ऐसा गिफ्ट दें जो पूरा साल उनके साथ रहे।
1: isubscribe.co.nz पर आप मैगजीन सब्सक्रिप्शन पर अप टू 56% की बचत कर सकते हैं, जहां पर आपको ओवर 2000 मैगजीन्स मिलेंगी। iSubscribe वो बेस्ट जगह जहां पर आपको अपनी मम के लिए मैगजीन मिल सकती है। प्लस इनका रिवॉर्ड्स प्रोग्राम ज्वाइन करने पर इंस्टेंट $5 का क्रेडिट पाएं। आज ही सेव करें iSubscribe के साथ isubscribe.co.nz।
2: Hey Hamiltonians, guess what? अब आपके यहाँ Hamilton में आ गया है Global Finance. For any kind of home loan, business loan, commercial loan, refixing या refinancing के लिए contact करें Global Finance को, जो mortgage के साथ साथ insurance में भी specialize करते हैं. Life, trauma, health insurance, हर चीज के लिए Global Finance. Now in Hamilton at Unit 26, 20 Clyde Street, Hamilton East. Phone 07577-0888. Global Finance, now in Hamilton.
3: Drawing inspiration from urban communities around the world.
4: We present Pick O Toy Toy, a brand new urban development in Papatoetoe. Brick, low maintenance, 2 and 3 bedroom homes from 649,000.
5: 5 minutes from New World. E3s, schools, city rail link, Pohinui bus interchange and major motorways.
4: Join the new community. Selling now. Find out more at pickotoetoe.nz.
5: That's PIKOTOETOE.NZ.
6: Go it.

0: Yes, the night hangama.
1: Okay, एक और मैच शुरू हो रहा है उधर ब्रम्बीज एंड रेड्स के बीच. व्हाट अ गेम दैट विल बी. और अभी भी लोग जाग रहे हैं, आज लेट नाइट तक जागेंगे, पार्टी करेंगे. लास्ट वीक वी वर इन क्राइस्टचर्च, वहां पर पार्टी ड्यूटी करने के बाद वी केम बैक संडे मॉर्निंग और अर्ली मॉर्निंग वहां पर वी वेंट टू द लाउंज और कैप्टन मुझे लाउंज में से सुबह 10 बजे के आसपास दिखा रहा है. इसे समी, वो कौन सा लो का बिया था,
0: समित
1: नहीं था,
0: स्टाइन लगा पिया,
1: स्टाइन लगा. एंड मैंने उनको चकित कर दिया ये कहकर कि नो ब्रो आई वाज हैविंग माय कॉफी.
0: Yeah, well, it depends on how things are. Usually, I prefer to have like a, you know, proper breakfast. Subha ki achi tarah se kha pi kar. Tab to captain ne bhi mujhe offer kiya tha ki aap piyoge ki nahi. Maine bola nahi, aap piyo. I had nice coffee. I had some eggs. Eggs ke saath mein mash aur wo tangerine tha. Then I enjoyed some oats. Oats wo jo cup mein aata tha and some orange juice.
1: प्लेन में हम बैठे हैं सीट नंबर 1A B C और फिर सोनल इतना खा के भी आए, फिर थोड़ी देर में बोले व्हेन आई ऑर्डर समथिंग, बोले कैन यू ऑर्डर कुछ चिप्स.
0: नहीं, मैंने बोला था जब मैं ऑर्डर करूंगा तो मैं ऐसे 3 ऑर्डर करूंगा कि वो जो कुकीज देंगे तो उसमें से मैं ले लूंगा ना. बट वो बंदा मैंने ऐसे किया तो वो तो अलग मुझे 4 दे दिया, फिर तुम्हें 2 दिया, कैप्टन को 2 दिया,
1: सबको बांटेंगे,
0: सबको देंगे कुकीज, सबको देंगे. बट इट वॉज क्वाइट नाइस. वो वाला जो कुकी टाइम का कुकीज था, it was the oats cookies, DJ.
1: Oats
0: wala jo hai. So healthy cookies, and that's what you get Air New Zealand flight mein. On the way back, luckily we didn't have any emergency like we did while we were going to Christchurch. On air, on board, ek medical emergency ho gaya tha, and the crew was busy with that on our way down to Christchurch. So always good flying Air New Zealand, and we were back safe and healthy, and now planning for our next getaway. जो हम शायद अब माता रिकी में करना पड़ेगा, बिकॉज यू आर बिजी ड्यूरिंग द किंग्स बर्थडे वीकेंड.
1: Where am I going?
0: You've got your school ball. Why weekend? Why weekend?
1: Far out. अच्छा तो हम थे अपार्टमेंट में थे, वहाँ पर का जो फीचर्स जो थे, फैसिलिटी वाज रियली गुड, सब कुछ था. बट उसको चलाने के लिए इस टाइम सोनल हैड टू लुक इनटू द मैनुअल.
0: सो देयर वाज एक्चुअली अ होम ऑपरेटिंग मैनुअल जहाँ पे जो सिंपल स्टेप्स है कि अगर कुछ नहीं चलता है, जस्ट हाउ टू मेक इट वर्क. सो फर्स्ट थिंग वाज, तो वहां पर डीजे बाथरूम गए नीचे, बोले भाई टेप नहीं खुले. बोले कैसे खोलो ये टेप. चलो आप होकर आ गए, कैप्टन भी गए, उन्होंने कहा फार आउट ये टेप है कि, बोले क्या है, बोले ये खुल क्यों नहीं रहा है. सो द टेप ऑब्वियसली वॉज, वो लेफ्ट राइट वाला अप डाउन वाला नहीं था, उसको आपको बैकवर्ड जैसे बेंड करना था, जैसे नहीं आप नेक को छुओ तो ऐसे बोटल नेक की तरह से पीछे हो जाता है. सो दैट वॉज द काइंड ऑफ टेप. फिर नेक्स्ट डे सुबह कैप्टन वॉज ट्राइंग टू कुक, एंड इट वॉज जस्ट लाइक दोज नॉर्मल इलेक्ट्रिक कुक टॉप्स. ही ट्राइड एवरी थिंग, बोले सोनल भाई चले नहीं है. देन आई केम डाउन एंड आई ओपन द मैनुअल, और उसमें एक चीज था कि यू टर्न इट ऑन एंड फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैड टू टर्न ऑफ द चाइल्ड लॉक.
1: चाइल्ड लॉक,
0: उसमें चाइल्ड लॉक था. तो चाइल्ड लॉक ऑफ करने के बाद में देन द स्टोव वॉज अप एंड रनिंग, ऑल गुड. द नेक्स्ट टाइम वी यूज द मैनुअल वॉज फॉर द डिश वॉशर, कि डिश वॉशर कैसे चलाए, बिकॉज वी यूज्ड अ लॉट ऑफ डिशेस द प्रीवियस नाइट एंड फॉर ब्रेकफास्ट एंड फॉर लंच. तो हमने अच्छी तरह से उसको डिश वॉशर में रख कर धोया. फिर शाम के वक्त डीजे जुट गए अपने मशीन में,
1: and that was a dryer and a washer,
0: two in one. So उसमें wash भी होता था और इसमें dry भी होता था.
1: Wash तो हो गया अच्छी तरह से, फिर उसके बाद 20, 40 तीन अलग अलग टाइम
0: 60
1: कपड़े को dry किया गया,
0: और 60 के बाद में बोले बोले boy देखो ये dry हो गया.
1: Don't go anywhere, it's all happening
0: on the show of the week, Saturday night hangama.
1: This is DJ Desi.

0: The show of the week है ये Saturday night Hangama.
1: मैच खेला जा रहा है सुपर रग्बी वाला इधर रेड्स के ग्राउंड में. रेड्स टेकिंग ऑन द ब्रम्बीज और इसके बारे में भी कुछ अपडेट्स हमारे फेसबुक पेज पर. NRL वाला भी एक मैच सोनल खेला जा रहा है. व्हाट अ गेम दैट इज टर्निंग आउट टू बी. और काफी फास्ट रग्बी लोग इंजॉय कर रहे हैं. सो आप भी कहीं पर हैं आज मैच इंजॉय कर रहे हैं और साथ देते रहें ऑन सैटरडे नाइट हंगामा. बताते रहें कहां पर हमको आप फॉलो कर रहे हैं. ओके दिस इज द कोरुआवा सोनल ने हमको कहा. लेकिन कोरुआवा वाला जो फ्लाइट था व्हाट हैपेंड इन दैट फ्लाइट वी हैवंट डिस्कस दैट
0: येट. नो वी हैवंट. सो ऑब्वियसली ऑनलाइन बुकिंग के वक्त बताया गया था कि वो कोरुआवा फ्लाइट रहेगा जहां पर यू गेट सर्व्ड यू नो अल्कोहल बेवरेजेस आपको मिलेगा. यू गेट सम चीज वाइन एंड क्रैकर्स एंड अ फ्यू अदर थिंग्स टू एंजॉय योर फ्लाइट डाउन. तो जैसे हम प्लेन में बैठे वी वर क्वाइट एक्साइटेड. वी आस्क्ड द फ्लाइट अटेंडेंट सो व्हाट्स ऑन द अल्कोहल मेन्यू. She shaked her head and said, "Oh, nothing. We just got tea and coffee." And I thought she was just joking. फिर मैंने बोला, मैंने अपना टोन चेंज किया. मैंने बोला, "I thought this is a Kuruawa flight." मैंने बोला, "Oh no, but this is just a single service flight." मैंने बोला, "Oh, how come?" तब फिर उन्होंने डिस्क्राइब किया कि Kuruawa flight operates between the times of around I think 4:30 या 5 o'clock से लेकर 7:05 PM तक वो ऑपरेट होता है. For flights that are over the time of 61 minutes. So, एक घंटा से ऊपर अगर आपका फ्लाइट टाइम है तो आपको Kuruawa जो सर्विस है ये मिलता है. वेयर यू गेट सर्व ड्रिंक्स ऑन बोर्ड ड्रिंक्स इन द टर्म्स ऑफ बियर्स एंड वाइन्स एंड सम चीज एंड क्रैकर्स एंड सम यू नो गुड स्टफ टू ईट और उसके साथ में टी एंड कॉफी जो है ये भी होता है. सो इवन शी वॉज क्वाइट सरप्राइज क्योंकि जब मैंने उनको अपना बोर्डिंग पास दिखाया बोर्डिंग पास में क्लियरली स्टेटेड है कि हमारा जो फ्लाइट है डीजे वो एक Kuruawa फ्लाइट होना चाहिए.
1: So, did you hear back from Air New Zealand?
0: Not as yet, but usme likha gaya tha ki that they received my complaint and due to high number of volume of I don't know complaints on likha gaya tha, but high number of volume of messages unke paas mujhe aa rahe hain. Somebody will get back to me within 5 to 10 working days.
1: How can we sue?
0: Oh, maine mera jo usme tha, I actually wrote down ki I think it would be very interesting अगर यहाँ पर Commerce Commission और I think एक और एक कोई है जो देखता है overlook consumer वाला जो है consumer watchdog. तो मैंने उसमें दोनों का नाम लिखा. मैंने कहा it would be quite interesting to see कि if you are misleading your customers like this what would the consumer watchdog and what would the disputes tribunal have to say about this matter.
1: Really?
0: फिर मैंने अच्छा से नीचे लिखा कि I am expecting a remedy for this issue. I don't want just a sorry. It was a technical glitch.
1: Sorry.
0: I don't just want a sorry. Please give me a proper remedy for this because I have been misled as a customer. फिर मैंने उनको स्क्रीनशॉट उतार के भेजा. From the same day, मैंने बोला till this date. You are still selling the same time slot as a Kuruawa flight.
1: Looks like Sonal kuch claim karne wala hai something big.
0: Achhi tarah se maine kebab ko lapet kar bheja hai. So jab kuch response aayega then we will share.
1: Apology aayega, sorry.
0: Sorry.
1: Hey. This is DJ

0: The show of the week is Saturday night. Hangama.
1: आजकल जिमिंग इंग्लिश कुछ ज़्यादा हम भी करने लगे हैं, you know, going into gym, जिमिंग,
0: जिमिंग. Oh, जिम. मैंने बोला है जिमी कौन है?
1: जिम. अच्छा, have you been to that infrared sauna?
0: I've experienced a few of them. Infrared sauna होता है, एक normal वो जो heated sauna होता है. Have you ever tried the plunge bath? Mm-hmm. आपके जिम में है प्लंज बात की नहीं?
1: I don't think so.
0: You sit in that ice cold water.
1: I had club physical में है.
0: Yeah, that's really good for your body actually. Because वो आपके जो blood flow को और muscle जो recovery को है उसमें काफी help करता है.
1: उस दिन किसी ने मुझसे कहा, your lower body is good, you got your legs are strong. Uh-huh. क्योंकि मैंने leg वाला किया था सब, तो बोले it's very good, let's try upper body. मतलब easy है ना, घीचे जाए खली. फिर मुझसे कहा गया वो ऊपर जो नहीं है, बोले पकड़ के टंग जाओ. खूबसूरत लड़कियां जो इस तरह के लिए साइड लुक दे रही कि ये बंदा भी जाए. मैं ऐसे गया.
0: I can't.
1: Hello. तो पता चला बोले अप्पा बॉडी में थोड़ा पावर कमती है ना. सो आई डोंट नो, यू गॉट एनी टिप्स फॉर मी?
0: या ऑफ कोर्स, आई थिंक यू शुड डू सम बेंच प्रेस.
1: वो क्या है, कैसे करते हैं?
0: बेंच प्रेस होता है. सो यू ले
1: आज हो जाए.
0: हां, यहां पे है नहीं तो यू हैव गॉट लाइक यू नो, जिम में तो आपने देखा होगा वो जो बेंच होते हैं जहां पे लोग ऐसे लेट जाते हैं, तो आप उस पर लेट कर दोनों साइड वो जो डंबल्स होता है, देन यू डू प्रेस अप्स विद देम.
1: ओके,
0: तो वो आपका चेस्ट और अपर बॉडी को और शोल्डर्स को हेल्प करता है. और समटाइम्स देयर इज अनदर मशीन जो ऐसे करके तो आप अपने सामने उसको खींचते हो.
1: ऐसा किया मैंने.
0: हां,
1: जैसे वही थर ऊपर गए ऐसे जाकर रुक गए.
0: बोले बोले हाथ आगे कहीं नहीं आए,
1: मैं ऐसे जा रहा हूँ.
0: बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट एस्पेक्ट कि आपका ब्रीदिंग जो है ये सही होना चाहिए.
1: अभी तक मेरा
0: हाथ, सो व्हेन यू पुल बैक यू ब्रीद आउट. व्हेन यू पुल, जब आप उसको अंदर वेट को उठा रहे हो, देन यू ब्रीद आउट. Then
1: let's
0: in.
1: Do a video for our Facebook viewers and let's ask them to comment ki Sonal ye jo exercise kar rahe hain in a gym, okay, isko kya kehte hain. So ladies and gentlemen, we're going to record this aur hamare Facebook page par jaakar aap dekh sakte hain. So Sonal, today aaj hamare jo coach hain Sonal, ये बताने जा रहे हैं कि एक नया जो तरह का, नया नहीं है,
0: नॉर्मल जिम एक्सरसाइज है.
1: नॉर्मल जिम एक्सरसाइज तो कैसे करते हैं उसको?
0: दो तरीके का होता है. एक तो होता है जब आप मशीन में बैठकर एंड देन यू पुल इनटू द फ्रंट.
1: राइट,
0: सो यू हैव टू टेल अस कि वो कौन सा एक्सरसाइज है,
1: कैसे करते हैं
0: ऐसे.
1: फिर
0: so you have to do at least 8 to 12 reps. आपको करना चाहिए three times minimum for that. और दूसरा वाला है, when you lie down on the bench flat, आप ऐसे lie करते हैं, then you've got your dumbbells to the side,
1: right?
0: Then you go,
1: wow,
0: and then you push out. उसको क्या कहते हैं?
1: तो ये दो है, आप देखिए हमारे Facebook पेज पर, नीचे कमेंट करें और बताएं. तो when is the last time you went to the gym?
0: I don't go to the gym, brother.
1: Oh, but you know everything.
0: I know everything. I used to go to the gym. अभी मैं सिर्फ hot hip pilates करता हूँ.
1: क्या?
0: Hot hip pilates.
1: This is Saturday night hangama. Don't go anywhere. More to come your way. DJ Desi.

0: द शो ऑफ द वीक है ये सैटरडे नाइट हंगामा।
1: फेसबुक पर एक वीडियो हमने डाला है, सोनल ने दो तरह के वो जिम वाला जो एक्सरसाइज है ये किया है, और यू हैव टू कमेंट। कुछ फनी फनी हिलेरियस कमेंट्स भी आ रहे हैं। और इसी तरह से किसी ने मुझे बता दिया कि वो सोना जो होता है इंफ्रारेड वाला, उसमें जाकर बैठो और उसका टेम्परेचर सेट करना होता है 60 degrees 10 minutes चलता है, ठीक है?
0: Yeah.
1: वो खुद स्टॉप
0: होता है, ऑटोमेटिक टाइम अप होता है।
1: तो किसी ने मुझसे कहा 30 minutes बैठो 65 degrees, उसके बाद
0: पता नहीं पसीना कहाँ से चू रहा है।
1: उस दिन मैंने देखा लिटरली यार, ये हाथ मैंने ऐसे किया यहाँ से टिप टिप एल्बो से पसीना चू रहा है।
0: इट्स लाइक अ डिहाइड्रेटर प्रीटी मच, यू सिटिंग इन अ डिहाइड्रेशन मशीन, कि वो आपका जो बॉडी का वाटर है इट्स जस्ट टेकिंग इट आउट।
1: उसके बाद मैंने किसी से पूछा कि यू नो डू यू थिंक आई शुड टेक इलेक्ट्रोल
0: इलेक्ट्रोलाइट्स।
1: हां सुनो तो वही एग्जैक्टली वही हुआ। उन्होंने कहा व्हाट इट्स इलेक्ट्रोलाइट्स, आई सेड नो इट्स इलेक्ट्रोल एक्चुअली, इफ यू इलेक्ट्रोल इज द ब्रेन आई थिंक।
0: या इलेक्ट्रोल, बट वो इलेक्ट्रोल तो वो होता है ना जब आप बीमार हो जाते तो वो मिक्स करके पी रहा है, दैट्स डिफरेंट, दैट्स व्हेन यू गॉट वोमिटिंग एंड डायरिया तब वो पी रहा है। फॉर एक्सरसाइज यू हैव टू ड्रिंक इलेक्ट्रोलाइट्स।
1: That reminds me, let me drink some water. काफी पानी किया। So what are the benefits of doing sauna?
0: सोना में आपका बॉडी रिलैक्स हो जाता है आफ्टर हार्ड डेज ऑफ वर्क, आपका जो एक्स्ट्रा बॉडी मॉइस्चर है एंड हीट के कारण से यू रिलैक्स अलॉट। सो ओवरडू भी नहीं करना चाहिए, बट बिटवीन द 20 to 30 minutes इट विल हेल्प यू, एंड देन यू जस्ट गो होम, यू हैव अ नाइस शावर एंड यू विल हैव अ गुड नाइट स्लीप।
1: Oh really? No wonder. उस दिन मैं सुता सुबह 6 बजे आके खुली।
0: And if you regularly exercise, DJ, you will always have a good night's sleep. But हाँ वही बात है कि अगर आप अच्छी तरह से exercise करते हैं उसी तरह से आपको थोड़ा खाना भी maintain करना पड़ता है, and you must also have some good recovery. तो स्ट्रेचिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आप स्ट्रेच करते हैं कि नहीं?
1: जी जी कभी कभी।
0: क्या करते हैं?
1: I do the what do you call जो चेयर पे बैठ के tai chi।
0: Yeah, it's good for you. Like you must stretch. अगर आप upper body workout करते हैं, then you must do. Next week हम video पर दिखाएंगे how to stretch. We should start our own gym series on a video.
1: This is DJ Desi
0: on the show of the week, Saturday night, Hangama.

0: The show of the week है ये Saturday night hangama.
1: Match खेला जा रहा है फिलहाल Brumbies और Reds. What a game it is turning out to be. Booba वाला game as Uday said और तो ये मैच भी लोग enjoy कर रहे हैं. Booba आज Saturday night hangama ये भी जारी है. Drinks वगैरह भी लोग पी रहे हैं.
0: मैं midweek कुछ memes देख रहा था DJ and something came across ना तो उन्होंने कहा एक टॉपिक चल रहा था तो फिर उन्होंने क्वेश्चन पूछा बोले व्हाट काइंड ऑफ बीज मेक मिल्क. डू यू नो व्हाट काइंड ऑफ बीज मेक मिल्क.
1: व्हाट काइंड ऑफ बीज मेक मिल्क. हनी बीज. वो क्या हनी बनाते ना. तो बताओ.
0: बूबीज. So I quite laughed because it was like, you know, comedy show chal raha tha and everybody just cracked up laughing because of the way he said it. Bale, oh, what kind of bees make milk?
1: Bale, what kind of bees?
0: Bale, boobies.
1: Boobies.
0: We're on an SFX speaker.
1: Hey! Fiji mein ek story abhi viral hua aur woh jo naam aaya saamne naam dekh kar mujhe article padhna pada pata lagane ke liye ki yeh hai kaun woh naam.
0: Yeah, maine pehle jab socha jab maine padha bole King Khan arrested in Fiji. तो मैंने बोला शाहरुख खान फिजी कब चले गए. मैंने तो ये सोचा बिकॉज आई ओनली नो वन किंग खान विच इज SRK. लाइक यू आई हैड टू गेट इनटू द न्यूज एंड रीड. तो ये जो किंग खान है ये फिजी का गरीबों का टीमू वाला विजन जो है ऑफ किंग खान बट नॉट इन अ गुड सेंस क्योंकि इनको अब कर लिया गया है गिरफ्तार एंड रिमांडेड इन कस्टडी. सो सोचा जा रहा है कि ही इज द किंग पिन of the drug kingpin of the drug industry or the drug lord in Fiji. और नांदी के मजिस्ट्रेट कोर्ट ने अभी भी इनको बेल जो है ये नहीं दिया गया है और इन्वेस्टिगेशन जारी है क्योंकि इनके पास में ढेर सारे प्रॉपर्टीज हैं, कैश है, गाड़ियां हैं, बट कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि कहाँ से आ रहा है. दिस लाइक नो प्रॉपर वे ऑफ शोइंग कि ये एक्चुअली काम क्या करता है, पैसा कहाँ से आ रहा है और इतना ढेर पैसा कहाँ से आ रहा है. तो अभी जो मजिस्ट्रेट कोर्ट है उन्होंने उनका $400,000 का प्रॉपर्टी, उनका जो कैश है लोकल बैंक में, उनका जो चार गाड़ियां है सभी उन्होंने अभी रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर पर रखा हुआ है और ये जो इन्फॉर्मेशन है डिस्क्लोजर है 7 दिन में फाइल किया जाएगा और इस मैटर को 13 मई को सुबह हाई कोर्ट जो है ये ट्रांसफर करेगा. सो दिस इज द किंग खान ऑफ फिजी.
1: या सो यप ये सब स्टोरीज अभी सुर्खियों में है ना. फिजी में काफी कुछ हो रहा है. सो
0: अभी फिजी में ड्रग प्रॉब्लम काफी बड़ा हो गया है. देयर वाज अ मिडवीक डिस्कशन जहां पर मैं गया था और वहां पर कैसे वो बता रहे थे कि आजकल पुलिस स्टॉप ब्रेथलाइजर के लिए नहीं होता है. They search for drugs in your car.
1: Oh, really?
0: Yeah. So checkpoints जो है फिजी में अभी काफी ज्यादा होने लगा है. They're looking for drugs.
1: एक और नाम सामने आया न्यूज में. Another guy was taken into custody. वो questioning I think और कुछ था केस. उनका नाम मालूम क्या था?
0: क्या?
1: सोनल शर्मा. Hey, businessman.
0: Wow, wow. कौन से देश से? What country?
1: Fiji.
0: Oh. Hey. I think robot ने कुछ भेजा था. कोई सोनल शर्मा ने मीठा कर दिया था.
1: Hey. This is DJ Desi.
0: On the show of the week.

0: The show of the weekend is Saturday night Hangama.
1: Yes, match khela ja raha hai aur is par bhi jankari aapke liye hum lekar aayenge. Reds and Brumbies. Looks like Brumbies kafi tough ab games unke baaki hai aane wale dinon mein. I'm not sure they might just make it to the playoffs somehow but इसके बारे में और भी बातें हम करेंगे और भी विवरण लेकर आएंगे बाद में लेकिन
0: विवरण
1: जी next week the Chiefs will be playing the Reds in Queensland so what a game that will be
0: yeah next week 9th of May I think वो quite exciting game जो है ये होने वाला है दूसरे और NRL में Sydney Roosters और Broncos का जो खेल है ये भी खेला जा रहा है Rhys Walsh he's back into the team as well after fracturing his jaw
1: yeah and what about the players in Melbourne Storm man
0: Oh, I think Jerome Hughes इस वीक नहीं खेल रहे थे बट या लो द कोच लुक वेरी फ्रस्ट्रेटेड अभी उनका हाफ टाइम टीम टॉक जो है वीडियोस काफी वायरल हो रहे ऑनलाइन जिस तरह से के वो अपने टीम से बातें करते हैं
1: अच्छा एलिया इन द वीक आई टुक सम स्टूडेंट्स टू मांगरे माउंटेन फॉर एनुअल ट्रिप मांगरे माउंटेन इट्स लाइक वन राउंड वन लैप अराउंड द माउंटेन इज 2 किलोमीटर्स
0: ओके
1: एंड यू नो फॉर अस वी कैन डू 3 इजीली तो वो किया मैंने फिर उसके बाद आई केम डाउन टू दैट एस्प्लेनेड जहां पर सोनल का वॉक द टॉक था
0: एट द बैक वेयर द यॉट क्लब इज
1: द यॉट क्लब इज द बोट क्लब के सामने हमने वो पार्क जो है वहां गाड़ी पार्क किया बच्चे वर हैविंग देयर लंच एंड ऑल दोस थिंग्स और फिर कॉफी के लिए मैं गया और वो जो मांगरे ब्रिज टाउनशिप है आई टेल यू मैन वो वीक डे था अराउंड 1 o'clock
0: एंड इट वॉज हैपनिंग
1: और वहां पर एक लाइन से बगल बगल दो तीन कैफेज
0: एंड दे वर ऑल फुल
1: और दिन में मैं सोच रहा हूँ कि आर पीपल ऑन हॉलीडे And that vibe जो था बाहर बैठ के तो आराम से कॉफी सिप करो एंड दैट बिग मग ऑफ कॉफी $2 for $11 or something और मैन आई टेल यू इट वॉज समथिंग डिफरेंट मैन
0: सो वो जो लोकेलिटी है क्वाइट अ वेरी स्मॉल निट बट स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी वो है बिकॉज वो मेरा बैक रोड है कभी कभार जब मैं घर जाता हूँ फ्रॉम वर्क दैट्स माई बैक रोड और इट्स ऑलवेज फुल ऑफ पीपल द टाउन सेंटर वेरी स्मॉल बट अ शॉप फॉर एवरीबॉडी वहाँ पे आपको कैफे मिलेगा आपको वहाँ पे फ्रेश चॉइस मिलेगा अलग अलग तरीके के जो आपको टेक अवेज है ये मिलेगा देयर इज अ बटर चिकन वाला है देयर इज अ कबाब शॉप देयर
1: बटर चिकन फैक्ट्री
0: वहाँ पे दैट्स द वन और कपल ऑफ फ्लोरिस्ट भी वहां पर है न्यूजीलैंड पोस्ट का पोस्ट ऑफिस भी वहां पर है सो दे प्रीटी मच गॉट एवरीथिंग इन दैट लिटिल सेंटर
1: या और मैंने देखा वहां फ्रेश फिश एंड चिप्स भी मिलता है
0: सब कुछ आपको वहां पर मिलेगा सो अ लॉट ऑफ पीपल वो जो उस लोकेलिटी में पीछे रहते हैं दैट मैंगरी ब्रिज साइड मैंगरी ईस्ट साइड दैट्स देयर काइंड ऑफ shopping place or their coffee place where they come and get together
1: and they have a tavern as well so yeah. TABB and now I was thinking well, one day let's go and
0: of course
1: play in the tavern TABB mein.
0: I think that should become the next bucket list ki hum alag alag bars ya beers ya taverns mein jaakar try karenge jaise nahi abhi ek banda jo hai wo famous ho gaya hai wo New Zealand mein alag alag jagah ke pies khakar unka review de rahe and he's on video number 93
1: Let's do that, man.
0: I think we should do that.
1: मैंने ऐसे ही कॉल किया एक बिरयानी शॉप में वेस्ट ऑकलैंड में मैंने कहा I'm from Radio Tarana, I'm coming to try a biryani. फिर भी चला थेडी सिंह जुलाली.
0: When things don't work, how you think they will work?
1: वसूली भाई का जादू अब नहीं चले देना है
0: ना. अब वो जादू फिर से चमकाना पड़ेगा.
1: This is DJ Desi.
0: On the show of the week, Saturday night. Hangama.

0: Show of the week, hey, Saturday night hangama.
1: Oh yeah, Saturday night hangama se ab जाने का वक्त हुआ है और जाने जाने से पहले अभी और भी लोग मैसेज वगैरह कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, लेट नाइट प्रोग्राम भी सुन रहे हैं. एंड थैंक्स फॉर लिस्टिंग ट्यूनिंग इन. काफी स्ट्रगल करके आज रात्रि को ऑन सैटरडे नाइट हंगामा.
0: यस, जाने से पहले बता दें ओवरनाइट कुछ इंग्लिश प्रीमियर लीग गेम्स जो है ये होने वाले हैं. अब नाउ वी गेटिंग इनटू द क्रंच टाइम. चार मैचेस रह गए डीजे. स्टिल नॉट डिसाइडेड कि इंग्लिश प्रीमियर लीग में जीत किसकी होगी. विल इट बी मैन सिटी, विल इट बी आर्सेनल. ये दो टीम्स है जो टॉप टू के लिए अब फाइट आउट कर रही है. वेर एज मैनचेस्टर यूनाइटेड एक दो और विन्स के साथ में वो अपना जो प्लेस है कन्फर्म कर लेगी फॉर द यूएफए चैंपियंस लीग. And they'll either finish third or fourth best, but it looks like they've done well from where they were mid in the season. So, कुछ matches जो है overnight आज जो होने वाले हैं, Arsenal और Fulham का जो खेल है ये रहेगा 4:30 AM. Newcastle will take on Brighton. Man U का game Manchester United versus Liverpool Monday morning रहेगा at 2:30 AM. और कुछ IPL खेल जो है ये भी खेला जा रहा है. Tomorrow morning 2 AM से we'll see Chennai take on Mumbai Indians. और फिर संडे रात्रि को 10 PM हैदराबाद सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस द स्ट्रगलिंग कोलकाता नाइट राइडर्स.
1: ओके, वी आर आउट ऑफ हियर. यू गाइस कैरी ऑन. वी विल बी बैक नेक्स्ट वीक ऑन द शो ऑफ द वीक. बाय. दिस इज डीजे देसी.

your soul, connect your body, enter the simulation.

ये है न्यूजीलैंड का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो तराना।

0: Do you want New Zealand to know about your business? If yes, it's just a call away. Call Colin now on 0274-999015 and get your advert to play on The Edge, Breeze, Mo FM, George or Magic.
1: वतन से दूर आपको वतन की याद दिलाता है, आपको खुश करता है, आपका ख्याल रखता है, आपका फेवरेट, आपका साथी, रेडियो तराना।

0: नमस्कार, आज का मंगल प्रभात सभी सुनने वालों को तराना टीम मैनेजमेंट तथा सुबह के अनाउंसर नित्यानंद सुंदर की ओर से शुभ हो। नए वर्ष की शुभकामनाओं के साथ आरंभ करते हैं अपने साप्ताहिक कार्यक्रम तीन घंटे के लिए प्रभो मिलन। इसमें सबसे पहले आधे घंटे के लिए श्रीमद् भागवत कथा, प्रस्तुत करता संत श्री भाई रमेश भाई ओझा।
1: भगवान ने भी अब सोचा यज्ञ की क्रिया जड़ता को दूर करके यज्ञ भाव को जागृत करना चाहिए। यज्ञ इज नॉट ओनली फायर सैक्रिफाइस, फायर सैक्रिफाइस इज नॉट एप्रोप्रिएट वर्ड फॉर यज्ञ। यज्ञ की डेफिनेशन बहुत विशाल है। शोषित और संपन्न दो वर्ग है समाज में, हैव्स एंड हैव नॉट्स। तो करना क्या है, समाज में जो संपन्न है वे सब मिले, जो एक्सेस इनकम है अपने पास सब कंट्रीब्यूट करें और अपनी संपत्ति का समाज में समभाग से सस्नेह समर्पण करें, उसका नाम है यज्ञ। फ्रॉम सोशल एंड इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, यज्ञ इज डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ वेल्थ। संपत्ति का विकेंद्रीकरण है। अब मजा यह बात की है, कैपिटलिज्म एंड सोशियलिज्म से हटकर हमारे ऋषियों ने यज्ञ जैसी विचारधारा समाज को दी है, जहां समाज का शोषित और संपन्न दो वर्ग वो एक दूसरे से अलग न होते जाएं। आज हम देखते हैं कि गरीब और श्रीमंत में बहुत संघर्ष हो रहा है। हर गरीब श्रीमंत को गालियां सुनाते दिखाई दे रहे हैं समाज में, लेकिन यदि उसको पूछा जाए तुम श्रीमंत बनना चाहते हो तो कहेंगे हां जरूर, क्यों नहीं। हर गरीब को श्रीमंत बनना है और श्रीमंत को गाली भी देनी, तो संघर्ष बढ़ रहा है श्रीमंत और शोषित में। इसलिए हमारे ऋषियों ने यज्ञ जैसा साधन दिया दोनों वर्ग में जो संघर्ष हो रहा है उसको दूर करने के लिए। तो जो संपन्न है वो सब विचार करे कि इतना बड़ा श्रीमंत बनाया, बहुत पैसे वाला धनवान बनाया भगवान ने मुझे, लक्ष्मी विष्णु की है, इसके मालिक भगवान हैं, मैं लक्ष्मी का मालिक नहीं। तो भगवान ने इतनी सारी लक्ष्मी भेजी है, इतना सारा धन दिया है, तो मैं लक्ष्मी का सदुपयोग करूं। संपन्न सोचता है मैं अपनी संपत्ति का सदुपयोग करूं, और फिर यज्ञ कार्य होता रहता है संपन्नों के द्वारा। वस्त्रहीन को वस्त्र, बीमार को दवाई, जो पैसे के अभाव में पढ़ नहीं सकते उनकी पढ़ाई के लिए पुस्तक पुस्तक वगैरह उसकी फीस भर देते हैं, स्कॉलरशिप देते हैं, स्कूल कॉलेज बनाते हैं, अस्पताल बनाते हैं, और समाज के आर्थिक और आध्यात्मिक उत्थान के सब कार्य करते हैं भगवत प्रत्यर्थ, निष्काम होकर और निराभिमान बनकर। इसलिए जो कार्य करते हैं वह यज्ञ कहलाता है। देखो यहां भागवत ज्ञान यज्ञ चल रहा है अंतिम 7 दिन से, पर आप विचार करें इतने बड़े आयोजन में भी तो पैसे लगेंगे, लेकिन समाज का जो संपन्न वर्ग है वो कंट्रीब्यूट करेगा पैसा। यहां कोई टिकट विकट तो नहीं लिया जाता कि इतना टिकट दो बाद में ही पंडाल में प्रवेश मिलेगा। यज्ञ में जो खर्च होगा समाज के जो संपन्न लोग हैं उससे लिया जाएगा, लेकिन यज्ञ का जो लाभ है सबको मिलेगा, सबको मिलेगा। किसने क्या दिया है इस बात का महत्व नहीं। तो ये तो ज्ञान यज्ञ है, इस तरह से नेत्र यज्ञ, दंत यज्ञ, क्षुधा यज्ञ, कई प्रकार के यज्ञ होते। यजनम यज्ञः, भगवान का यजन यज्ञ है। यज्ञो वै विष्णु, हमारी श्रुतियां कहती हैं ये यज्ञ विष्णु है। इसलिए भागवत ज्ञान यज्ञ भगवान का स्वरूप है। देखो ये यज्ञ शब्द बड़ा अद्भुत है। अब मजा इस बात की है कि इसमें देने वाले में अहंता नहीं है, क्योंकि मैं जो दे रहा हूं मेरा नहीं है, प्रभु का ही दिया हुआ है और प्रभु को दे रहा हूं। इसलिए आहुति देने के पश्चात ब्राह्मण बोलते हैं ओम विष्णुवे नमः स्वाहा इदम विष्णुवे न मम, ये विष्णु का ही है मेरा है ही नहीं, फिर मैं अभिमान किस बात का करूं कि मैं देने वाला। तो देने वाले में अहंता नहीं है और लेने वाले में लघुता नहीं है, क्योंकि लेने वाला यज्ञ का प्रसाद ले रहा है, यदि प्रसाद नहीं लेगा तो प्रसाद के अनादर का दोष लगेगा उसे। तो लेने वाले में लघुता नहीं, देने वाले में अहंता नहीं, यह बहुत बड़ी बात है। हाँ, तो संपन्न जो है उसमें अहंता नहीं, और जो शोषित है जो लाभ ले रहा है उसमें लघुता का भाव नहीं। नो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, नो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स एज वेल, दोनों तरफ बीमारी ही मिट गई। न देने वाले में अहंता है, न लेने वाले में लघुता। भगवान श्री कृष्ण ने क्रांति की। ऐसा ही एक यज्ञ गोकुल में होने जा रहा था, नूतन वर्ष था, कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा, नूतन वर्ष, सब दीपावली के दूसरे दिन भोर सुबह उठे, और फिर ये तो गांव की दीपावली है, देहाती लोगों की, दीप मालाएं लगाई हुई है, भोर सुबह में गाय के गोबर से लीप दिया है अपने आंगन को और रंगोलियां सजाई है, तोरण लगाए हैं, चारों ओर आनंद आनंद है। भोर सुबह में सब जागे, नहा धोकर तैयार हो गए, कन्हैया और दाऊजी भी तैयार हो गए, मां यशोदा को वंदन किया, मां ने आशीर्वाद दिया, बाबा नंद को भी वंदन किया, शांडिल्य ऋषि और ऋषिवृंद को वंदन किया। तो यज्ञ की तैयारी हो रही थी, कन्हैया ने पूछा नंद बाबा से, बाबा ये हम सब क्या कर रहे हैं, किसकी तैयारी हो रही है? नंद जी ने कहा बेटा हम यज्ञ करते हैं ना हर साल, तो इस वक्त भी यज्ञ करेंगे। कन्हैया ने पूछा किसका यज्ञ? कहा इंद्र का। पूछा क्यों? नंद बाबा ने समझाया पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्म मूर्तया। देखो बेटे, इंद्र है मेघों के राजा, यदि हम यज्ञ करेंगे इंद्र प्रसन्न हो जाएंगे, प्रसन्न होंगे बरसात बरसाएंगे, बरसात बरसेगी अन्न होगा पैदा, और जब अन्न पकेगा तो हम सब जीवित रहेंगे, गाय घास चरेगी। तो प्राणी मात्र को जीवित रखने वाले इंद्र हैं, इसलिए हम इंद्र का यज्ञ करते हैं और इंद्र को प्रसन्न रखते हैं। इंद्र को आए हुए उस अभिमान को छोड़ने के लिए, उस अभिमान को तोड़ने के लिए और यज्ञ की क्रिया जड़ता को दूर करके यज्ञ भाव को जागृत करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने पिताजी से कहा, बाबा आपकी बात मुझे ठीक नहीं लगती, आप कहते हैं इंद्र के कारण सब जीवित है। नहीं नहीं, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैव अभिपद्यते। कर्म से ही जन्म होता है, कर्म से ही मृत्यु, सुख दुख भय क्षेम सब कर्म से ही है। और आप इतने वर्ष से इंद्र का यज्ञ कर रहे हैं, कभी इंद्र को आपने देखा? यदि हम जीवित हैं तो इन गायों के कारण, गाय प्रत्यक्ष देव है, उसको तो इग्नोर कर रहे हैं आप। इन ब्राह्मणों के कारण हम जीवित हैं, ये ब्राह्मण जो है हमारी समाज की शिक्षा दीक्षा के कार्य में संलग्न है, ये गोवर्धन के कारण हम सुखी हैं, गोवर्धन वन्य संपत्ति देता है। यदि यज्ञ करना है तो गोवर्धन का करो, गायों का करो, ब्राह्मणों का करो। प्रत्यक्ष देवों का अपमान करते हो, और जिसको कभी देखा नहीं उस इंद्र का तुम यज्ञ करते हो। यज्ञ करना है तो इन प्रत्यक्ष देवों का करो। कृष्ण ने क्रांति की, और समाज भी धन्य है वह जिसने कृष्ण के इस समाज में परिवर्तन लाने वाले क्रांतिकारी दृष्टिकोण को अपनाया, उसका स्वागत किया। नहीं तो गांव के देहाती लोग थे, हाँ अनपढ़, लेकिन कृष्ण के इस परिवर्तनकारी क्रांतिकारी विचारों का स्वागत करते हुए ग्वालों ने कहा, बाबा कन्हैया ठीक कह रहा है, हमने कभी इंद्र को देखा नहीं, हम बरसों से इंद्र का ही यज्ञ करते हुए चले आ रहे हैं, अब यज्ञ करेंगे गायों का, गोवर्धन का, ब्राह्मणों का। बात मान ली कृष्ण की। पूछा कन्हैया, तुम जो कहते हो यज्ञ कैसे होगा? कन्हैया ने कहा, देखो गायों की पूजा करो और गाय को अच्छा खिलाओ पिलाओ। गायों का यज्ञ का अर्थ क्या है? गाय को चंदन करें, अक्षत लगावें, फूल माला पहनाएं और गाय के पूंछ को आंख से लगा देवें, बस गाय की पूजा हो गई? वो भूखी मर रही है, गाय काटी जा रही है, उसको रोकेंगे नहीं, गाय भूखी मर रही है उसको जिलाएंगे नहीं, तो केवल पूंछ आंख से लगा लेने से पुण्य मिल जाएगा?
2: ओ विनोद,
1: गाय का दूध पीने का तो आग्रह नहीं रखते, कहते हैं गाय के दूध की चाय अच्छी नहीं बनती, भैंस का लाओ बड़ा अच्छा होता है,
2: ठीक है,
1: मलाई भी बहुत अच्छी निकलती है उससे।
2: थैंक यू।
1: भैंस के बच्चे को क्या कहते हैं पता है ना? क्या कहते हैं? वो है भैंस का दूध पीने वाला। तो भैंस का दूध पिएंगे तो भैंस के बच्चे के सी बुद्धि होगी हमारी, तो सीधी बात है ना, जैसा अन्न वैसा मन। वो जो पाड़ा है, आप तो समझदार है, वो यम का वाहन है, तो भैंस का दूध पीकर ही पलेंगे तो बुद्धि ऐसी हो जाएगी, और जैसी बुद्धि है जैसे विचार है वैसे कर्म, और जैसा कर्म वैसा फल मिलेगा, तो यम दूत आएंगे लेने। यदि गाय का दूध पिएंगे तो गाय का दूध पीने वाला है बछड़ा, बछड़ा जो है शिव जी का वाहन है, उसका शिव होगा, कल्याण होगा, और शिव का वाहन जो है नंदी, उसको कहते हैं धर्म। गाय का दूध पीने वाले की धर्म में रुचि होती है, बड़ा सात्विक। देखो भैंस की बुद्धि भी जड़ है, गाय की बुद्धि में और भैंस की बुद्धि में बहुत अंतर है, आपने कभी अनुभव किया होगा, रास्ते से यदि कोई भैंस जा रही है रास्ते पर, बीच रास्ते में चल रही है, और मोटर कार लेकर जाओ तो हॉर्न बजाओ, कितना भी हॉर्न बजाओ भैंस रास्ता छोड़कर हटेगी नहीं, ऐसी चलती रहेगी, टक्कर लगेगी जब मोटर कार की, तब धीरे से एक तरफ हो जाए। लेकिन यदि गाय जा रही है, दूर से हॉर्न बजाओ, प्रायः यह देखा गया है कि गाय तुरंत हटकर बाजू में हो जाएगी। तो भैंस का दूध पीने से इतनी ही जड़ता बढ़ती है, मतलब भैंस को रखना छोड़ दो या ये कर दो वो कर दो, ये कहने का मतलब नहीं है। मैं जानता हूं कि आप कोई बंद करने वाले हैं नहीं, करोगे बंद ना, मुझे भरोसा है। लेकिन हकीकत यह है, गाय के दूध से बुद्धि ऐसी सात्विक बनती है, गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी, इसलिए यज्ञ में गाय का घी ही

गाय के पीछे भी यदि हम जरा ध्यान रखें, उसको अच्छा खिलावे पिलावे तो गाय भी अच्छा दूध दे सकती। तो गाय का यज्ञ करो, ब्राह्मणों का यज्ञ यानी समाज की शिक्षा दीक्षा में लगे हुए ब्राह्मण यानी शिक्षक, उसकी आजीविका ठीक से चलनी चाहिए। अब शिक्षकों का पारिश्रमिक तो इतना थोड़ा होता है कि महंगाई के जमाने में उसका पूरा नहीं होता। अब पड़ोसी के घर टीवी आया है रंगीन, तो शिक्षक की बीवी भी तो कहती है कि रंगीन टीवी ला दो, उसके बच्चे भी तो कहते हैं पापा जी हमको भी तो एक रंगीन टीवी चाहिए, वीडियो चाहिए। तो फिर क्या करेगा शिक्षक, पारिश्रमिक जो मिलता है उसमें तो पूरा नहीं होता, तो फिर ट्यूशन करने लगेगा, और फिर ट्यूशन में ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी आने लगे, इसलिए भरोसा दिलाता रहेगा मेरा ट्यूशन जो रखेगा वो अच्छे मार्क्स से पास हो जाएगा। और फिर उसको पास करने के लिए उसने पेपर में लिखा हो या न लिखा हो, फिर बड़ा भ्रष्टाचार फैलने लगता है शिक्षा क्षेत्र में भी। तो समाज की शिक्षा दीक्षा में लगे हुए ब्राह्मण यानी शिक्षक यही यदि भ्रष्टाचारी हो जाएंगे तो समाज भ्रष्ट ही हो जाएगा। इसलिए ब्राह्मणों का यानी शिक्षकों का यज्ञ करना, उसका पारिश्रमिक ऐसा होना चाहिए कि महंगाई के जमाने में भी उसका निर्वाह ठीक से चले, उसका यज्ञ करो। और गोवर्धन का यज्ञ करो माने प्रकृति की पूजा करो, प्रकृति का विनाश मानव जात का विनाश, अपना विनाश कर रहे हैं हम, प्रकृति का नहीं। गोवर्धन की पूजा करो। कन्हैया ने कहा विविध प्रकार के पकवान तैयार करो, ये ब्राह्मण सब भगवान गोवर्धन नाथ की पूजा कराएंगे, भगवान गोवर्धन नाथ को अन्नकूट का भोग लगाया जाएगा और फिर प्रसाद सबको बांटा जाए, कोई भूखा न रहे, प्रसाद बेचा न जाए, प्रसाद बांटा जाए। 11 रुपया डोनेशन में दे उसको प्रसाद मिले, और 25 पैसा जो रखे उसको केवल चरणामृत की आचमनी, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रसाद बांटा जाना चाहिए, बेचा नहीं जाना चाहिए। तो ऐसा यज्ञ करो। श्री कृष्ण के कहने पर विविध पकवान तैयार हुए और बैलगाड़ियों में उसे लेकर सब आए गोवर्धन नाथ के पास, अन्नकूट का भोग लगाया, गायों की पूजा की, गायों का यज्ञ किया, ब्राह्मणों ने भगवान गोवर्धन नाथ की पूजा करवाई, भोग लगाया, ब्राह्मणों को भी अच्छी दक्षिणा दी, वे भी तुष्ट मनसह हुए और भगवान गोवर्धन नाथ को भोग लगाकर सबने भगवान गोवर्धन नाथ को जिमाया, भोजन कराया। आइए हम भी अब भगवान गोवर्धन नाथ की पूजा करेंगे, और भोग तो लगा ही हुआ है, अब विधि पूर्वक भोग लगाएंगे और आरती उतारेंगे। आप शांति से अपने स्थान पर बैठे रहिएगा तो भगवान गोवर्धन नाथ के दर्शन आपको अपनी जगह से ही हो जाएंगे।

भगवान श्री कृष्ण ने नए प्रकार का यज्ञ शुरू करवाया। समाज की दीक्षा शिक्षा में लगे हुए ब्राह्मणों की आजीविका अच्छी तरह चले, इसलिए ब्राह्मणों का यज्ञ करवाया। यदि समाज की शिक्षा दीक्षा में लगे गुरुजन ब्राह्मण ही पैसे के अभाव में अपने ज्ञान को बेचने लगेंगे तो समाज नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा, इसलिए ब्राह्मणों का यज्ञ करवाया। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बुराई घुस जाएगी, ये नहीं होना चाहिए। केवल अन्न जल से ही पुष्ट नहीं होता मानव,

संस्कार भी चाहिए और आचार्य यह तृतीय संस्कार पीठ है। चार संस्कार पीठ कही गई है हमारे यहां। पहली संस्कार पीठ है मां की कुख। मां के उदर से ही बालक को संस्कार प्राप्त होते हैं, तो पहला संस्कार मिलता है माता से, और जन्म के बाद ही नहीं, मां के उदर में है तब से ही संस्कार मिलता है। मां के विचार की बहुत गहरी असर होती है उदरस्थ शिशु पर। दूसरी संस्कार पीठ है पिता का कुल। पिता के कुल से संस्कार आते हैं, इसलिए घर का वातावरण ऐसा होना चाहिए बच्चों में सद संस्कार आ जाएं। मां की कुख, पिता का कुल। तृतीय संस्कार पीठ है गुरुकुल। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, ये तृतीय संस्कार पीठ है। मां के विचार और पिता के चारित्र का प्रतिबिंब है पुत्र। यदि तृतीय संस्कार पीठ अपनी गरिमा खो देगी तो समाज नष्ट भ्रष्ट होता चलेगा, और चतुर्थ संस्कार पीठ है व्यास पीठ, जहां सत्संग हो रहा है, भगवान की मंगलमयी कथा हो रही है। तो समाज की शिक्षा दीक्षा में रत ब्राह्मणों का यज्ञ करवाया, गायों का यज्ञ करवाया, गोवर्धन का यज्ञ करवाया, गो माने ज्ञान, गो माने भक्ति, उसका वर्धन करने वाली यह लीला है गोवर्धन लीला। दूसरे अर्थ में गो का अर्थ होता है इंद्रिय, उसको वर्धन, उसकी वृद्धि का जो प्रदेश है उसका नाम है देह। देह गोवर्धन को भगवान ही 7 दिन तक धारण करते हैं। सप्ताह के 7ों दिन देह गोवर्धन भगवान के द्वारा ही धारण होता है। इस शरीर को हम धारण करते हैं अपने पुरुषार्थ से नहीं, भगवान की ही कृपा से। यज्ञ के द्वारा समाज का अधिदैविक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक उत्थान होता है। यज्ञो वै विष्णु, ऐसी श्रुति है, यज्ञ विष्णु, यजनम यज्ञ है, उसका यजन यही यज्ञ है। विष्णु और विश्व दोनों अभिन्न हैं। विश्व को विष्णु से अलग करके देखेंगे तो विकार आएगा। हमारे संस्कार तो ऐसे हैं, विश्व में ही विष्णु को देखें। विष्णु सहस्र नाम में इसलिए भगवान का सबसे पहला नाम आया है।

0: ब्रह्म विष्णु विश्व और विष्णु को अभिन्न न समझो, उसे भिन्न न समझो, दोनों अभिन्न। जगदीश ही जगत के रूप में दृश्यमान हो रहे, जड़ चेतन के रूप में वही दृश्यमान हो रहे हैं। सर्वम खलु इदं ब्रह्म, ऐसा हमारे वेद का महावाक्य है। नेह नानास्ति किंचन, यहां ब्रह्म को छोड़कर और कुछ है ही नहीं। तो विश्व का अर्थ है विष्णु, विष्णु का अर्थ है विश्व। उसका यजन, उसका नाम यज्ञ। तो जो वस्त्रहीन है उसे वस्त्र दिया जाए, भूखे हैं उनको भोजन दिया जाए, पैसे के अभाव में पढ़ नहीं पा रहे उनकी शिक्षा के लिए कुछ कार्य किया जाए, बीमार है उसकी चिकित्सा के लिए प्रयत्न किया जाए, ऐसे सब कार्यों को भी यज्ञ कहते हैं। समाज की सेवा के कार्य में अपने धन को लगाना, निष्काम बनकर, निराभिमान होकर ऐसे भगवत कार्य करना, यह भी यज्ञ है। इसलिए नेत्र यज्ञ होता है, दंत यज्ञ होता है, क्षुधा यज्ञ होता है। यज्ञ केवल हवन ही नहीं है, हवन अलग बात है। यज्ञ शब्द की व्याख्या, परिभाषा बहुत विशाल है। ऐसे यज्ञ के द्वारा समाज का श्रमजीवी, व्यापार जीवी और बुद्धिजीवी तीनों वर्ग का पोषण होता है। यज्ञ संपत्ति का विकेंद्रीकरण है। सामाजिक दृष्टि से यदि देखा जाए तो शोषित और श्रीमंत के बीच में जो अंतर पड़ गया है उसे मिटाने के लिए ऋषियों ने यज्ञ जैसा साधन दिया है। कैपिटलिज्म और सोशियलिज्म से हटकर यज्ञालिज्म की एक नई विचारधारा हमारे शास्त्रों ने दी है, लेकिन हम कब उसके सामने देखने के लिए तैयार हैं? संपन्न अपनी संपत्ति का सदुपयोग करते हुए शोषित लोगों के लिए काम करें। मजा यह है कि जो दे रहा है वो ये समझ कर दे रहा है कि भगवान का है और भगवान को दे रहा हूं। इदम विष्णवे न मम। तो देने वाले में अहंता नहीं है और लेने वाला ये समझ कर ले रहा है कि मैं यज्ञ का प्रसाद ले रहा हूं, यदि नहीं लूंगा तो प्रसाद के अनादर का दोष हो जाएगा, इसलिए लेने वाले में लघुता नहीं। ये बहुत बड़ी बात बताई है कि देने वाले में अहंता न हो और लेने वाले में लघुता न हो। लेकिन ऐसे यज्ञ के द्वारा इंद्र जैसे समाज में जो लोग हैं, जिसको नुकसान पहुंच रहा है, वे तो विरोध करेंगे ही। राजा इंद्र क्रोधित हो गए, सामर्थक नाम के मेघ गणों को बुलाया, कहा कि जाओ बरसो गोकुल पर। कृष्णम मर्त्यम उपाश्रित्य गोपा में चक्रु अप्रियम। मृत्युलोक के एक बालक श्री कृष्ण का कहा मानकर इन ग्वालों ने हमारा अपमान किया। वाचालम, बहुत बोलने वाला है ये है छोटा सा कृष्ण, बालिशम चाइल्डिश है, स्तब्ध है, अज्ञ है, पंडित मानिनम अपने आप को पंडित मान रहा, समझ रहा, ऐसे कृष्ण को कहा मानकर ग्वालों ने हमारा अपमान किया है। अब देखता हूं कृष्ण उसकी किस तरह से रक्षा करता है। जाओ बरसो गोकुल पर। कृष्ण जैसे क्रांतिकारी विचार का जब समाज स्वीकार करेगा तब जहां भी क्रांति होती है उसका विरोध समाज के कहीं ना कहीं कोने से उठेगा ही। और इंद्र जैसे लोग ऐसे क्रांतिकारी श्री कृष्ण का भी अपमान करते हुए ऐसे वाक्य कहेंगे। अब ये तो गालियां सुनाना हुआ, ये तो भगवान का अपमान हुआ। वाचालम बालिशम स्तब्धम अज्ञम पंडित मानिनम मर्त्यम कृष्णम उपाश्रित्य गोपाह मैं अप्रियम चक्र हो। तो गालियां सुनाने वाले भी मिलेंगे। क्रांति की मशाल हाथ में लेकर चलने वाले को सब तैयारी रखनी चाहिए, लेकिन जहां समाज जागृत हो जाएगा कृष्ण जैसे क्रांतिकारी विचारकों के द्वारा, वहां इंद्र जैसे जो विरोध करने वाले हैं क्रांति का, उसकी एक न चलेगी। आए सांवर्तक मेघगण, यहां सब प्रसाद ले रहे थे, प्रसाद सबको बांटा गया, बेचा न जाए बांटा जाए। कुत्ते से लेकर चांडाल पर्यंत सबको, पतित को भी, पतित है इसलिए प्रसाद का अधिकारी नहीं, उसको तो खास मिलना चाहिए। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो याशो बुद्धि पर्यवतिष्ठते। भगवान का कृपा प्रसाद पाते ही उसकी मति शुद्ध हो जाएगी।
1: ये था हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम श्रीमद् भागवत कथा, प्रस्तुत करता संत श्री भाई रमेश भाई ओझा। हमारे इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं 1386 AM पर। और अब प्रस्तुत है हमारा अगला कार्यक्रम आधे घंटे के लिए प्रभाती संगीत। प्रभाती संगीत का श्री गणेश करने जा रहे हैं सूर्य नमस्कार के साथ।

0: सारे जगत के प्राण आधार सूर्य नारायण के चरण वंदना थी ये।
1: आपको पता है 322 ग्रेट साउथ रोड पापाटोयटो में स्थित है विलेज फूड मार्ट, जहाँ मिलती है भोजन सामग्री की हर जरूरत के सामान। फ्रोजन फूड्स में तो स्पेशलाइज करते ही हैं, साथ ही रखते हैं इंडियन स्पाइसेस एंड ग्रोसरीज, हंडी बर्तन आदि सभी किचन वेयर, पंडित सीधा पैक, क्रिया कर्म तथा टोटल पूजा आइटम्स भी।
0: दुकान खुलती है सातों दिन,
1: तो मिलनसार सेवा, सस्ता दाम और उम्दा माल के लिए आइए 322 ग्रेट साउथ रोड पापाटोयटो में स्थित विलेज फूड मार्ट में।
0: प्रभाती संगीत के अंतर्गत अब की बार श्रुति नए गांधी की आवाज में हम सुनने जा रहे हैं एक सावन गीत। तबले पर संगत कर रहे हैं।

0: मीरा भजन सुना रही थी श्रुति नय गांधी और इनके भजन पर संगीत था श्रुति नय गांधी का ही। तबला वादक अमित चौबे, सितार वादक गणेश मोहन और फ्लूट वादक मिलिंद शौर्य।
1: भोजन सामग्री तथा घर गृहस्थी के सामानों के लिए इधर उधर भटकने भागने से तो अच्छा है सीधे ही 322 ग्रेट साउथ रोड पपटवेटवे के विलेज फूड मार्ट में चले आएं। क्या नहीं है यहाँ, प्रेशर कुकर विद 5 ईयर वारंटी, शादी भंडारा के लिए लोहे तथा एल्युमिनियम हंडियां, इडली हंडियां, हवन कुंड, फिजी तावा, अलग साइजेस में मूर्तियां, शिवलिंग, जलधारा, नाग देवता और बर्तन आदि सभी कुछ तो मिलते हैं यहाँ। दुकान खुलती है सातों दिन, तो मिलनसार सेवा, सस्ता दाम और उम्दा माल के लिए आइए 322 ग्रेट साउथ रोड पपटवेटवे में स्थित विलेज फूड मार्ट में।
0: सावन गीत के बाद अब हम चलते हैं भरत गौड़ की एक रचना सुनते हैं। ये है माँ जगदम्बा स्तुति सुनाने वाले अभिजीत और उनके साथी, संगीत है अजय स्वामी का।

0: यह था शेरावाली माँ जगदम्बा महिमा गान सुनाने वाले अभिजीत अपने साथियों के साथ। संगीत से इसे सजाया था अजय स्वामी ने।
1: आपको पता है 322 ग्रेट साउथ रोड पापाटोएटोए में स्थित है विलेज फूड मार्ट, जहां मिलती हैं भोजन सामग्री की हर जरूरत के सामान। फ्रोजन फूड्स में तो स्पेशलाइज करते ही हैं, साथ ही रखते हैं इंडियन स्पाइसेस एंड ग्रोसरीज, हंडी बर्तन आदि सभी किचन वेयर, पंडित सीधा पैक क्रिया कर्म तथा टोटल पूजा आइटम्स भी। दुकान खुलती है सातों दिन, तो मिलनसार सेवा, सस्ता दाम और उम्दा माल के लिए आइए 322 ग्रेट साउथ रोड पापाटोएटोए में स्थित विलेज फूड मार्ट में।
0: 1386 AM पर आप सुन रहे हैं अपना साप्ताहिक कार्यक्रम प्रभु मिलन, और प्रभु मिलन में ये है प्रभाती संगीत का कार्यक्रम। पहले हम सब मिलकर शुद्धांशु जी महाराज और उनके साथियों के साथ चलते हैं दाता के दरबार में। हम

0: जगतपति प्रभु का गुणगान सुना रहे थे आज के हमारे चौथे कलाकार सुधांशु जी महाराज अपने साथियों के साथ।
1: भोजन सामग्री तथा घर गृहस्थी के सामानों के लिए इधर उधर भटकने भागने से तो अच्छा है सीधे ही 322 ग्रेट साउथ रोड पपटवेटवे के विलेज फूड मार्ट में चले आए। क्या नहीं है यहाँ, प्रेशर कुकर विद 5 ईयर वारंटी, शादी भंडारा के लिए लोहे तथा एल्युमिनियम हंडिया, इडली हंडिया, हवन कुंड, फिजी तावा, अलग साइजेस में मूर्तियाँ, शिवलिंग, जलधारा, नाग देवता और बर्तन आदि सभी कुछ तो मिलते हैं यहाँ। दुकान खुलती है सातों दिन, तो मिलनसार सेवा, सस्ता दाम और उम्दा माल के लिए आइए 322 ग्रेट साउथ रोड पपटवेटवे में स्थित विलेज फूड मार्ट में।
0: 1386 AM पर आप सुन रहे हैं प्रभाती संगीत का कार्यक्रम और प्रभाती संगीत को हम समाप्त करने जा रहे हैं फिल्म एक फूल दो माली के एक गीत के साथ। रवि के संगीत और गायक कलाकार भी रवि।

0: किस्मत के आगे मानो की बेबसी सुना रहे थे आज के हमारे अंतिम कलाकार रवि के संगीत पर रवि ही।
1: आपको पता है 322 ग्रेट साउथ रोड पापाटोई में स्थित है विलेज फूड मार्ट, जहां मिलती हैं भोजन सामग्री की हर जरूरत के सामान। फ्रोजन कुट्स में तो स्पेशलाइज करते ही हैं, साथ ही रखते हैं इंडियन स्पाइसेस एंड ग्रोसरीज, हंडी बर्तन आदि सभी किचन वेयर, पंडित सीधा पैक क्रिया कर्म तथा टोटल पूजा आइटम्स भी।
0: दुकान खुलती है सातों दिन,
1: तो मिलनसार सेवा, सस्ता दाम और उम्दा माल के लिए आइए 322 ग्रेट साउथ रोड 22 में स्थित विलेज फूड मार्ट में।

0: Radio. Radio Tehrana. 1386 AM पर आप सुन रहे हैं अपना साप्ताहिक कार्यक्रम तीन घंटे का प्रभु मिलन, और अब 7 बज गए। प्रस्तुत है हमारा अगला कार्यक्रम एल्थमन संगीता लिमिटेड के सौजन्य से लोकगीत।
1: बगैर उलझन के शानदार प्रॉपर्टी के शानदार मालिक बनना है तो मिलिए 48 रैंसम स्माइल ड्राइव मेनिकाओ के बिल्डिंग स्पेशलिस्ट एल्टमन संगीता लिमिटेड से। प्रॉपर्टी खरीद बीन के क्षेत्र में ये 20 वर्षों का अनुभव रखते हैं। प्री परचेस बिल्डिंग रिपोर्ट्स, सेफ एंड सैनिटरी रिपोर्ट्स फॉर बिल्डिंग परमिट्स, क्लोजर एंड अनऑथोराइज्ड बिल्डिंग वर्क्स, फायर डिजाइन रिपोर्ट्स, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग तथा आर्किटेक्चरल सर्विसेज से संबंधित प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए मिलिए लक्ष्मण या संगीता से। टेलीफोन नंबर 2637180 या 02762834475।
0: हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम लोकगीत में सभी सुनने वालों का स्वागत है। आज हमने सभी गीतों को आधारित किया है बारात आगमन पर। पहला गीत एक शिकायत, और शिकायत प्रस्तुत करने वाली है निर्मला कुमार।
2: अरे कहाँ

दुल्हे राजा को उलाहना सुनाने वाली ये थी आज की हमारी प्रथम कलाकार निर्मला कुमार। और निर्मला कुमार के बाद अब हमारी दूसरी कलाकार ये हैं मैंगनिया नादी की दयावती।

बारात आगमन पर दुल्हन के प्रति ये थी कुछ ज्ञान की बातें मैंगनिया नांदी की दयावती की। और अब ये हैं आज के हमारे अंतिम कलाकार वैनकूवर कनाडा के तुलसीराम बाबा तुलसीदास जी की रचना के साथ।

0: सज के आयल है बरतिया जनक अंगना सुना रहे थे आज के हमारे अंतिम कलाकार वैंकूवर कनाडा के तुलसीराम।
1: बगैर उलझन के शानदार प्रॉपर्टी के शानदार मालिक बनना है तो मिलिए 48 रैंसम स्माइल ड्राइव मैनिकाओ के बिल्डिंग स्पेशलिस्ट एल्टमन संगीता लिमिटेड से। प्रॉपर्टी खरीदबीन के क्षेत्र में ये 20 वर्षों का अनुभव रखते हैं। प्री परचेज बिल्डिंग रिपोर्ट, सेफ एंड सैनिटरी रिपोर्ट फॉर बिल्डिंग परमिट, क्लोजर एंड अनऑथोराइज बिल्डिंग वर्क, फायर डिजाइन रिपोर्ट, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग तथा आर्किटेक्चरल सर्विसेज से संबंधित प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए मिलिए लक्ष्मण या संगीता से। टेलीफोन नंबर 263-7180 या 027-628-3475।
0: एल्टमन संगीता लिमिटेड की ओर से ये था हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम लोक गीत।
2: ड्राइविंग लाइसेंस के लिए बेखट के जाइए माइटो असेसर एंड NZTI अप्रूव्ड कोर्स प्रोवाइडर वेस्ट ऑकलैंड ड्राइविंग स्कूल के पास। इनकी खूबियां ओवरसीज कन्वर्जन ट्रेनिंग एंड लाइसेंस क्लासेस 2 and 4, एंडोर्समेंट, व्हीकल रिकवरी, डेंजरस गुड्स एंड फॉर्कलिफ्ट ट्रक ड्राइवर ट्रेनिंग एंड टेस्ट प्रिपरेशन क्लास 1 एंड एडवांस ड्राइविंग कोर्स एंड असेसमेंट। अभी ही फोन करें 832-2640 या 021-1011-209 पर और बातें करें धर्म सिंह से जो आप

0: चले आए क्या नहीं है यहाँ प्रेशर कुकर विद 5 ईयर वारंटी शादी भंडारा के लिए लोहे तथा एल्युमिनियम हंडिया इडली हंडिया हवन कुंड फिजी तावा अलग साइजेस में मूर्तियाँ शिवलिंग जलधारा नाग देवता और बर्तन आदि सभी कुछ तो मिलते हैं यहाँ। दुकान खुलती है 7वें दिन तो मिलनसार सेवा सस्ता दाम और उम्दा माल के लिए आइए 322 ग्रेट साउथ रोड पपटवेटवे में स्थित विलेज फूड मार्ट में।
1: और प्रस्तुत है हमारा अगला कार्यक्रम 15 मिनट के लिए आर्य समाज प्रतिनिधि सभा न्यूजीलैंड की ओर से अमृत वाणी। आज के कार्यक्रम को प्रस्तुत करने जा रहे हैं पंडित विदेश्वर तुलाराम जी।

आकाशवाणी के प्रिय श्रोताओं, आप सभी को मेरा नमस्ते। मनुष्य योनि सर्वश्रेष्ठ योनि कहती है, क्योंकि मात्र यही एक ऐसी योनि है जिसमें जीवात्मा को कर्म करने की पूर्ण रूपेण स्वतंत्रता प्राप्त है। वह चाहे तो अपने जीवन में सत्कर्मों से सुख प्राप्त कर सकता है, योग साधना से आनंद का अनुभव कर सकता है और निष्काम कर्मों से मोक्ष अर्थात जन्म मरण के बंधन से भी मुक्ति प्राप्त कर सकता है। दूसरे अर्थों में ऐसा ना करने पर मनुष्य दुख रूपी भवसागर में गोते खाता रहता है। परमात्मा की असीम अनुकंपा से हमें मनुष्य योनि इस कारण प्राप्त हुई है कि हम हर संभव शुभ से शुभ कर्म करें, अपने जीवन में सुख पाएं, निष्काम कर्म करके सबको सुख पहुंचाएं और मृत्युपरांत इस भौतिक शरीर को छोड़कर परांत काल तक परमात्मा की गोद में परम आनंद को प्राप्त करें। यही मनुष्य योनि का परम लक्ष्य है। वेद के तीन विषय हैं, ज्ञान, कर्म और उपासना। ज्ञान पूर्वक कर्म करना और निराकार परमात्मा की उपासना करना। वेदों में परम पिता परमात्मा को आनंद स्वरूप कहा है, क्योंकि परमात्मा आनंद का स्रोत है और जो उसके शरण में रहता है वह भी आनंदमय हो जाता है। परमात्मा को यज्ञ स्वरूप भी कहते हैं, क्योंकि उसके समस्त कार्य यज्ञमय परोपकारार्थ होते हैं, अर्थात सब जीवों के हितार्थ होते हैं। प्राचीन काल से यज्ञ भारतीय संस्कृति और सभ्यता का एक अभिन्न अंग चिन्हा रहा है। इसीलिए भारतीय संस्कृति में हर शुभ कार्य करने से पूर्व यज्ञ कर्म करने का विधान है। प्रत्येक परोपकारी कार्य को यज्ञ कहते हैं। यज्ञ शब्द के तीन अर्थ होते हैं, देव पूजा, संगतिकरण और दान। देव पूजा अर्थात जड़ और चेतन देवों की पूजा, पृथ्वी, जल, वायु आदि की शुद्धि करना तथा प्रदूषण रहित करके उनका सदुपयोग करना और चेतन मूर्तिमान देवों का आदर सत्कार करना, यथाशक्ति तन मन धन से सेवा करना और उनकी उचित आज्ञाओं का पालन करना, यही देव पूजा है। संगतिकरण अर्थात अच्छे लोगों, धार्मिक तथा विद्वानों का संग, मित्रता बनाए रखना, संत महात्माओं के प्रवचनों को ध्यान पूर्वक सुनना, विचारना और जो वेद अनुकूल हो उसे अपने जीवन में उतारने का यथा संभव प्रयास करते रहना। दान अर्थात श्रद्धा, प्रेम और त्याग भाव से उपयोगी वस्तु, अन्न, धन, वस्त्र आदि को सुपात्रों की सेवा में समर्पित करना। यज्ञ, अग्निहोत्र, हवन एक प्रकार का कर्म कांड है, सर्वश्रेष्ठ गुणों का प्रतीक है, जिससे यज्ञकर्ता अनेक बातें सीख सकता है। अग्नि प्रकाश का प्रतीक है, अग्नि से प्रकाश मिलता है तथा उसकी ज्वालाएं ऊपर की ओर जाती है, अतः हमें सिखाती है कि मनुष्य को अपने जीवन में सदा प्रकाश अर्थात ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए, जिससे वह सदैव ऊपर अर्थात प्रगति के मार्ग पर अग्रसर रहे। घी स्नेह और मित्रता का प्रतीक है, सामग्री संगठन का प्रतीक है और समिधा समर्पण का प्रतीक है। स्वाहा यज्ञ का आत्मा है, इदनमम यज्ञ के प्राण है। कोई भी कर्म छोटा या बड़ा नहीं होता, यदि आप निष्काम कर्म की भावना से करते हैं वह सब यज्ञ कर्म कहता है। अगर आप

प्यासे प्राणी मनुष्य पशु पक्षी इत्यादि को जल पिलाते हैं, भूखे व्यक्ति या पशु को भोजन खिलाते हैं, किसी दुखी व्यक्ति के दुख को कम करने का प्रयास करते हैं, किसी जरूरतमंद गरीब रोगी को औषधि दिलाते हैं, अनाथ बच्चों को पढ़ाते हैं या उनकी पढ़ाई के लिए प्रबंध करते हैं इत्यादि अनेक कार्य है, ये सभी यज्ञ कर्म कहते हैं। यदि आपकी नेक कमाई का दान सुपात्र को जाता है, जैसे अस्पतालों में रोगियों के इलाज के लिए, अनाथालयों में, वृद्धाश्रमों में, वैदिक गुरुकुलों में और भी अनेक संस्थाओं में जाता है, तो ये सब यज्ञ कर्म है। इससे आपके धन का सदुपयोग होता है। यही निष्काम कर्म है, यही यज्ञ कर्म है। यज्ञ करने से ईश्वर के प्रति श्रद्धा और प्रेम उजागर होता है, मन में शांति और एकाग्रता आती है, आपसी मित्रता बढ़ती है, प्रदूषण की निवृत्ति होती है, वायुमंडल शुद्ध पवित्र होता है, अनेक प्रकार के मानसिक और शारीरिक रोगों का निवारण होता है, जिससे व्यक्ति की आयु बढ़ती है। यजमान धन ईश्वरीय का स्वामी बनता है, अर्थात यज्ञ करने वाले की संपूर्ण मनोवांछित कामनाएं पूर्ण होती है, वह इहलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है तथा अपने परलोक को भी सुधारता है। इसीलिए वेद में यज्ञ कर्म को श्रेष्ठतम कर्म की उपाधि प्रदान की गई है, क्योंकि यज्ञ कर्म से सब जीवों का उपकार व उद्वार होता है। यज्ञ केवल सामग्री या घी की आहुतियां को स्वाहा कहकर यज्ञ कुंड में डालने का नाम नहीं है, अपितु यज्ञ के अनेक अर्थ है। देव पूजा, संगतीकरण और दान के अतिरिक्त मनुष्य जितने भी शुभ कर्म मन वचन और शरीर से अपने लिए करता है, अपने परिवार और समाज के लिए करता है, तो वे सभी यज्ञ कर्म है। इनके अतिरिक्त यदि मनुष्य अपने परिवार, समाज, देश और विश्व के हितार्थ जो भी कार्य अपना कर्तव्य समझकर करता है, तो उसके वही कार्य यज्ञ की श्रेणी में आते हैं। सही अर्थों में जिस कार्य में व्यक्ति की त्याग, समर्पण और निष्काम कर्म की पवित्र भावना छिपी होती है, ऐसे सभी कार्य यज्ञ कर्म की कोटि में आते हैं। ओम शांति शांति शांति, नमस्ते।

0: सूचित किया जाता है कि आर्य समाज वेस्ट ऑकलैंड का अगला सत्संग रविवार 10 मई की शाम 5 बजे होगा लिनडेल एथलेटिक हॉल 36 पोर्टेज रोड न्यूलैंड में। यजमान वासवानंद परिवार कार्यक्रम में शामिल होंगे। हवन यज्ञ और फिर आर्य समाज वेस्ट ऑकलैंड की एनुअल जनरल मीटिंग संपन्न की जाएगी। भोजन की व्यवस्था भी रहेगी। सभी मेंबरों को भाग लेना चाहिए। और जानकारी के लिए फोन करें पंडित धीरेन्द्र नाथ को 02769400006 पर। आर्य समाज वेलिंगटन का अगला सत्संग होगा 24 मई की सुबह 10:30 बजे फिजी इंडियन एसोसिएशन हॉल पेटोनी वेलिंगटन में। कार्यक्रम में शामिल होंगे हवन यज्ञ और फिर आर्य समाज वेलिंगटन की एनुअल जनरल मीटिंग संपन्न की जाएगी। लंच की व्यवस्था भी रहेगी। सभी मेंबरों को भाग लेना चाहिए। और जानकारी के लिए फोन करें सेक्रेटरी प्रशील सिंह को 02770705 पर। आर्य समाज मेनिकाओ के सत्संग के बारे में पता लगाना है तो फोन करें सेक्रेटरी रागिनी नारायण को 02144198 पर। क्राइस्टचर्च में संपर्क करें जानकी कंडूला से 02231199 पर। और कैंटरबरी में संपर्क करें प्रेसिडेंट जयप्रकाश नारायण से 02216404028 पर।
1: Discount Flooring are back with amazing deals. Commercial carpet for rental and offices from only $40 meter. Solution dyed nylon carpets from $99 meter. Domestic vinyl from a crazy $39 meter. Huge special on end of line products and offcuts on carpet and vinyl. Garage carpets from as low as $69 meter. Carpet overlocking is also available. Discount Floorings 4x11 Norman Spencer Drive, Manukau. Phone 2784847.
2: आपको पता है 322 ग्रेट साउथ रोड पापाटोएटो में स्थित है विलेज फूड मार्ट, जहां मिलती हैं भोजन सामग्री की हर जरूरत के सामान। फ्रोजन कुट्स में तो स्पेशलाइज करते ही हैं, साथ ही रखते हैं इंडियन स्पाइसेस एंड ग्रोसरीज, हंडी बर्तन आदि सभी किचन वेयर, पंडित सीधा पैक, क्रिया कर्म तथा टोटल पूजा आइटम्स भी। दुकान खुलती है सातों दिन, तो मिलनसार सेवा, सस्ता दाम और उम्दा माल के लिए आइए 322 ग्रेट साउथ रोड पापाटोएटो में स्थित विलेज फूड मार्ट में।
0: आप सुन रहे हैं अपना साप्ताहिक कार्यक्रम 1486 AM पर प्रभु मिलन। और अब प्रस्तुत है हमारा अगला कार्यक्रम 15 मिनट के लिए टायर होल्डन ऑटो लिमिटेड के सौजन्य से गीता संदेश। प्रस्तुतकर्ता स्वामी तेजू मयानंद जी महाराज।
3: सब बर्बाद। रोड ट्रिप
4: टायर वर्ल्ड एंड ऑटो लिमिटेड फॉर नो ऑन रोड टेंशन। टायर वर्ल्ड स्पेशलाइजिंग इन मैकेनिकल टायर्स, व्हील अलाइनमेंट, व्हील सर्विसिंग, वाटर फिटनेस, इवन मैग व्हील्स, एंड नॉट फॉरगेटिंग 9 केजी एलपीजी गैस फॉर ओनली $25।
3: चल पड़ा, चल पड़ा।
4: टायर वर्ल्ड एंड ऑटो लिमिटेड ट्रक्स, नेलिंग टायर्स एंड ऑटो रिपेयर्स। 153 ईस्ट तमेकी रोड, ईस्ट तमेकी। फोन 274-3220।
5: एक बार की आपको बात बताते हैं कि एक मूर्तिकार था। वो मूर्तिकार था, इतनी अच्छी मूर्ति बनाता था कि कोई पत्थर की भी मूर्ति बना दे तो आपको ये नहीं पता लगेगा कि असली आदमी है कि ये मूर्ति है। इतनी बढ़िया मूर्ति बनाता। उसको इतना अपना अभिमान था, अहंकार था कि क्या है? एक बार एक ज्योतिषी ने उसको कहा कि भाई तुम्हारी पत्रिका से ये पता लगता है कि 11 सितंबर को सुबह 11 बजे तुम्हारा मरण होने वाला है, और उस मरण को यदि तुम किसी प्रकार से चुका सको, माने चुका सकने का मतलब यह है कि किसी प्रकार से उससे बच सको तो फिर तो तुम अमर हो जाओगे। क्योंकि यमराज के यहां नियम ऐसा है कि इस टाइम निश्चित है, ये टाइम पे यदि आदमी को नहीं ले सके वो तो फिर बाद में नहीं हाथ लगा सकते। वो तो उसने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात बता दी। मैंने कहा मैं यमराज को भी धोखा दूंगा। तो उसने अपनी जैसी मूर्ति बनानी शुरू कर दी और 10-11 मूर्तियां बिल्कुल एक पता ही नहीं चले कि इसमें असली मूर्ति कौन सी है और असली आदमी कौन सा है। यदि वो बैठ जाए, वो मूर्ति भी साथ साथ में हो तो पता ही नहीं चलेगा। अब क्या हुआ, यमदूत आए उस दिन, आए 10:30 बजे, आना शुरू कर दिया उन्होंने घूमना फिरना। वो देखते क्या है, पता ही नहीं चले कि इसमें से असली आदमी कौन सा है। और चाहे जिसको टच करेंगे तो फिर वह हो गया, वो टच करके भी देख नहीं सकते क्योंकि एक ही बार स्पर्श करना, और वो असली को स्पर्श नहीं किया तो वो गए काम से, फिर नहीं कर सकते कोई। अब बात ये हुई कि उसको चकरा गए तो 10:45 बज गए, पता ही नहीं चल रहा था कि इसमें असली आदमी कौन सा है। तो यमराज जी को उन्होंने एक लाइटनिंग कॉल किया, भेजा, यमराज जी धर्मराज जी पता ही नहीं चल रहा है। तो धर्मराज कहते अच्छा अच्छा मैं आता हूँ। खुद आए वो, यमराज आए, देखा सारे मूर्तियों को देख रहे हैं, कहते हैं ये आदमी जो भी कोई है वो कमाल का है, इसके जैसा तो कोई आदमी मैंने आज तक देखा ही नहीं, इसकी मूर्ति कला की जो कुशलता है ये तो ब्रह्मा जी को भी लजा देने वाली है ना। तो वो आदमी सुन रहा था सब, मैं देखो ये सारे मूर्तियों में पता ही नहीं चलता है कि असली आदमी कौन है और मूर्ति कौन सी है, लेकिन है तो वो इन्हीं में कहीं पे, पता कैसे चले हैं। और इसे 10:59 हो गए थे, 11 बजने में 1 मिनट बाकी बचा था। यमराज जी बोलते जा रहे हैं और फिर कहते हैं इसमें सब कुछ इतना परफेक्ट है कि क्या बताएं, बस एक गलती, और वो एक गलती जो बोला ना तो उस आदमी से रहा ही नहीं गया, कि उसको ऐसा था कि मेरी इसमें गलती कैसे रहे, तो कौन सी गलती, बोले यही गलती, बस उसको हाथ लगा दिया। मैं एक मिनट थोड़ा और चुपचाप बैठ जाता तो ठीक है, ये अहंकार जो था बस उस अहंकार ने उसको ऐसा पकड़ा वहां पे। अरे आया अहंकार, किस चीज का अहंकार करते हो, कौन सी चीज तुम्हारे पास में ऐसी है, कोई है जिसको कि हम ऐसा कह सकते कि ये चीज मेरी बनाई हुई है, किसी के भी सहायता लिए बिना और केवल मेरी ही चीज बनाई हुई थी, कोई है यहां पे, तो किस चीज का अभिमान करके बैठे हुए हम, ये झूठा ही अहंकार है। और फिर भगवान कहते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, जन्म दुख है, मृत्यु दुख है, जरा माने वृद्धावस्था दुख है, व्याधि तो दुख है ही, बीमारी दुख है, ये सब दुख है, इसमें निरंतर दुख दोष दर्शन करना। देखो बात यह है कि इसमें यदि दुख का दर्शन होगा तभी हम इसमें से छूटने का प्रयत्न करेंगे, ये बहुत बड़ी बढ़िया चीज है, इसे मार के बैठे रहेंगे तो उसमें से निकलने का कभी प्रयत्न नहीं करेंगे। यदि मैं स्लम में बैठा हूं गंदी बस्ती में और मुझे लगता ही नहीं कि मैं कोई गंदी जगह बैठा हूं, कितना अच्छा है, ये तो स्वर्ग का नंदन वन लग रहा है, ऐसा किसी को लगे तो फिर क्या करोगे। लेकिन जिस आदमी को लगता है कि कहां गंदी चीज में वहां पर मैं पड़ा हुआ है, निकलो तब निकलेगा वो। अब देखो एक बहुत बढ़िया बात यहां पर देखो, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, इसमें भगवान ने युवावस्था का नाम नहीं लिया हुआ है, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था का तो लिया हुआ है, युवावस्था का नहीं लिया, क्योंकि युवावस्था किसी को दुख वाली लगती नहीं, सबको लगता है हाँ जवानी है ना, क्या उस समय तो लगता है कि आकाश से तारे भी तोड़ के लेके आ जाएंगे वहां पर, तो युवावस्था का दुख जल्दी से किसी को समझ में ही नहीं आता है, लेकिन सारे दुख की जड़ जो बीज है वो युवावस्था में बोते रहते हैं। लेकिन देखो देखो कितनी बढ़िया बात है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, युवावस्था का नाम नहीं लिया क्योंकि युवावस्था दुख वाली होती है ऐसा किसी को लगता नहीं है, जन्म दुख है, मृत्यु दुख है, बुढ़ापा दुख है, व्याधि दुख है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, इसमें यदि हम समझेंगे कि ये क्या दुख वाले तो हम उसमें से निकलने का प्रयत्न करेंगे। कि इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते, एतद् यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जानने वाला जो है उसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं, और सभी क्षेत्रों में सभी शरीरों में एक ही क्षेत्रज्ञ है और वह मैं हूं। ऐसा भगवान ने कहा। उसके बाद में ये जो संक्षेप में कहा हुआ जो वाक्य था उसका उन्होंने विस्तार करके ये कहा कि इदम शरीर क्षेत्र जो कहा तो उसका अर्थ केवल इस शरीर को क्षेत्र इतना ही नहीं समझना, तो अव्यक्त और सूक्ष्म सृष्टि और संपूर्ण स्थूल सृष्टि जिसमें इच्छा द्वेष सुख दुख ये सब आ जाते हैं वे सभी क्षेत्र कहलाते हैं। माने जो जो कोई जड़ पदार्थ है ज्ञान का विषय बनता है वह सब क्षेत्र है और इसको जानने वाला क्षेत्रज्ञ कहलाता है। अब क्षेत्र को बताने के बाद इसको जानने वाला जो चैतन्य क्षेत्रज्ञ है उसका स्वरूप दिखाना चाहिए था, बताना चाहिए था, लेकिन भगवान आगे कुछ गुणों की बात करने लग गए, सद्गुणों की। उनका अभिप्राय यह था कि इस चैतन्य का ज्ञान तभी हो सकता है जब हमारा मन जो है अत्यंत शुद्ध और सूक्ष्म बन जाए, एकाग्र बन जाए। उस मन को शुद्ध करने के लिए क्या करें, तो यहां पर कहा कि अपने मन को सद्गुणों से भर लो। अब उनमें से कुछ हम कल देख चुके हैं, अमानित्व अदम्भित्व अहिंसा क्षांति आर्जवम आचार्य उपासनम शौचम स्थैर्यम आत्मविनिग्रह इंद्रियार्थ के लिए वैराग्य अहंकार का अभाव जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम ये कल हमने देखे थे। अब आगे का श्लोक पढ़िए, नवा श्लोक। असक्तिरनभिष्वंगः पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वं इष्टानिष्टोपपत्तिषु आसक्ति ही। आसक्ति माने आसक्ति का अभाव। अब ऐसा है यहां पर हमारे पास जितनी एक अपने शरीर से लेकर और जितनी भी वस्तुएं वगैरह होती हैं उनमें एक सामान्य प्रकार की आसक्ति होती है, अटैचमेंट होता है, एक होता है सामान्य। और उसके आगे कहा कि अनभिष्वंगः, अनभिष्वंगः का अर्थ होता है तादात्म्य। देखो आसक्ति और दूसरे का तादात्म्य। देखो जैसे अपने यहां की चीजें जो हैं वो कोई खो नहीं जाए, टूट नहीं जाए, उसको कोई हाथ नहीं लगाए, ऐसा हमें जो लगता है उसको आसक्ति कहते हैं। जैसे ये मेरा हारमोनियम है मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता कि कोई उसको हाथ लगाए, तो इसे कहते हैं आसक्ति। कोई उसको हाथ लगाए तो मैं हाथ क्यों लगाया तुमने, तो एक आदमी ने कहा तो क्या पैर लगाऊं, तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया। तो एक तो हुए ये सामान्य प्रकार की एक जो आसक्ति होती है ना अपने घर में वस्तुओं के साथ, लेकिन यही जब आसक्ति और बढ़ जाती है तो उसे कहते हैं अभिष्वंग। अभिष्वंग का अर्थ होता है कि यदि ये वस्तु गई तो मैं मर गया, उसके बिना तो मैं बिल्कुल नहीं रह सकता। इतना तादात्म्य उसके साथ में होना कि बस वो नष्ट हो जाए तो मैं नष्ट हो गया, वो पुष्ट हो जाए तो मैं पुष्ट हो गया, ऐसे जो मन में भाव आता है उसे कहते हैं अभिष्वंग। अब भगवान कहते हैं कि भाई जब तुम्हारे मन में ये इस प्रकार की एक सामान्य आसक्ति होगी, किसी ने जरा वस्तु को हाथ लगा दिया बस तुमको एक एक पता नहीं क्या करने वाला है, तो मन में कितना विक्षेप होगा जरा बताओ।
3: इंजन सब बर्बाद, रोड ट्रिप।
4: टायर वर्ल्ड एंड ऑटो लिमिटेड फॉर नो ऑन रोड टेंशन। टायर वर्ल्ड स्पेशलाइजिंग इन मैकेनिकल टायर्स, व्हील अलाइनमेंट, व्हील सर्विसिंग, वाटर फिटनेस, इवन मैग व्हील्स, एंड नॉट फॉरगेटिंग 9 केजी एलपीजी गैस फॉर ओनली $25।
3: चल पड़ा, चल पड़ा।
4: टायर वर्ल्ड एंड ऑटो लिमिटेड। Limited. Trucks, mail in tires and auto repairs. 153 East Tameki Road, East Tameki. Phone 274-3220.
0: Tire World and Auto Limited के सौजन्य से ये था हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम गीता संदेश, प्रस्तुतकर्ता स्वामी तेजो मयानंद जी महाराज.
1: Discount floorings are back with amazing deals. Commercial carpet for rental and offices from only $40 meter. Solution dyed nylon carpets from $99 meter. Domestic vinyl from a crazy $39 meter. Huge special on end of line products and off cuts on carpet and vinyl. Garage carpets from as low as $69 meter. Carpet overlocking is also available. Discount floorings 4x11 Norman Spencer Drive, Manukau. Phone 2784847.
2: भोजन सामग्री तथा घर गृहस्थी के सामानों के लिए इधर उधर भटकने भागने से तो अच्छा है सीधे ही 322 ग्रेट साउथ रोड पपटवेटवे के विलेज फूड मार्ट में चले आए. क्या नहीं है यहाँ, प्रेशर कुकर विद 5 ईयर वारंटी, शादी भंडारा के लिए लोहे तथा एल्युमिनियम हंडियां, इडली हंडियां, हवन कुंड, फिजी तावा, अलग साइजेस में मूर्तियां, शिवलिंग, जलधारा, नाग देवता और बर्तन आदि सभी कुछ तो मिलते हैं यहाँ. दुकान खुलती है सातों दिन, तो मिलनसार सेवा, सस्ता दाम और उम्दा माल के लिए आइए 322 ग्रेट साउथ रोड पपटवेटवे में स्थित विलेज फूड मार्ट में.
6: किंग्स बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स की ओर से आप प्रस्तुत है हमारा अगला कार्यक्रम भजन गंगा.
0: कानूनी मामला कोई भी हो, पेशेवर तरीके से सुलझाते हैं 346 ग्रेट साउथ रोड पपटवेटवे के सिंग्स बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स. टेलीफोन नंबर 2787323. तो घर या बिजनेस की खरीद बेन, बिजनेस अग्रीमेंट, कंपनी एंड कमर्शियल लो, बैंक्रप्सी तथा फैमिली लो संबंधी कोई मामला हो, पेशेवर सेवा तथा सही सलाह प्रदान करने को तैयार हैं 346 ग्रेट साउथ रोड पपटवेटवे में स्थित सिंग्स बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स के अनुभवी वकील शैलेंद्र सिंह तथा उनके लो कंसल्टेंट पिता सिंगतोका फिजी के भूतपूर्व निवासी मंगल सिंह. तो याद रहे सिंग्स लॉयर्स का फोन नंबर 2787323. और अब ये है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम भजन गंगा. भजन गंगा का श्री गणेश हम गणेश जी के नाम से ही करने जा रहे हैं. आज के हमारे प्रथम कलाकार हैं साउथ अफ्रीका के मनोगरण पेरुमल अपने ही संगीत पर.

मनोगरण पेरमल अपने साथियों के साथ सुना रहे थे गणेश वंदना, और ये है माउंट एल्बर्ट के वासुदेवन अपने साथियों के साथ। इनके इस भजन पर तबली प्रसंगत दिया है धीरेन्द्र सिंह ने।

ओम नमः शिवाय। शिवजी मूल मंत्र के साथ ये थे अपने साथियों के साथ माउंट एल्बर्ट के वासुदेवन। तबले पर संगत कर रहे थे माउंट एल्बर्ट के ही धीरेन्द्र सिंह। और आज के अपने इस कार्यक्रम को हम समाप्त करने जा रहे हैं सैक्रामेंटो अमेरिका के अमीर शंकर की आवाज से।

0: राम कृष्ण गुणगान सुना रहे थे आज के हमारे अंतिम कलाकार भजन गंगा के अंतर्गत। सैक्रामेंटो अमेरिका के अमीर शंकर अपने साथियों के साथ तबली पर संगत कर रहे थे सुरेंद्र शंकर।
1: कानूनी मामला कोई भी हो पेशेवर तरीके से सुलझाते हैं 346 क्रेप साउथ रोड पपटोई के सिंग्स बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स। टेलीफोन नंबर 2787323। तो घर या बिजनेस की खरीद बेन बिजनेस अग्रीमेंट कंपनी एंड कमर्शियल लॉ बैंक्रप्सी तथा फैमिली लॉ संबंधी कोई मामला हो पेशेवर सेवा तथा सही सलाह प्रदान करने को तैयार है 346 क्रेप साउथ रोड पपटोई में स्थित सिंग्स बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स के अनुभवी वकील शैलेंद्र सिंह तथा उनके लॉ कंसल्टेंट पिता सिंगतोका फिजी के भूतपूर्व निवासी मंगल सिंह। तो याद रहे सिंग्स लॉयर्स का फोन नंबर 2787323।
2: 346 ग्रेट साउथ रोड पपटोई के सिंग्स बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स की ओर से अभी आप सुन रहे थे भजन गंगा।
3: आपको पता है 322 ग्रेट साउथ रोड पपटोई में स्थित है विलेज फूड मार्ट, जहाँ मिलती है भोजन सामग्री की हर जरूरत के सामान। फ्रोजन फूड्स में तो स्पेशलाइज करते ही हैं, साथ ही रखते हैं इंडियन स्पाइसेस एंड ग्रोसरीज, हंडी बर्तन आदि सभी किचन वेयर, पंडित सीधा पैक, क्रिया कर्म तथा टोटल पूजा आइटम्स भी।
4: दुकान खुलती है सातों दिन, तो मिलनसार सेवा, सस्ता दाम और उम्दा माल के लिए आइए 322 ग्रेट साउथ रोड पपटोई में स्थित विलेज फूड मार्ट में।
5: Radio Tirana, keeping you up to date with everything Indian in Auckland. News, music, community events and Bollywood. It's all here on your Indian radio station, Radio Tirana, 1386 AM.
0: 1386 AM पर आप सुन रहे हैं अपना साप्ताहिक प्रसारण। ये है तीन घंटे का प्रभु मिलन और आपके साथ हैं आपके साथी नित्यानंद सुंदर।

0: अभी आप सुन रहे थे आर्य प्रतिनिधि सभा न्यूजीलैंड का साप्ताहिक प्रोग्राम आर्य संदेश। आज के प्रवचन को प्रस्तुत किया ईस्ट ओकलैंड आर्य समाज के सुनंदा कुमार जी ने।
1: ऑकलैंड आर्य समाज की ओर से सूचित किया जाता है कि उनका साप्ताहिक सत्संग हर रविवार के सुबह 10 बजे और मध्याह्न 12 बजे के बीच होता है वैदिक सेंटर पर 32 क्लेस्को एवेन्यू पवाटोईटोई में। भोजन की व्यवस्था भी रहती है। सभी धर्म प्रेमियों को सादर आमंत्रण है। और जानकारी के लिए फोन करें अरविंद राज को 02154386 पर। वैदिक ट्रस्ट की ओर से सूचित किया जाता है कि अगर आप शादी विवाह आदि अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए वैदिक सेंटर को हाया करना चाहते हैं तो फोन करें सुधीर सेन को 02181414 पर।
2: आपको पता है 322 ग्रेट साउथ रोड पवाटोईटोई में स्थित है विलेज फूड मार्ट, जहां मिलती हैं भोजन सामग्री की हर जरूरत के सामान। फ्रोजन फूड्स में तो स्पेशलाइज करते ही हैं, साथ ही रखते हैं इंडियन स्पाइसेस एंड ग्रोसरीज, हंडी बर्तन आदि सभी किचन वेयर, पंडित सीधा पैक क्रिया कर्म तथा टोटल पूजा आइटम्स भी। दुकान खुलती है सातों दिन, तो मिलनसार सेवा, सस्ता दाम और उम्दा माल के लिए आइए 322 ग्रेट साउथ रोड पवाटोईटोई में स्थित विलेज फूड मार्ट में।
3: डिस्काउंट फ्लोरिंग बैक विद अमेजिंग deals. Commercial carpet for rental and offices from only $40 meter. Solution dyed nylon carpets from $99 meter. Domestic vinyl from a crazy $39 meter. Huge special on end of line products and off cut sewn carpet and vinyl. Garage carpets from as low as $69 meter. Carpet overlocking is also available. Discount floorings 4x11 Norman Spencer Drive, Manukau. Phone 2784847.
1: 1386 AM पर ये है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम प्रभु मिलन। और प्रस्तुत है हमारा अगला कार्यक्रम 15 मिनट के लिए वेस्ट ऑकलैंड ड्राइविंग स्कूल के सौजन्य से धर्म यात्रा। प्रस्तुतकर्ता ओशो भगवान रजनीश जी महाराज।
4: ड्राइविंग लाइसेंस के लिए बेखट के जाइए माइटो असेसर एंड एनएलटीआई अप्रूव्ड कोर्स प्रोवाइडर वेस्ट ऑकलैंड ड्राइविंग स्कूल के पास। इनकी खूबियां ओवरसीज कन्वर्जन ट्रेनिंग एंड लाइसेंस क्लासेस 2 और 4, एंडोर्समेंट व्हीकल रिकवरी, डेंजरस गुड्स एंड फॉर्कलिफ्ट ट्रक ड्राइवर ट्रेनिंग एंड टेस्ट प्रिपरेशन क्लास 1 एंड एडवांस्ड ड्राइविंग कोर्स एंड असेसमेंट। अभी ही फोन करें 832-2640 या 021-1011-209 पर और बातें करें धर्म सिंह से, जो आपकी ही भाषा में सभी कानूनी उलझने दूर करेंगे। यहाँ डोर टू डोर लेडी इंस्ट्रक्टर की सेवा भी प्राप्त होती है। पता है 7 ब्रॉडफील्ड स्ट्रीट, मैसी, वेस्ट ऑकलैंड। फोन नंबर 832-2640 या 021-1011-209। फोन नंबर एक बार फिर 832-2640 या 021-1011-209।
5: सारी दुनिया श्रद्धा में गिरे आदमी को पागल कहेगी, जैसे प्रेम में गिरे आदमी को पागल कहती है। सारी दुनिया कहेगी कि सम्मोहित हो गए हो, होश खो दिया, विचार खो दिया, किस पागलपन में पड़े हो, समझो। लेकिन जिसको बाण लग गया, सारी दुनिया फीकी और उदास हो जाती। जिसको बाण लग गया, वो कैसे कहे अपनी मीठी पीड़ा को किसी से। पीड़ा कहे ठीक नहीं, सिर्फ मीठा कहे काफी नहीं। एक तो मिठास को बताना ही मुश्किल, फिर पीड़ा भरी मिठास को बताना तो और भी मुश्किल और जटिल हो गया। और लोग कहेंगे पागल हो, पीड़ा कहीं मीठी होती, क्योंकि उन्होंने तो एक ही पीड़ा जानी, जहरीली, कड़वी पीड़ा जो दुख देती है।

शुरू हुई। इसलिए वाण खोपड़ी में कभी नहीं लगाया हुआ बताया जाता, कभी तुमने ना देखा होगा, वो सदा हृदय में लगता है। खोपड़ी में वाण लग ही नहीं सकता, वो काफी सघन है, वो सब तरफ से बंद है, हृदय कोमल द्वार है। तुम तैयार हो तो वाण सदा तैयार है, अगर तुम चूके तो अपने कारण चूकोगे। गूंगा हुआ बावला, बहरा हुआ कान, पांव थे पंगुल भया, सतगुरु मारिया बान, माया दीपक नर पतंग, भ्रमिभिम इवे परंत। और मनुष्य ऐसा है, अज्ञान से भरा हुआ, माया में डूबा हुआ, मूर्छा से संत्रस्त, जैसे पतंग दिए पर आ आके गिरता है, ऐसा ही मनुष्य माया पर आ आके गिरता है। जो देखता है वो हैरान होता है कि इस पतंग को क्या पागलपन हुआ है, ये मरेगा दिए पे गिरकर, दिए से कोई जीवन न मिलेगा, मौत आएगी, लेकिन पतंग वहीं वहीं आके गिरता है और मरता है। और दूसरे पतंग भी देख रहे हैं लेकिन उनको भी कुछ होश नहीं आता, वो भी दिए की तरफ चले आ रहे हैं। सुबह ढेर लग जाता है पतंगों का जो दिए पे मरे, लेकिन बाकी पतंगों को कुछ भी खबर नहीं होती, होश ही नहीं होता। कबीर कह रहे हैं माया दीपक नर पतंग, माया है दीपक इस संसार का, सारा लोभ वासना कामना तृष्णा वह है दीपक, और मनुष्य एक पतंग की भांति है। और कितनी बार गिरा इसी दिए पर और मरा, जन्मों जन्मों से यही चल रहा है, फिर भी वही वासना खींचती कामना खींचती, फिर दिए की तरफ चल पड़ते। हर बार जन्म के बाद मौत के सिवा और कुछ तो मिलता नहीं, हर जीवन मौत में ही तो बदल जाता है। पतंगे ही नहीं मरते, हम भी तो आखिर में मरे हुए ढेर पर पड़े पाए जाते हैं। सारे जीवन की निष्पत्ति मौत है, फिर भी कोई जागता नहीं। माया दीपक नर पतंग, भ्रमि भ्रमि एवे परंत, और बार बार उसी भ्रम में, बार बार उसी नासमझी में, बार बार उसी अंधकूप में आके आदमी गिर जाता है। कहे कबीर गुरु ज्ञान थे एक आध उपरंत, लेकिन जिसके हृदय में गुरु का बाण लग गया उसके जीवन में क्रांति घटित हो जाती। कोई एक आध जो गुरु का निशाना बन गया, जो गुरु का निशाना अपने को बनने दिया, वो कोई एक आध उभर जाता, फिर मौत विलीन हो जाती, फिर जीवन का सनातन नाद बचता है, फिर जीवन की शाश्वतता उपलब्ध होती, फिर वही बच रहता है जिसकी कोई मौत नहीं, और उसे पाए बिना शांति ना मिलेगी। मेरे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं हमें शांति चाहिए, शांति मिल नहीं सकती जब तक कि तुम अमृत को न पालो। मिल ही कैसे सकती है, मौत सामने खड़ी है, शांति मिल कैसे सकती। थोड़ी बहुत देर को छिपा दो, ढांक दो, भूल जाओ, ये हो सकता, लेकिन शांति मिल नहीं सकती। शांति तो अमृत की छाया है, इसलिए मैं यहां तुम्हें शांति के उपाय नहीं बता रहा हूं। शांति में मेरी उत्सुकता नहीं, मेरी उत्सुकता तो अमृत में। तुम जिस दिन अमृत को पालोगे शांति अपने आप बंधी चली आती, वो तो अमृत की दासी है, छाया है, और मृत्यु की छाया है अशांति। तुम चाहो कि मृत्यु को पार हुए बिना तुम शांत हो जाओ, ये असंभव, और अच्छा है कि ये असंभव है। अगर मृत्यु के रहते तुम शांत हो जाओ तो धर्म का द्वार तुम्हारे लिए सदा के लिए बंद हो जाए। महाकरुणा है अस्तित्व की कि वो तुम्हें शांत नहीं होने देता जब तक कि तुम अंतिम द्वार को पार ना कर जाओ, नहीं तो तुम न मालूम किसी कूड़े घर पर बैठ के और शांत हो गए होते, तुम न मालूम कोई तिजोरी पकड़ के बैठ रहते छाती से लगा के और शांत हो गए होते, तुम वहीं सड़ जाते। नहीं, परमात्मा तुम्हें छोड़ेगा नहीं, परमात्मा तुम्हें दकाता ही रहेगा जब तक कि वास्तविक घटना

0: और वो घटना है कि तुम अमृत को जान लो। कहे कबीर गुरु ज्ञान थे एक आध उबरंत। गुरु ज्ञान तो बहुतों को बांटता है पर एक आध उबरता है। हजारों लेते एक आध तक पहुंचता है, हजारों सुनते हैं एक आध सुनता है, हजारों चलते हैं एक आध ही पहुंचता है। बात क्या है? कहीं गुरु और शिष्य के बीच गड़बड़ हो जाती है। गुरु कुछ कहता है, शिष्य कुछ सुनता है। तुम जब तक सोचते रहोगे तब तक तुम वही ना सुन पाओगे जो गुरु कहता है, तुम कुछ और सुन लोगे, तुम अपने को मिश्रित कर दोगे, तुम गुरु के ज्ञान में अपना अज्ञान डाल दोगे। तुम गुरु के ज्ञान से भी अज्ञान ही ले पाओगे, तुम पंडित हो जाओगे, प्रज्ञावान ना हो सकोगे। इसलिए बहुत सुनते कोई एक आधी सुन पाता है। जीसस हर बार कहते हैं, जब भी वे बोलते हैं, कि जिनके पास कान हो वो सुन ले, जिनके पास आंख हो वो देख ले। हर बार हर बोलने के पहले उनका पहला वचन यही है। क्या जीसस अंधों और बहरों के बीच ही रहते थे? निश्चित ही बुद्ध कृष्ण क्राइस्ट अंधों और बहरों के बीच ही रहते। रोज मुझे अनुभव होता है कि जो मैं कहता हूं तुम कुछ और सुनते हो। जब लोग आके मुझे कहते हैं कि आपने कल ऐसा कहा, तब मुझे पता चलता है। मैं अगर कहूं कि सघन उपाय करना पड़ेगा तभी तुम पा सकोगे। मेरे पास लोग आके कहते हैं कि सघन उपाय तो होता नहीं, हो ही नहीं सकता, क्योंकि और हजार काम है। और मन में इतनी शक्ति भी नहीं है कि सघन उपाय कर सके, तो ये तो हमसे ना हो सकेगा। मैं कभी बोलता हूं कि किसी उपाय की जरूरत नहीं, तुम सिर्फ शांत होकर बैठ जाओ, तो लोग मुझसे आकर कहते ये तो हो ही नहीं सकता। वही लोग जो कह गए थे सघन उपाय नहीं हो सकता, मैं कहता हूं सिर्फ बैठ जाओ, तो ये तो हो ही नहीं सकता। खाली कैसे बैठे आप, कुछ करने को बताएं। आलंबन तो चाहिए, कोई विधि कोई उपाय तो चाहिए, नहीं तो खाली कैसे बैठे। दोनों मार्गों से आदमी पहुंचता है, या तो सब विधि छोड़ के खाली बैठ जाओ तू भी पहुंच जाता है, कोई बाधा नहीं, लेकिन सब नहीं छूटता। वो कहते हैं कुछ तो आलंबन चाहिए, और या फिर किसी विधि में इतने लीन हो जाओ कि पीछे कुछ भी ना बचे। वो कहते हैं ये भी नहीं होता। तो वो कहते हैं हम बीच का कोई रास्ता निकाल लेते, थोड़ी थोड़ी विधि करेंगे, थोड़ा थोड़ा शांत बैठेंगे। उन्होंने अपने को मिला लिया, उन्होंने अपना अज्ञान डाल दिया। जो आग मैंने दी थी उसे उन्होंने कुनकुनी कर लिया। अब ज्यादा से ज्यादा वो कुनकुने हो जाएंगे, लेकिन वाष्पीभूत कभी भी ना हो सकेंगे। तुम अपने को मत मिलाओ, तुम जो भी मिलाओगे वो गलत होगा, क्योंकि तुम गलत हो। लेकिन गलत आदमी को भी ये भ्रांति होती है कि पूरा थोड़ी गलत हूं, थोड़ा बहुत होऊंगा। इस ख्याल में तुम पढ़ना ही मत, या तो तुम गलत होते हो पूरे, या तुम सही होते हो पूरे। मैंने अब तक ऐसा कोई आदमी नहीं देखा जो थोड़ा थोड़ा सही और थोड़ा थोड़ा गलत हो। ऐसा आदमी होता ही नहीं, ऐसे आदमी के होने का प्रकृति में उपाय ही नहीं है। साथ साथ प्रकाश और अंधकार नहीं रहते। या तो तुम्हारे भीतर प्रकाश होता है या अंधकार होता। तुम कहो कि आधे में तो प्रकाश है और आधे में अंधकार है, ऐसा होता नहीं। क्योंकि अगर प्रकाश होगा तो वो आधे में अंधकार को ना बचने देगा, और अगर आधे में अंधकार है तो आधा प्रकाश कल्पना होगा। लेकिन तुम कभी इस भ्रांति में मत पड़ना जिसमें सभी पढ़ते, तब तुम सुन ना पाओगे। तुम अपना ही गणित लगाए चले जाते हो। तुम कुछ करते हो जो तुमने ही ईजाद कर लिया, जो मैंने कभी कहा नहीं। और तुम सुनते हो व्याख्या के साथ। जब कोई निर्व्याख्या सुनता है तब उसके पास कान है। जब कोई मन को और विचारों को और अपने अतीत को बीच में नहीं लाता, हटा देता है, सरका देता है किनारे पर, सीधा सुनता है, बीच में कोई विचार का पर्दा नहीं होता, तब कभी वो घटना घटती है। कहे कबीर गुरु ज्ञान थे एक आध उबरंत, और तब गुरु का ज्ञान उबार लेता है। ज्ञान नहीं उबारता, गुरु का होना उबार लेता है। क्योंकि उस घड़ी में जब तुम सारे विचारों को हटा के सुनते हो, तुम सुनते थोड़ी हो, तुम पीने लगते हो, तुम दूर थोड़ी रह जाते हो, तुम पास आ जाते हो, तुम भिन्न थोड़ी रह जाते हो, अभिन्न हो जाते हो। बीच में विचार ना हो तो भेद कहां होगा।
1: ड्राइविंग लाइसेंस के लिए बेखटके जाइए माइटो असेसर एंड NZTI अप्रूव्ड कोर्स प्रोवाइडर वेस्ट ऑकलैंड ड्राइविंग स्कूल के पास। इनकी खूबियां ओवरसीज कन्वर्जन ट्रेनिंग एंड लाइसेंस क्लासेस 2 and 4, एंडोर्समेंट व्हीकल रिकवरी, डेंजरस गुड्स एंड फॉर्कलिफ्ट ट्रक ड्राइवर ट्रेनिंग एंड टेस्ट प्रिपरेशन क्लास 1 एंड एडवांस ड्राइविंग कोर्स एंड असेसमेंट। अभी ही फोन करें 832-2640 या 021-1011-209 पर और बातें करें धर्म सिंह से, जो आपकी ही भाषा में सभी कानूनी उलझने दूर करेंगे। यहाँ डोर टू डोर लेडी इंस्ट्रक्टर की सेवा भी प्राप्त होती है। पता है 7 ब्रॉडफील्ड स्ट्रीट, मैसी, वेस्ट ऑकलैंड। फोन नंबर 832-2640 या 021-1011-209। फोन नंबर एक बार फिर 832-2640 या 021-1011-209। वेस्ट ऑकलैंड ड्राइविंग स्कूल के सौजन्य से ये था हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम धर्म यात्रा। प्रस्तुत करता ओशो भगवान रजनीश जी महाराज।
2: डिस्काउंट फ्लोरिंग्स अब बैक विद अमेजिंग डील्स। कमर्शियल कारपेट फॉर रेंटल एंड ऑफिसेस फ्रॉम ओनली $40 मीटर। सॉल्यूशन डाइड नायलॉन कारपेट्स फ्रॉम $99 मीटर। डोमेस्टिक वनल फ्रॉम अ क्रेजी $39 मीटर। ह्यूज स्पेशल ऑन एंड ऑफ लाइन प्रोडक्ट्स एंड ऑफ कट्स ऑन कारपेट एंड वनल। गैराज कारपेट्स फ्रॉम एज लो एज $69 मीटर। कारपेट Overlocking is also available. Discount floorings 4x11 Norman Spencer Drive, Manukau. Phone 2784847.
3: भोजन सामग्री तथा घर गृहस्थी के सामानों के लिए इधर उधर भटकने भागने से तो अच्छा है सीधे ही 322 ग्रेट साउथ रोड पपटवेटवे के विलेज फूड मार्ट में चले आएं। क्या नहीं है यहाँ? प्रेशर कुकर विद 5 ईयर वारंटी, शादी भंडारा के लिए लोहे तथा एल्युमिनियम हंडिया, इडली हंडिया, हवन कुंड, फिजी तावा, अलग साइजेस में मूर्तियाँ, शिवलिंग, जलधारा, नाग देवता और बर्तन आदि सभी कुछ तो मिलते हैं यहाँ। दुकान खुलती है 7वें दिन, तो मिलनसार सेवा, सस्ता दाम और उम्दा माल के लिए आइए 322 ग्रेट साउथ रोड पपटवेटवे में स्थित विलेज फूड मार्ट में।
1: यह है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम 1386 AM पर प्रभु मिलन, और प्रभु मिलन के अंतर्गत आज के कार्यक्रम का अंतिम भाग डिस्काउंट फ्लोरिंग्स लिमिटेड के सौजन्य से। अभी यह है तंबूरा भजन।
2: Discount floorings are back with amazing deals. Commercial carpet for rental and offices from only $40 meter. Solution dyed nylon carpets from $99 meter. Domestic vinyl from a crazy $39 meter. Huge special on end of line products and off cuts on carpet and vinyl. Garage carpets from as low as $69 meter. Carpet overlocking is also available. Discount floorings 4x11 Norman Spencer Drive, Manukau. Phone 2784847.
3: यह है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम तंबूरा भजन, डिस्काउंट फ्लोरिंग्स लिमिटेड के सौजन्य से। तंबूरा भजन के तमाम प्रेमियों का स्वागत करते हैं अपने इस कार्यक्रम में। आज के अपने साप्ताहिक कार्यक्रम तंबूरा भजन का श्री गणेश हम करने जा रहे हैं राजबली मोहन की आवाज के साथ। ये हमें सुनाने जा रहे हैं सुमिरनी।

0: गौरी के नंदन गणेश वंदना सुना रहे थे। आज के हमारे प्रथम कलाकार राजबली मोहन, ढोलक पर संगत दिया विमल ने।
1: कानूनी मामला कोई भी हो, पेशेवर तरीके से सुलझाते हैं 346 ग्रेट साउथ रोड पापा टोईटोई के सिंग्स बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स। टेलीफोन नंबर 2787323। तो घर या बिजनेस की खरीद बेन, बिजनेस अग्रीमेंट, कंपनी एंड कमर्शियल लॉ, बैंक्रप्सी तथा फैमिली लॉ संबंधी कोई मामला हो, पेशेवर सेवा तथा सही सलाह प्रदान करने को तैयार है 346 ग्रेट साउथ रोड पापा टोईटोई में स्थित सिंग्स बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स के अनुभवी वकील शैलेंद्र सिंह तथा उनके लॉ कंसल्टेंट पिता सिंगतो का फिजी के भूतपूर्व निवासी मंगल सिंह। तो याद रहे सिंग्स लॉयर्स का फोन नंबर 2787323।
0: और अब सुनील चंद है आज के हमारे दूसरे कलाकार, इनसे हम सुनने जा रहे हैं कृष्ण जी का महिमा गान।

0: मुहे दे दर्शन गिरधारी। गिरधारी के चरणों में इथी एक प्रार्थना सुनाने वाले सनील चंद।
1: आपको पता है 322 ग्रेट साउथ रोड पापाटोयटोय में स्थित है विलेज फूड मार्ट, जहाँ मिलती है भोजन सामग्री की हर जरूरत के सामान। फ्रोजन कुड्स में तो स्पेशलाइज करते ही है, साथ ही रखते हैं इंडियन स्पाइसेस एंड ग्रोसरीज, हंडी बर्तन आदि सभी किचन वेयर, पंडित सीधा पैक, क्रिया कर्म तथा टोटल पूजा आइटम्स भी।
0: दुकान खुलती है सातों दिन,
1: तो मिलनसार सेवा, सस्ता दाम और उम्दा माल के लिए आइए 322 ग्रेट साउथ रोड पापाटोयटोय में स्थित विलेज फूड मार्ट में।
2: Discount floorings are back with amazing deals. Commercial carpet for rental and offices from only $40 meter. Solution dyed nylon carpets from $99 meter. Domestic vinyl from a crazy $39 meter. Huge special on end of line products and off cuts on carpet and vinyl. Garage carpets from as low as $69 meter. Carpet overlocking is also available. Discount floorings 4x11 Norman Spencer Drive, Manukau. Phone 2784847.
0: डिस्काउंट फ्लोरिंग्स लिमिटेड के सौजन्य से आप सुन रहे हैं अपना साप्ताहिक कार्यक्रम तंबूरा भजन, और इस बार हम सुनने जा रहे हैं एक बड़े पुराने कलाकार की आवाज में भजन। ये हमें सुनाने जा रहे हैं ब्रह्मानंद की रचना, और ढोलक प्रसंगत कर रहे हैं चोनेमय काले।

0: प्रभु के अद्भुत खेल की रचना ब्रह्मानंद की वाणी सुना रहे थे आज के हमारे तीसरे कलाकार देवराज। ढोलक पर संगत कर रहे थे चोनेमय काले।
1: ड्राइविंग लाइसेंस के लिए बेखटके जाइए माइटो असेसर एंड NZTI अप्रूव्ड कोर्स प्रोवाइडर वेस्ट ऑकलैंड ड्राइविंग स्कूल के पास। इनकी खूबियां ओवरसीज कन्वर्जन ट्रेनिंग एंड लाइसेंस क्लासेस 2 और 4, एंडोर्समेंट व्हीकल रिकवरी, डेंजरस गुड्स एंड फॉर्कलिफ्ट ट्रक ड्राइवर ट्रेनिंग एंड टेस्ट प्रिपरेशन क्लास 1 एंड एडवांस ड्राइविंग कोर्स एंड असेसमेंट। अभी ही फोन करें 832-2640 या 021-1011-209 पर और बातें करें धर्म सिंह से, जो आपकी ही भाषा में सभी कानूनी उलझने दूर करेंगे। यहाँ डोर टू डोर लेडी इंस्ट्रक्टर की सेवा भी प्राप्त होती है। पता है 7 ब्रॉडफील्ड स्ट्रीट मैसी वेस्ट ऑकलैंड। फोन नंबर 832-2640 या 021-1011-209। फोन नंबर एक बार फिर 832-2640 या 021-1011-209।
0: 1386 AM पर आप सुन रहे हैं अपना साप्ताहिक कार्यक्रम तंबूरा भजन, और तंबूरा भजन को हम समाप्त करने जा रहे हैं रामोतरण की गाथा के साथ। आज के हमारे अंतिम कलाकार हैं रवि रविम्बा के सत्येंद्र कुमार। ढोलक प्रसंगत है विक्रमजीत शर्मा का।

0: ये थे आज के हमारे चौथे तथा अंतिम कलाकार रवि रविम्बा के सत्येंद्र कुमार सुना रहे थे रामावतरण की कथा। ढोलक प्रसंग था विक्रमजीत शर्मा का।
1: Discount floorings are back with amazing deals. Commercial carpet for rental and offices from only $40 meter. Solution dyed nylon carpets from $99 meter. Domestic vinyl from a crazy $39 meter. Huge special on end of line products and offcuts on carpet and vinyl. Garage carpets from as low as $69 meter. Carpet overlocking is also available. Discount floorings 4x11 Norman Spencer Drive, Manukau. Phone 2784847.
0: डिस्काउंट फ्लोरिंग्स लिमिटेड की ओर से ये था हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम तंबूरा भजन।
2: भोजन सामग्री तथा घर गृहस्थी के सामानों के लिए इधर उधर भटकने भागने से तो अच्छा है सीधे ही 322 ग्रेट साउथ रोड पापाटोटोई के विलेज फूड मार्ट में चले आएं। क्या नहीं है यहाँ? प्रेशर कुकर विद 5 ईयर वारंटी, शादी भंडारा के लिए लोहे तथा एल्युमिनियम हंडियां, इडली हंडियां, हवन कुंड, फिजी तावा, अलग साइजेस में मूर्तियां, शिवलिंग, जलधारा, नाग देवता और बर्तन आदि सभी कुछ तो मिलते हैं यहाँ। दुकान खुलती है सातों दिन, तो मिलनसार सेवा, सस्ता दाम और उम्दा माल के लिए आइए 322 ग्रेट साउथ रोड पापाटोटोई में स्थित विलेज फूड मार्ट में।
0: और इसके साथ ही समाप्त हुआ हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम 3 घंटे का प्रभु मिलन। लेकिन चलने से पहले एक जरूरी बात बताना चाहता हूँ। दुख का एक कारण ये भी है कि सच्चे इंसान को लोग समझते नहीं और गलत इंसान को लोग परखते नहीं। याद रहे, दुख का एक कारण ये भी है कि सच्चे इंसान को लोग समझते नहीं और गलत इंसान को लोग परखते नहीं। है नहीं सही बात? चिंतन मनन करें और अपने नाम से नित्यानंद सुंदर को इजाजत दें। हमारी और आपकी भेंट होगी अगले रविवार की सुबह 6 बजे एक बार फिर। तब तक के लिए नमस्कार।
3: और मई महीने का ये पहला इतवार की सुबह, और ऐसे में अपने जो घड़ी का समय है वो सुबह सुबह कशिश फूड्स के साथ मिलकर हमारे साथ मैच करते चलें। इस वक्त तराना स्टूडियोज की घड़ी में सुबह के 9 बज चुके हैं।

0: पेश करें रेडियो ताराना पर सुबह सुबह सामाजिक सूचनाएं, और याद रहे सामाजिक सूचनाएं जो होते हैं बिल्कुल मुफ्त में आप लेकर आते हैं, तो लीजिए सामाजिक सूचनाओं के साथ हमारे साथ ही पवन जी। टोराना
1: कम्युनिटी मैसेजेस। जागोरे कम लाइफ का आयोजन किया गया है पास्ता अनिल और रीना कान द्वारा। ये हिल्स चर्च 179 हिल्सबरा रोड में होने जा रहा है 9 मई को शाम को 6 बजे से, और जानकारी के लिए आप 0211017959 पर संपर्क कर सकते हैं। पुलिस रिक्रूटमेंट सेमिनार का आयोजन किया गया है शनिवार 23 मई को सुबह 9:30 से दिन में 12 बजे तक फिकलिंग कन्वेंशन सेंटर 546 माउंट एल्बर्ट रोड थ्री किंग्स में। श्री वेंकटेश्वरा देवस्थानम चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से भोजन मेला होने जा रहा है रविवार 17 मई की सुबह 11 से शाम को 4 बजे तक 378 आररीमू रोड रामारामा में। एंट्री बिल्कुल ही फ्री है। टोराना
0: कम्युनिटी मैसेजेस। दोस्तों अभी आप सुन रहे थे रेडियो ताराना पर सामाजिक सूचना यानी कि कम्युनिटी मैसेजेस, और आप भी अगर ये सोचते हैं कि आपके आसपास आपके समाज में कोई सामाजिक कार्य हो रहे हैं जिसकी जानकारी हमारे सुनने वालों तक पहुंचाना निहायत ही जरूरी है, तो याद रहे आप अपनी सामाजिक सूचनाओं को हम तक ईमेल कर सकते हैं पूरी डिटेल के साथ info@tarana.co.nz। ईमेल करने का जो एड्रेस ये नोट करें info@tarana.co.nz। और रेडियो तराना पर जो सामाजिक सूचनाएं होते हैं जो कम्युनिटी मैसेजेस होते हैं बिल्कुल मुफ्त में हम प्रसारित किया करते हैं।

0: रेडियो तराना का ये ब्रॉडकास्ट और ये प्रसारण जो है आप सुन रहे हैं 155 न्यू नॉर्थ रोड ईडन टेरेस ऑकलैंड सिटी न्यूजीलैंड से। और दोस्तों, क्या आपको पता है कि कौन से साल में हम यहाँ पर आए थे और इस नए स्टूडियो से आप तक पहली बार कब हमने जो ब्रॉडकास्ट ये पहुँचाया था? वो साल था 2016। यस, 2016 से हम 155 न्यू नॉर्थ रोड ईडन टेरेस वाले स्टूडियो से आप तक ये प्रसारण जो है, ये जो ब्रॉडकास्ट पहुंचा रहे हैं। याद दिला दे कि फिलहाल जितने भी दोस्त 1386 AM पर प्रोग्राम सुनने के आदि हैं, अभी आप इस फ्रीक्वेंसी पर जो प्रोग्राम ये नहीं सुन पा रहे हैं, अभी भी कई दोस्त हैं जो हमें मैसेज करते हैं 8812 पर, प्राइवेट मैसेजेस करते हैं, टेलीफोन करते हैं ये जानने के लिए कि आखिरकार 1386 AM पर वो प्रोग्राम क्यों नहीं सुन पा रहे हैं। तो आपको बता दें कि 1386 AM फ्रीक्वेंसी जो है, इस पर समय समय से हम मेंटेनेंस काम किया करते हैं और फिलहाल वही हो रहा है 1386 AM फ्रीक्वेंसी पर। बहुत ही जल्द ये जो मेंटेनेंस के काम ये समाप्त हो जाएंगे और फिर सुचारू रूप से आप इस फ्रीक्वेंसी पर जो प्रोग्राम्स वो सुन सकेंगे। लेकिन जब तक इस फ्रीक्वेंसी पर काम हो रहे हैं, तब तक आपके लिए, आपके समस्याओं के लिए जो तोड़ ये हमने निकाल रखा है, आपको करना यह है कि अपने मोबाइल फोन में, जी हाँ, अपने मोबाइल फोन में एकदम आसानी से, बहुत ही आसान है ये, कि आप रोवा ऐप डाउनलोड कर लें या फिर आई हार्ट रेडियो ऐप ये डाउनलोड कर लें और किसी भी वक्त कहीं से भी आप आराम से और ऊपर से डिजिटल साउंड में SSS का ये प्रोग्राम या फिर अन्य प्रोग्राम जो है, आप आराम से इंजॉय कर सकेंगे। तो आप अभी अपने मोबाइल फोन में या तो रोवा ऐप या तो आई हार्ट ऐप या फिर दोनों आप डाउनलोड करके हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। अगर आपको इन एप्स को डाउनलोड करने में किसी प्रकार की भी सहायता चाहिए, तो आप अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स की मदद ले सकते हैं या फिर हमें ईमेल करें info@tarana.co.nz या फिर आप हमें टेलीफोन कर सकते हैं या फिर टेक्स्ट कर सकते हैं 02195138 पर। तो अभी आप शुरू हो जाएं और डिजिटल एप्स जो है वो डाउनलोड कर लें और SSS का ये मजा ले सकते हैं हर इतवार की सुबह 9 से लेकर दोपहर 2 बजे तक।
1: You are about to witness an epic experience of music and sound trembling through your veins.

एक के बाद एक, एक से बढ़कर एक, और इसी तरह से मुख्तलिफ नगमे जो है आप तक हम पहुंचाएंगे अभी से लेकर दोपहर 2 बजे तक प्रोग्राम ट्रिपल एस में सुपर संडे विद सागर, जहां पर गाने वो जो आपके दिलों को टच कर जाएं। और इस प्रोग्राम में वो अंदाज, वो आवाज और वो अल्फाज होंगे जो आप भी गुनगुनाएंगे, और गुनगुनाते गुनगुनाते आप इन नगमों के जो मजे ये भी लेते रहेंगे। 8812 पर आप हमें टेक्स्ट भेजते रहें दोस्तों, या फिर आप हमें टेलीफोन भी कर सकते हैं। साथ में दुनिया के किसी भी कोने से फेसबुक के जरिए आप आज एक बार फिर हर सप्ताह की तरह ट्रिपल एस के इस प्रोग्राम से जुड़े रह सकते हैं। और अगर आज आपका जन्मदिन है या फिर शादी की सालगिरह है तो आप अपने मैसेजेस हम तक 8812 पर टेक्स्ट कर दें या फिर ईमेल करें info@tarana.co.nz। इन दिलकश गीतों के बीच कुछ मजेदार बातें, कुछ अपडेट्स और कुछ फिल्मी दुनिया से जुड़ी बातें, पर्दे के पीछे की कुछ खबरें, ये सभी आप तक हम पहुंचाएंगे आज एक बार फिर ट्रिपल एस के इस प्रोग्राम में। जितने भी दोस्त अब हमारे साथ इस प्रोग्राम से जुड़ रहे हैं, मेरे साथ जुड़े जा रहे हैं, आप सभी का हम स्वागत है कर रहे हैं, इस्तकबाल है ट्रिपल एस के इस प्रोग्राम में। और कई दोस्त अभी भी बिस्तर में हैं और लेटे लेटे आज इस प्रोग्राम को सुनने का इरादा रखते हैं आप, तो आपका भी हम स्वागत कर रहे हैं। और बिस्तर में लेटे लेटे ट्रिपल एस के इस प्रोग्राम को सुनने का जो मजा, ये कुछ और ही होता है, एक अलग लेवल पर ये होता है। और कई दोस्त फिलहाल रास्ते में हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, और कुछ दोस्त हैं जो जाग गए हैं, किचन की ओर जा रहे हैं, दिमाग में ये चल रहा है कि आज कॉफी पिए या फिर चाय पिए या फिर ऑरेंज जूस पिए, और इसके साथ साथ ब्रेकफास्ट में क्या लें, टोस्ट बनाएं या फिर स्क्रैम्बल एक तैयार करें, या फिर दोनों बना लें, या फिर कुछ इंडियन ब्रेकफास्ट का मजा लें। जब तक आप ये तय कर रहे हैं, ये डिसाइड कर रहे हैं, आइए आप तमाम दोस्तों के नाम ये दिलकश नगमा हमारी ओर से, और इसी गीत के साथ आइए आज के ट्रिपल एस के इस प्रोग्राम का आगाज करें। सागर की ओर से वेरी गुड मॉर्निंग।

0: best of music, best of shows. This is Radio Tarana.
1: इस मदर्स डे को बनाए और भी स्पेशल डिजिसेल के साथ बस भेजे $20 या उससे ज्यादा का टॉप अप या $300 या उससे ज्यादा का कैश ट्रांसफर इनकी किसी भी पार्टनर वेबसाइट से माई कैश वॉलेट के साथ टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स इन द पैसिफिक और आपका नाम तुरंत जाएगा ड्रॉ में टू विन वन ऑफ द $1,500 कैश प्राइज तो $20 का टॉप अप भेजे या $300 का कैश और डिजिसेल के साथ मौका पाए जीतने का $500 कैश T's and C's apply.
2: Anchor Protein Plus pouches and shakes are packed with protein, yumness, and make nourishment so deliciously simple. To get your protein in, all you need to do is crack open, enjoy, done. Anchor Protein Plus. Protein made deliciously simple.
3: अरे, Indelible Homes वाली गुड़िया इतनी बड़ी हो गई.
4: Hi, मैं हूँ गुड़िया. भाई गुड़िया जिसके भैया ने उसे रूम से बाहर निकाल दिया था अब मेरे पास मेरा अपना रूम है बहुत बड़ा बहुत अच्छा थैंक्स टू इंडेलिबल होम्स थैंक यू सी यू
3: नया घर बनाना हो या सब डिवाइड करना हो इंडेलिबल होम्स फोन 0800-233-111
5: इट्स 10 AM And you forgot about dinner at yours tonight. Your fridge is empty. Your place is a mess after watching last night's game. And you're still painted the same blue as your team. No time to do the shop? Get what you need with New World Online Same Day Click and Collect. T's and C's and exclusions apply. See newworld.co.nz for details.

0: are listening to your favorite Hindi radio station, Radio Tarana.
1: ये है सागर।
2: आइए दोस्तों, आज के इस बहुत ही खूबसूरत और चटक ब्राइट मौसम में एक और बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही मेलोडियस और रोमांटिक ये नगमा आपके लिए हमने चुना है 1982 की फिल्म शक्ति से। और शक्ति के इस नगमे को अपने प्यारे धुनों से सजाया संगीतकार आरडी बर्मन साहब ने, और इस गीत को प्यारे प्यारे दिल को टच कर देने वाले अल्फाज दिए गीतकार आनंद बख्शी जी ने। आवाजें हैं किशोरदा और साथ में लता जी की। और फिल्मी पर्दे पर फिल्म शक्ति में इस गीत को पिक्चराइज किया गया बिग बी, अमिताभ बच्चन और निहायत ही खूबसूरत और बहुत ही उच्च कोटि की अदाकारा वन ऑफ माय ऑल टाइम फेवरेट स्मिता पाटिल जी के लिए। तो आइए फिल्म शक्ति का वही मेलोडियस एवरग्रीन नगमा आप तक हम पहुंचाने जा रहे हैं, और इस गीत को हम पूरा का पूरा पेश करेंगे। मतलब इसकी जो शुरुआती भाग है लता जी की आवाज में, वो भी आज इस गीत में हमने आपके लिए शामिल किया।

0: राजस्थान की मेहमान नवाजी के तो क्या कहने, और अब वही मेहमान नवाजी और वही स्वाद आपको मिलेगा यहाँ ऑकलैंड में एट श्री रेस्टोरेंट। ऑथेंटिक राजस्थानी एंड डिलीशियस इंडियन वेजिटेरियन क्विजीन, राजस्थान की मशहूर दाल बाटी चूरमा, चाट आइटम्स एंड मेनी अदर स्नैक्स एंड फुल मील्स। ऑकलैंड के मशहूर शेफ रामेश्वर आप सबको निमंत्रण दे रहे हैं टू द श्री रेस्टोरेंट एट 11 bar 726 ग्रेट साउथ रोड, मानिकाव, ऑपोजिट रेनबोज इन। और यहाँ फंक्शंस होस्ट करने के लिए भी बड़ी जगह अवेलेबल है। श्री रेस्टोरेंट ओपन 6 days, क्लोज्ड ऑन वेंसडेज।
1: हार्वी नॉर्मन सुपर वीकेंड, स्पेंड $500 और मोर ऑन सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स एंड गेट 10% ऑफ योर परचेस प्राइस इन हार्वी नॉर्मन बोनस गिफ्ट कार्ड्स। दैट्स 10% ऑफ योर परचेस प्राइस बैक इन बोनस गिफ्ट कार्ड्स। शॉप इन स्टोर एंड ऑनलाइन, सी स्टोर्स और ऑनलाइन फॉर मोर डिटेल्स। हार्वी नॉर्मन सुपर वीकेंड, स्पेंड $500 और मोर ऑन सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स एंड गेट 10% ऑफ योर परचेस प्राइस इन हार्वी नॉर्मन बोनस गिफ्ट कार्ड्स। मस्ट एंड टुडे। टर्म्स कंडीशंस एंड एक्सक्लूसिव apply. Bonus gift cards valid for 36 months.
2: Introducing Pizza Hut's new Tikka and Paneer range. Rich tikka base, creamy paneer, bold flavor. Get the first taste from $10.99 pickup at Pizza Hut. Limited time only. T's and C's apply.
3: This Mother's Day, Michael Hill is celebrating all kinds of mums. From the new mums, the stepmums, and even the pet mums. Celebrate Mother's Day with pieces she'll love forever. Make sure to visit Michael Hill online or in store today.
4: This is Triple S with Sagar.
5: Triple S का ये सफर जारी है और आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए इधर कहते हैं कि नाकाम सी एक कोशिश किया करते हैं हम, नाकाम सी एक कोशिश किया करते हैं हम, उनसे उल्फत किया करते हैं। तकदीर में एक टूटा तारा नहीं लिखा, तकदीर में एक टूटा तारा नहीं लिखा, और एक हम है जो चांद की आरजू किया करते हैं।

0: Harvey Norman's Super Weekend. Spend $500 or more on selected products and get 10% of your purchase price in Harvey Norman bonus gift cards. That's 10% of your purchase price back in bonus gift cards. Shop in store and online. See stores or online for more details. Harvey Norman's Super Weekend. Spend $500 or more on selected products and get 10% of your purchase price in Harvey Norman bonus gift cards. Must end today. Terms, conditions and exclusions apply. Bonus gift cards valid for 36 months.
1: वीकेंड में घर का सामान लेना है तो ग्रोसरी शॉपिंग के लिए पहुंचे 5 मोजेल एवेन्यू ऑफ लिंकन रोड हेंडरसन, जहां पर है DH सुपरमार्केट। और वीकेंड स्पेशल्स में आपको मिलेंगे फ्रेश टमाटोज 199 kg, ओकरा 999 kg, होल मिल्क पाउडर फ्रॉम एक्लिप्स 1 kg 999, एंड मेनी मोर इन स्टोर डील्स एट DH सुपरमार्केट हेंडरसन।
2: घर को स्वस्थ रखने के लिए अपने बेडशीट्स और पिलो केसेस को हर 7 से 10 दिन में जरूर धोएं, ताकि डस्ट, माइट्स और एलर्जी दूर रहे। आप चिंता मत करो, ये काम स्टोरार्ड रोड लॉन्ड्री एंड ड्राई क्लीनर्स माउंट रॉस्किल को सौंप दो। यहाँ आपको 24/7 सेल्फ सर्विस लॉन्ड्रोमैट, या फिर आप अपने कपड़े यहाँ छोड़ दीजिए और यहाँ की टीम वॉश, ड्राई और फोल्ड करके आपको कपड़े दे देंगे। स्टोरार्ड रोड लॉन्ड्री एंड ड्राई क्लीनर्स 220 स्टोरार्ड रोड माउंट रॉस्किल, आसान, भरोसेमंद और 24/7।
3: श्री वेंकटेश्वर देवस्थानम चैरिटेबल ट्रस्ट आप सबको आमंत्रित करते हैं इनके भोजन मेला फूड कार्निवल में। सपोर्ट लॉर्ड वेंकटेश्वर टेम्पल प्रोजेक्ट,
4: ये होगा संडे 17 मई को 11 AM to 4 PM,
3: 378 RRIMU रोड, रामारामा, साउथ ऑकलैंड में। एंट्री फ्री है, फ्री सॉफ्ट ड्रिंक्स रहेंगे, फ्री फूड बाय शिवानी रेस्टोरेंट एंड इडली सांबर, ज्वेलरी एंड क्लोथिंग स्टोर्स, हेना आर्टिस्ट, फेस पेंटिंग, बाउंसी कासल्स और बहुत कुछ।
4: और इन्फॉर्मेशन के लिए कॉन्टेक्ट करें शिवानी जी को 0218700012 पर।
3: वन टेम्पल वन कम्युनिटी, इटर्नल ब्लेसिंग्स।
5: This is Radio Tarannum.

0: Rana. Time check.
1: Proudly brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better with Kashish Foods.
2: हाय दोस्तों, सुबह सुबह अपने जो घड़ी का समय है वो हमारे घड़ी से मैच करते हैं। चले याद दिला दे कि नए महीने मई का ये तीसरा दिन है, यानी कि इट्स 3rd of May 2026 संडे मॉर्निंग। कशिश फूड्स की ओर से सुबह के 10 बज चुके हैं।

आइए दोस्तों, अब समय हो गया है कि ये मौसमी रिपोर्ट जो है वो आप तक हम पहुंचाते चले, जबकि साल को खत्म होने में 242 दिन बाकी रह गए हैं, 242 डेज बाकी रह गए इस साल 2026 को समाप्त होने में। और इधर मौसम की ओर देखा जाए तो सबसे पहले ओकलैंड के लिए आज के लिए बताया गया है कि ओकलैंडर्स आज आप एकदम दिन भर चटक ब्राइट मौसम एंजॉय करने वाले हैं। और आज ओकलैंड में मैक्सिमम टेम्परेचर 19, मिनिमम 11 डिग्री सेल्सियस बताया गया है। मंडे की ओर देखें तो मंडे के लिए बताया जा रहा है कि ओकलैंड में थोड़े बहुत बादल छाए रहेंगे, अन्यथा मौसम साफ रहेगा। मैक्सिमम टेम्परेचर मंडे को ओकलैंड में 18 और मिनिमम 11 डिग्री सेल्सियस बताया जा रहा है। चलते हैं कैपिटल सिटी वेलिंगटन। वेलिंगटोनियंस गुड मॉर्निंग, कहिए कैसे हैं आप। और वेलिंगटन के लिए आज के लिए बताया गया है कि थोड़े बहुत बादल छाए रहेंगे, अन्यथा मौसम साफ रहेगा। दोस्तों मैक्सिमम टेम्परेचर आज वेलिंगटन में 14 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम 9 डिग्री सेल्सियस बताया गया है। मंडे की ओर देखें तो मंडे के लिए बताया गया है कि वेलिंगटन में बादल छाए रहेंगे, हल्की बारिश होने की संभावना है। मैक्सिमम टेम्परेचर 14 और मिनिमम 12 डिग्री सेल्सियस बताया जा रहा है। चलते हैं क्राइस्टचर्च, और क्राइस्टचर्च वासियों आज आपके लिए बताया गया है कि क्राइस्टचर्च में आज दिन भर मौसम एकदम चटक ब्राइट रहने वाला है, एंजॉय कीजिएगा। और आज क्राइस्टचर्च में मैक्सिमम टेम्परेचर 16 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम 6 डिग्री सेल्सियस बताया गया है। मंडे की ओर देखें तो मंडे के लिए भी बताया गया है कि क्राइस्टचर्च में मौसम एकदम चटक ब्राइट रहने वाला है, मैक्सिमम टेम्परेचर 14 डिग्री सेल्सियस मंडे को और मिनिमम 6 डिग्री सेल्सियस बताया गया है। और एज अ बोनस मंगलवार के लिए भी बताया गया है क्राइस्टचर्च वासियों की आपके वहां पर मौसम एकदम चटक ब्राइट रहने वाला है। तो ये थी मौसमी रिपोर्ट ओकलैंड, वेलिंगटन और साथ में क्राइस्टचर्च के लिए।

दोस्तों सुबह के 10 बज चुके हैं और आज है 3rd of May 2026 संडे मॉर्निंग। जितने भी दोस्त आज जन्मदिन मना रहे हैं या फिर शादी की सालगिरह है आपका, हमारी ओर से मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, ढेरों खुशियां आपको मिले। बस ऊपर वाले से हम यही दुआएं कर रहे हैं। अपने मैसेजेस पूरी डिटेल के साथ आप 8812 पर टेक्स्ट करके पहुंचा सकते हैं या फिर ईमेल कर दें info@tarana.co.nz के पते पर, और आगे चलकर आप दोस्तों को हम जरूर आज के इस प्रोग्राम में शरीक करेंगे। जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपने टेक्स्ट किया है 8812 पर और अपने दिली पैगाम आपने फेसबुक के जरिए हम तक पहुंचाए हैं, बस इत्मीनान रखें, आगे चलकर आज के इस प्रोग्राम में आपको हम जरूर शामिल करेंगे। याद रहे, इस साल को खत्म होने में 242 यानी कि 242 डेज बाकी रह गए हैं, तो अभी भी आपके पास कुछ वक्त है। अगर कुछ काम को आपको अंजाम देना है, कुछ काम पूरे करने हैं इस साल को खत्म होने से पहले, तो यू स्टिल गॉट 242 डेज। आइए दोस्तों इस नए घंटे की शुरुआत करें, और जितने भी दोस्त अब हमारे साथ इस कार्यक्रम से जुड़ गए हैं और आज एक बार फिर SSS के इस प्रोग्राम का हिस्सा बन रहे हैं, आप सभी का हम खास स्वागत कर रहे हैं। इस्तकबाल है SSS के इस प्रोग्राम में सुपर संडे विद सागर, जहां पर गाने वो जो आपके दिल को टच कर जाएं। वैसे आपने ब्रेकफास्ट तैयार कर लिया है या फिर अभी भी आप किचन में हैं, ब्रेकफास्ट बना रहे हैं? टोस्ट बस होने ही वाला है, चाय बन चुकी है, कॉफी आपने बना लिया है और अब टोस्ट का इंतजार कर रहे हैं, या फिर कल आपने कुछ ज्यादा ही जो खाने डिनर के लिए बना लिया था अब वही आप माइक्रोवेव करके खाने जा रहे हैं। आपको भी हमारी ओर से वेरी गुड मॉर्निंग। अपना जो ब्रेकफास्ट ये आप इंजॉय करते रहें। कुछ दोस्त रास्ते में हैं, सफर कर रहे हैं हमारी तरह, काम पर जा रहे हैं, आइए आज के इस प्रोग्राम में आपको भी हम शामिल करें। तो याद रहे, जितने भी दोस्तों ने अपने दिली पैगाम चाहे टेक्स्ट या फिर फेसबुक के जरिए हम तक पहुंचाए हैं, आप इत्मीनान रखें, इंतजार करें, आगे चलकर इन दिलकश गीतों के साथ आपको हम जरूर याद फरमाएंगे। और खुशी होती है एज अ फैमिली हम रहते हैं, और अगर आपको ये नहीं पता होता है कि आपके परिवार के सदस्य, आपके जो फ्रेंड्स, वो कहाँ पर है, क्या कर रहे हैं, तो SSS का ये प्रोग्राम सुनते रहें और फेसबुक पर जो कॉमेंट्स है वो पढ़ते रहें, आपको पता चल जाएगा कि आपके जो फैमिली एंड फ्रेंड्स वो कहाँ पर है, क्या कर रहे हैं। सुनील कुमार और आशा कुमार, आपने भी फेसबुक वॉल पर कमेंट किया है कि फिलहाल आप फिजी में हैं और छुट्टियां एंजॉय कर रहे हैं, तो देयर यू गो। अगर आपको ये पता नहीं था कि आपके जो फैमिली एंड फ्रेंड्स हैं उधर फिट्ज़गेराल्ड पापाटोएटोए के सुनील कुमार और आशा कुमार कहाँ हैं, तो SSS के इस प्रोग्राम के जरिए चलो आपको पता चल गया कि वो फिजी में हैं और हॉलीडे एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन SSS के इस प्रोग्राम का साथ देना नहीं भूलते, तो इसके लिए शुक्रिया। और आइए आपको भी हम प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं। वंस अगेन सागर की ओर से वेरी गुड मॉर्निंग।

0: जी एजे के घर दिया और हमें
1: तुम्हारे पास तो है घर,
0: वो तो हम खरीदा है, तुम नहीं देगा हमें कुछ।
1: ये तुम लोग को जो मंगता हमसे है, हमें दे देगा कि नहीं यार?
0: रान दो, नहीं मंगता।
1: तुम चाहे मुंह फुलाओ चाहे चिल्लाओ, एक सेंट नहीं देगा।
0: हाँ सब लेके जाना।
1: हाँ हम लेके जाएगा, लड़कन तो हमने कंगाल कर दी यार, चल दो यहाँ से।
2: ताजी के नहीं तंग करो, अपन घर अपने बनवा लो। इंडेलिबल होम्स के रिंग करो 0800-233-111 पे।
3: हार्वी नॉर्मन सुपर वीकेंड, स्पेंड $500 और मोर ऑन सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स एंड गेट 10% ऑफ योर परचेस प्राइस इन हार्वी नॉर्मन बोनस गिफ्ट कार्ड्स। दैट्स 10% ऑफ योर परचेस प्राइस बैक इन बोनस गिफ्ट कार्ड्स। शॉप इन स्टोर एंड ऑनलाइन, सी स्टोर्स और ऑनलाइन फॉर मोर डिटेल्स। हार्वी नॉर्मन सुपर वीकेंड, स्पेंड $500 और मोर ऑन सिलेक्टेड products and get 10% of your purchase price in Harvey Norman bonus gift cards. Must end today. Terms, conditions and exclusions apply. Bonus gift cards valid for 36 months.
4: इस मदर्स डे को बनाए और भी स्पेशल डिजी सेल के साथ। बस भेजे $20 या उससे ज्यादा का टॉप अप या $300 या उससे ज्यादा का कैश ट्रांसफर इनकी किसी भी पार्टनर वेबसाइट से माई कैश वॉलेट के साथ टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स इन द पैसिफिक, और आपका नाम तुरंत जाएगा ड्रॉ में टू विन वन ऑफ द 15 $500 कैश प्राइज। तो $20 का टॉप अप भेजे या $300 का कैश, और डीजी सेल के साथ मौका पाए जीतने का $500 कैश। टीज एंड सीज अप्लाई।
5: श्री वेंकटेश्वर देवस्थानम चैरिटेबल ट्रस्ट आप सबको आमंत्रित करते हैं इनके भोजन मेला फूड कार्निवल में टू सपोर्ट लॉर्ड वेंकटेश्वर टेंपल प्रोजेक्ट।
4: ये होगा संडे 17 मई को 11 AM टू 4 PM
5: 378 RRIMU Road रामा साउथ ऑकलैंड में। एंट्री फ्री है, फ्री सॉफ्ट ड्रिंक्स रहेंगे, फ्री फूड बाय शिवानी रेस्टोरेंट एंड इडली सांबर, ज्वेलरी एंड क्लोथिंग स्टोर्स, हेना आर्टिस्ट, फेस पेंटिंग, बाउंसी कैसल्स और बहुत कुछ।
4: और इन्फॉर्मेशन के लिए कॉन्टैक्ट करें शिवानी जी को 0218700012 पर।
5: वन टेम्पल वन कम्युनिटी इटर्नो ब्लेसिंग।
6: रेडियो तराना आपका अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन।
7: वुड यू लाइक टू रिलैक्स एंड एंजॉय योर संडे? योर संडे, संडे, संडे। आई लाइक टू रिलैक्स।

0: Get 10% of your purchase price in Harvey Norman bonus gift cards. That's 10% of your purchase price back in bonus gift cards. Shop in store and online. See stores or online for more details. Harvey Norman Super Weekend. Spend $500 or more on selected products and get 10% of your purchase price in Harvey Norman bonus gift cards. Must end today. Terms, conditions and exclusions apply. Bonus gift cards valid for 36 months.
1: क्या काम की भागदौड़ से कपड़ों का ढेर बढ़ता जा रहा है? वरी मत कीजिए, स्टोडार्ड रोड लॉन्ड्री एंड ड्राई क्लीनर्स मॉन्ट्रोस के लाभ की मदद के लिए तैयार हैं। यहाँ आपको मिलता है 24 आवर्स सेल्फ सर्विस लॉन्ड्रोमैट, या फिर आप अपने कपड़े छोड़ दीजिए और इनकी टीम वॉश, ड्राई और फोल्ड करके आपको बिल्कुल तैयार देगी। यहाँ सूट्स, बिजनेस शर्ट्स, ड्रेसेस और फॉर्मल वेयर के प्रोफेशनल ड्राई क्लीनिंग भी करते हैं, और इडुवे ब्लैंकेट्स और स्पोर्ट्स गेयर की सफाई भी यहाँ पर होती है। स्टोडार्ड रोड लॉन्ड्री एंड ड्राई क्लीनर्स, 220 स्टोडार्ड रोड मॉन्ट्रोस। आसान, भरोसेमंद और 24/7।
2: NZ Post is always nearby. With over 560 stores across the country, you can always count on us to keep bringing the services you need close to home. Find your local at nzpost.co.nz.
3: Get the tick from Mum this Mother's Day and shop massive store-wide savings this weekend at Briscoe's. Whether it's cozy bedding or kitchen favourites, shop Mum-approved deals and massive store-wide savings at Briscoe's. See online for T's and C's.
4: आप सुन रहे हैं रेडियो तराना।

0: बच्चों बताओ डिस्टेंस कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला है?
1: मैम डिस्टेंस इक्वल्स स्पीड इनटू टाइम।
0: जीनियस। अब बताओ रीपेमेंट बढ़ाए बिना मॉर्गेज जल्दी खत्म करने का क्या फॉर्मूला है?
1: मैम ग्लोबल फाइनेंस का मॉर्गेज जीनियस प्लान।
2: बच्चा जानता है कि मॉर्गेज जल्दी खत्म करने का यही फॉर्मूला है ग्लोबल फाइनेंस का मॉर्गेज जीनियस प्लान। फोन 09255500। टीज एंड सीज अप्लाई।
3: Do you need a new washing machine, dryer, fridge or dishwasher? Then don't miss this. Big Save's having a massive whiteware washout today. We've got New Zealand's best value whiteware deals, like get a Panasonic 6kg washing machine only $3.98 or a Samsung 236-litre fridge now only $7.99. Plus, we have stock. Take them home today, only at Big Save.
4: क्रेविंग हो रही है उस थिक और क्रीमी दही की जो घर पे मिलती थी, तो मिलवाते हैं आपको कशिश नेचुरल योगर्ट से, जिसका हर स्पून है एकदम डिलाइटफुल। 100% वेजिटेरियन, जेलेटिन फ्री एंड ग्लूटेन फ्री। स्मूदीज बनानी हो या मैरिनेशन मसाला या बस सीधा टब से खाने का दिल हो, तो इंजॉय करें कशिश नेचुरल योगर्ट, क्योंकि ये है नेचुरली डिलिशियस। Available at all Indian supermarkets across New Zealand. Bring home the taste of tradition. Kashish Natural Yogurt. India jana hai, to safar bhi to waisa hi hona chahiye. Fly with Air India from New Zealand. Easy return connections via Australia or Singapore to India. Aur phir seamless travel within India. Delhi ho ya Amritsar, Mumbai ho ya Ahmedabad. Air India connects you to every corner of India. Wahi apni bhasha aur wahi apna swad. Aur wahi friendly Indian hospitality ke saath. To agli baar ghar ka safar ho, fly Air India. For more information, visit your local travel agent today.
5: आज आपके साथ रेडियो तरराना पर सागर।
6: हाय दोस्तों, आज के इस चटक ब्राइट खुशनुमा मौसम में कुछ और भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपको भी हम शामिल करना चाहेंगे। आपने मैसेज किया है, टेक्स्ट किया है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलते हैं गुडवुड हाइट्स से मनेकाउ सिटी, जहां पर है रविचंद। रविचंद गुड मॉर्निंग ब्रो, कैसे हैं आप? और एक बार फिर ट्रिपल एस के इस प्रोग्राम का हिस्सा बने, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। भी हमेशा हमारे साथ जुड़े रहते हैं और साथ देते हैं। और अमित कुमार आइए इस अगले तराने में, आपको भी हम साथ लिए चले। और आने वाले दिनों में आपने एक संदेश हम तक पहुंचाया है और आपने रिक्वेस्ट की है कि हमारे सुनने वालों से हम ये जरूर शेयर करें कि उधर आने वाले दिनों में एक जो फंड रेजिंग ये की जा रही है या फिर किया जाएगा, एनजेड सुवा फुटबॉल क्लब जो है, हलाल चिकन पुलाव विद टोमेटो चटनी, ये उपलब्ध रहेगा इसी महीने की 23 यानी कि 23 मई को। पिकअप टाइम सुबह 11 से दोपहर 2 के बीच, 27 निकलस गिबन्स ड्राइव मनरेवा से आप जाकर जो पिकअप ये कर सकेंगे। तो अगर आपको भी चिकन पुलाव विथ टोमेटो चटनी ये चाहिए, एनजेड सुवा फुटबॉल क्लब जो है ये फंड रेजिंग कर रहे हैं, तो आप बिनेश प्रसाद को कॉन्टेक्ट करें 021-164-5591 पर, 021-164-5591 पर, और अभी से अपना जो ऑर्डर है ये आप दे सकते हैं। तो एनजेड सुवा फुटबॉल क्लब की सहायता करें इस फंड रेजिंग में और अभी से अपना जो ऑर्डर ये आप दे दें चिकन पुलाव विद टोमेटो चटनी के लिए। इधर आशिका जोहल जी, आपका भी स्वागत है, गुड मॉर्निंग। और रीमा सुंदर जी, साथ में श्याम सुंदर जी, नमस्कार, कहिए कैसे हैं आप? और आइए आज के इस प्रोग्राम में और इस अगले तराने में रीमा जी और श्याम जी आप दोनों को हम शामिल कर रहे हैं। इसके साथ साथ मंजू गौतम जी आप भी हमारा साथ दे रही हैं, आशा देवी गुड मॉर्निंग। और चलते हैं वेस्ट ओकलैंड, और वेस्ट ओकलैंड से शमी मनी और सुबर मनी जी आप दोनों का हम स्वागत कर रहे हैं, नमस्कारम। और यस, वेस्ट ओकलैंड में भी चटक ब्राइट मौसम आप इंजॉय करते रहें। इसके साथ साथ वर्षा जगदीश भाई आइए प्रोग्राम में, आपको भी हम शामिल करें। सुनीला सिंह आपका भी हम स्वागत कर रहे हैं, आपके हस्बैंड है मिस्टर जसबीर सिंह जिनका जन्मदिन कल आपने सेलिब्रेट किया, हमारी ओर से जसबीर मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। ज्ञान मुदलियार जी नमस्कारम, गुड मॉर्निंग आपको भी। और केतन कपाड़िया आपका भी हम स्वागत कर रहे हैं। नौशाद और रेहाना शरीफ आपका भी इस्तकबाल है, गुड मॉर्निंग। स्नेह शर्मा आइए प्रोग्राम में, आपको भी हम शामिल करें। और चलते हैं BNZ बैंक न्यूलिन ब्रांच लिनमोल में जो है, और यहाँ की अनु शर्मा गुड मॉर्निंग कार्यक्रम में आपका भी हम स्वागत कर रहे हैं। और उम्मीद है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए आप हमारे साथ जुड़ी हुई होंगी और ट्रिपल एस के इस प्रोग्राम का मजा आज डिजिटल साउंड में ले रही होंगी। बहुत ही जल्द 1386 AM जो फ्रीक्वेंसी है, इस पर जब मेंटेनेंस काम समाप्त हो जाएंगे तो सुचारू रूप से आप 1386 AM पर प्रोग्राम सुन सकेंगे। फिलहाल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर डिजिटल साउंड में ट्रिपल एस के इस प्रोग्राम का मजा लेते रहें। शीतल देव, गुड मॉर्निंग आपको भी, और वेलिंगटन से रानिया हुसैन, आपका भी हम इस्तकबाल कर रहे हैं। शबनम शर्मा, आप भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। और आइए अगले तराने में आप सभी को हम शामिल करें।

0: Harvey Norman's Super Weekend. Spend $500 or more on selected products and get 10% of your purchase price in Harvey Norman bonus gift cards. That's 10% of your purchase price back in bonus gift cards. Shop in store and online. See stores or online for more details. Harvey Norman's Super Weekend. Spend $500 or more on selected products and get 10% of your purchase price in Harvey Norman bonus gift cards. Must end today. Terms, conditions and exclusions apply. Bonus gift cards valid for 36 months.
1: न्यूजीलैंड के कई बड़े बड़े इवेंट्स में होने वाले जो बड़े बड़े माकी आप देखते हैं ना, अरे मनगाओ दिवाली सिख गेम्स में ये माकी इवेंट्स ऑकलैंड माकी एंड पार्टी हायर के हैं। 20 सालों से हैं बिजनेस में। इनके माकी बड़े स्ट्रांग होते हैं बॉस। घर पे फंक्शन हो तो टाइम पर माकी लग जाएगा और टाइम पर उतर भी जाएगा। इवेंट्स ऑकलैंड का नंबर लिखें 09265 0505 और सुनिए ये पोर्टल लू भी हायर पर देते हैं। इवेंट्स ऑकलैंड को कॉल करें 09265 0505
2: और तराना का नाम मेंशन करने पर आपको स्टेज हायर्स मंडप और माकीस पर अप टू 5% का डिस्काउंट भी मिलेगा।
3: Bunnings gift card is a great gift for Mother's Day because it unlocks the whole warehouse for Mum. She's in for a treat. She'd be like, oh my gosh, yes, now I can buy all those extra plants that I was looking for the front garden. Perfect. Bunnings
4: warehouse. Get the tick from Mum this Mother's Day and shop massive store-wide savings this weekend at Briscoe's. Whether it's cozy bedding or kitchen favourites, shop Mum-approved deals and massive store-wide savings at Briscoe's. See online for T's and C's.
5: A healthy relationship has both sides.
6: Speak out your heart to us by liking and following our Facebook page, facebook.com/radiotaranaNZ. You are tuned in with Sagar.

0: हे हैमिल्टोनियंस, गेस व्हाट, अब आपके यहाँ हैमिल्टन में आ गया है ग्लोबल फाइनेंस। फॉर एनी काइंड ऑफ होम लोन, बिजनेस लोन, कमर्शियल लोन, रीफिक्सिंग या रीफाइनेंसिंग के लिए कॉन्टेक्ट करें ग्लोबल फाइनेंस को, जो मॉर्गेज के साथ साथ इंश्योरेंस में भी स्पेशलाइज करते हैं। लाइफ, ट्रॉमा, हेल्थ इंश्योरेंस, हर चीज के लिए ग्लोबल फाइनेंस, नाउ इन हैमिल्टन एट यूनिट 26, 20 क्लाइड स्ट्रीट, हैमिल्टन ईस्ट। फोन 07577-0888। ग्लोबल फाइनेंस, नाउ इन हैमिल्टन।
1: श्री वेंकटेश्वर देवस्थानम चैरिटेबल ट्रस्ट आप सबको आमंत्रित करते हैं इनके भोजन मेला फूड कार्निवल में टू सपोर्ट लॉर्ड वेंकटेश्वर टेंपल प्रोजेक्ट।
0: ये होगा संडे 17 मई को 11 AM टू 4 PM,
1: 378 RRIMU रोड, रामा रामा साउथ ऑकलैंड में। एंट्री फ्री है, फ्री सॉफ्ट ड्रिंक्स रहेंगे, फ्री फूड बाय शिवानी रेस्टोरेंट एंड इडली सांबर, ज्वेलरी एंड क्लोथिंग स्टोर, हेना आर्टिस्ट, फेस पेंटिंग, बाउंसी कासल्स और बहुत कुछ।
0: और इन्फॉर्मेशन के लिए कॉन्टेक्ट करें शिवानी जी को 1-877-0012 पर।
1: One temple, one community, eternal blessing.
2: Fall in love with your home again with an ANZ Reno loan. A home loan top-up of up to $50,000 at just 2.5% per annum, fixed for 3 years. Minimum 20% equity eligibility. Lending rules, terms and fees apply. Available for a limited time. ANZ, we do how.
3: Radio Tarana, ka hai ye plan? बिजनेस को बनाए सुपरमैन,
0: अपने बिजनेस को लेकर जाइए नई ऊंचाइयों पर बाय एडवर्टाइजिंग ऑन द लीडिंग रेडियो स्टेशन, रेडियो तराना।

0: Call Ajeshni today on 021-96-1386 for sales on Tarrana. So yaad rakhna, number ghumana, 021-96-1386 for advertising on Radio Tarrana.
1: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन और आप सुन रहे हैं रेडियो तराना न्यूजीलैंड. थैंक यू.
2: हाय, मैं श्रीदेवी हूं, आप सुनते रहिए रेडियो तराना.

0: दोस्तों 1983 की एक और याद आप क्लेम ताज़ा कर रहे थे आज ट्रिपल एस के इस प्रोग्राम में, और इस गीत को हमने आप तक पहुंचाया उस फिल्म से जिसके जरिए पहली बार हमने बॉलीवुड के दो सुपरस्टार्स को एक साथ देखा। एक तो थे महानायक अमिताभ बच्चन और साथ में हुस्न की देवी श्रीदेवी जी। 1983 में ये फिल्म इसको तैयार की गई थी। फिल्म का नाम था इनकलाब और पहली मरतबा 1984 में दरअसल हमने अमिताभ बच्चन और श्रीदेवी जी को एक साथ बड़े पर्दे पर देखा था। और जब इस फिल्म का प्रमोशन हो रहा था तो ऐसे में ढेर सारे इनके जो फैंस हैं ये काफ़ी एक्साइटेड हो चुके थे और बेसब्री से ये इंतज़ार किया जा रहा था कि कब ये फिल्म थिएटरों में लगे। लेकिन उससे पहले बहुत ही ज़बरदस्त प्रचार किया गया था इस फिल्म को लेकर, क्योंकि पहली मरतबा दो सुपरस्टार्स एक साथ पेश किए जा रहे थे। और इस फिल्म के जो डायरेक्टर थे टी रामाराव जी, ये भी एक बहुत ही जाने माने नाम थे उस ज़माने में और बहुत ही उच्च कोटि के फिल्म निर्देशक ये थे। तो इनसे भी ये उम्मीद की जा रही थी कि इन्होंने इन दोनों कलाकारों को पूरी तैयारियों के साथ पेश करना है फिल्म इनकलाब में। और इसीलिए इस फिल्म ने जब इसको रिलीज़ कर दी गई तो इस फिल्म ने सिल्वर जुबली कम्प्लीट की। इस फिल्म में लाजवाब संगीत प्रदान किया था संगीतकार लक्ष्मीकांत और प्यारे लाल जी ने, और इस फिल्म के सभी गीतों को लिखने वाले गीतकार जो थे एज ऑलवेज वो थे आनंद बख्शी साहब। किशोरदा की आवाज और साथ दे रही थी आशा भोसले जी।
1: रेडियो तराना प्राउडली ब्रॉट टू यू बाय कशिश फूड्स। ईट बेटर लिव बेटर विद कशिश फूड्स।
0: हाय दोस्तों, अपने जो घड़ी का समय है वो हमारे घड़ी से आप मैच करते हैं। चलें, आज है 3 मई 2026 संडे मॉर्निंग। कशिश फूड्स की ओर से सुबह के 11:02 हो चुके हैं।
2: लॉस ऑफ अ लव्ड वन इज एन अनफिल्ड वैक्यूम डिमाइज न्यूज।
0: और अब लीजिए सुनिए एक शोक सूचना। दुख के साथ सूचित किया जाता है कि ओकलैंड के आनंद राजू और पूर्णिमा राव के पिता, स्वर्गीय पांजलि के पति, भूतपूर्व दलाई लामा फिजी निवासी और फिजी के एस्को मोटर्स के सर्विस मैनेजर अपल राजू की मृत्यु ओकलैंड में हो गई। अंतिम संस्कार 6 मई की सुबह 10 बजे बुधवार की सुबह 10 बजे 11 बाउडर वुड प्लेस वेरी के एंड्स फ्यूनरल होम एंड ऑन साइट क्रिमेशंस में किया जाएगा। शोक सहानुभूति के लिए आप टेलीफोन करें 02155-2677 पर। रेडियो सुनने वाले कृपया इस खबर को उनके दोस्तों और परिवार वालों तक पहुंचा दें। इसे दोबारा सुने। दुख के साथ सूचित किया जाता है कि ओकलैंड के आनंद राजू और पूर्णिमा राव के पिता तथा स्वर्गीय पांजलि के पति, भूतपूर्व दलाई लामा निवासी और भूतपूर्व एस्को मोटर्स के सर्विस मैनेजर अपल राजू की मृत्यु ओकलैंड में हो गई। अंतिम संस्कार 6 मई बुधवार की सुबह 10 बजे 11 बाउडर वुड प्लेस वेरी के एंड्स फ्यूनरल होम एंड ऑन साइट क्रिमेशंस में किया जाएगा। शोक सहानुभूति के लिए आप टेलीफोन करें 02155-2677 पर। रेडियो सुनने वाले कृपया इस खबर को उनके दोस्तों और परिवार वालों तक पहुंचा दें।
1: शोक सूचनाएं ऑकलैंड इंडियन फ्यूनरल होम की तरफ से।

बिल्कुल, आप सुन रहे हैं न्यूजीलैंड्स नंबर वन रेडियो तराना का यह ब्रॉडकास्ट, जबकि सुबह के 11:10 हो चुके हैं। ट्रिपल एस का यह प्रोग्राम जारी है और याद रहे दोपहर दो तक हम आपका साथ देने वाले हैं आज हमेशा की तरह। दोस्तों, पिछले सप्ताह शोक सूचनाओं के दौरान गलती से एक शोक सूचना हमने पढ़ दी थी जो नहीं पढ़नी चाहिए थी, इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। और कुछ दोस्तों ने हमें मैसेज किया और कुछ जो जानकारियां हम तक पहुंचाई उसकी पुष्टि की। तो पिछले सप्ताह जब शोक सूचनाएं हमने आप तक पहुंचाई थी, गलती से एक ऐसी शोक सूचना हमने ऑन एयर आपके लिए पढ़ी थी ट्रिपल एस के ही प्रोग्राम में, जो नहीं ऑन एयर जानी थी, इसके लिए हम आप सभी से माफ़ी चाहते हैं।

बिल्कुल सुनते रहो ट्रिपल एस विद सागर और ये प्रोग्राम हर इतवार की सुबह 9 से दोपहर 2 के बीच आपके लिए पहुंचाते हैं रेडियो तराना के सालिशान स्टूडियो से जो है 155 न्यू नॉर्थ रोड ईडन टेरेस। संडे की ये सुबह और आहिस्ते आहिस्ते मध्याह्न की ओर हम बढ़ रहे हैं और ऐसे में आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। 8812 पर आप हमें टेलीफोन या फिर टेक्स्ट भेज सकते हैं और टेक्स्ट के साथ साथ आप हमें टेलीफोन भी कर सकते हैं 09303-1386 पर। और हमेशा से हमने इस बात पर तवज्जो दिया है कि कहीं से भी आप द बेस्ट वे टू स्टे कनेक्टेड इज फेसबुक। और जितने भी दोस्त फिलहाल फेसबुक के जरिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपसे हमने ये भी जिक्र किया हुआ है कि अगर आप फेसबुक के जरिए हमारे साथ जुड़ते हैं तो मेक श्योर कि कमेंट सेक्शन में हेलो हाय या फिर गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून या फिर इमोजी का ही सहारा लेते हुए आप हेलो कर सकते हैं। सिर्फ लाइक बटन दबाकर अगर आप लाइक या हार्ट देकर गायब हो जाते हैं तो हो सकता है कि आपके जो डेडिकेशंस हो और आपके जो पैगाम हो वो मिस हो जाएं। तो आप एक्सप्रेस लाइन में आ जाएं और अगर आप लाइक बटन दबाते हैं, हार्ट देने की जहमत करते हैं, तो ज़रा सा और हल्का सा जहमत करें और कमेंट सेक्शन में जाकर हेलो हाय या फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म पे पहली बार आप हमारे साथ जुड़े हैं उसकी फीडबैक भी आप यहां पर डाल सकते हैं जब तक 1386 AM फ्रीक्वेंसी जो है ये आप नहीं सुन पा रहे हैं। तो ये भी आपसे हम जानना चाहेंगे कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ट्रिपल एस के इस प्रोग्राम को सुनने में क्या महसूस कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको, ये भी आप हमसे ज़रूर शेयर करें। वंस अगेन जितने भी दोस्त अब इस नए घंटे में हमारे साथ शामिल हो गए हैं, आपका स्वागत है, इस्तकबाल है आज के इस सफ़र में। और जितने भी दोस्त फिलहाल बेकरार है, बेकरारी के दौर से गुजर रहे हैं, वजह यह है कि आपका दिल कहीं लग चुका है, आपकी आंखों में कोई समा गया है, दिल और दिमाग अब इन दोनों ने एक दूसरे का साथ छोड़ दिया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें क्या ना करें, किस बहाने से उनके और करीब जाएं, बस ये बेकरारी आपको खाए जा रही है। तो आइए आपको और आपके बेकरार दिल को इस गीत में हम शामिल कर रहे हैं सागर की ओर से। गुड मॉर्निंग।

और अक्सर जवानियों में दिल बेकरार ही रहता है, और बेकरार होना भी चाहिए। और किसी ना किसी से आपको मोहब्बत अगर हो जाए तो फिर उस मोहब्बत को अंजाम तक भी पहुंचाने की पूरी कोशिश करें। आपको भी किसी से मोहब्बत हो गई है, कहीं आप दिल लगा चुके हैं, तो ऐसे में ये वाला गीत आपके लिए पेश कर रहे थे उस फिल्म से जिसमें लक्ष्मीकांत और प्यारेलाल जी ने लाजवाब संगीत प्रदान किया था, और आनंद बख्शी साहब ने इस फिल्म के सभी गीतों को अपने दिलरुबा अल्फाजों से सजाया था। और इस गीत में दो आवाज़ें थी, अगर आपने नोटिस किया होगा, एक तो थे अमित कुमार साहब और दूसरे थे सुरेश वाडेकर जी। और आप सोचेंगे कि आखिरकार दो आवाज़ें क्यों, तो जाहिर सी बात है कि पहले के ज़माने में जब फिल्मों में दो हीरोज़ होते थे या फिर दो कलाकारों पर गीत पिक्चराइज की जाती थी तो फिर उनके लिए अलग अलग आवाज़ों का इस्तेमाल किया जाता था। और इस गीत को अगर आपको याद होगा, फिल्म बेकरार में दो हीरोज़ पर पिक्चराइज किए गए थे 1983 में। फिल्म बेकरार में इस गीत को पिक्चराइज किया गया था, फिल्म के लीड हीरो संजय दत्त और साथ में उनके दोस्त का किरदार निभाने वाले जाने माने कैरेक्टर आर्टिस्ट जो आए तो थे हीरो बनकर फिल्मी दुनिया में, लेकिन बाद में चलकर एक सपोर्टिंग एक्टर बनकर रह गए और बहुत ही अच्छे अदाकार हैं। और जितने भी सपोर्टिंग रोल में इन्होंने अपने किरदारों को निभाया है हर एक फिल्म में ये छा जाते हैं। और ये एक्टर थे नूतन जी के साहबजादे, अपने ज़माने की बहुत ही कामयाब अभिनेत्री नूतन जी के साहबजादे मोनिश बेहल जी, जिनको आपने तेरी बाहों में पहली बार देखा जैकी शरफ की पत्नी के साथ बतौर हीरोइन, फिर उसके बाद उनको हमने पुराना मंदिर में भी देखा, और भी कुछ फिल्मों में उन्होंने काम किया, लेकिन फिर आहिस्ते आहिस्ते सपोर्टिंग रोल करने लगे। उसी दौरान 1983 की ये फिल्म बेकरार में संजय दत्त साहब के दोस्त का किरदार निभाया था। उससे पहले किसी ज़माने में संजय दत्त के पिता जो थे सुनील दत्त साहब और मोनिश बेहल की माँ जो थी नूतन जी, ये कुछ फिल्मों में बतौर हीरो और हीरोइन एक साथ काम कर चुके थे। और सबसे ज़्यादा लोकप्रिय फिल्म और चर्चित फिल्म जिसके गाने भी आज भी

0: बहुत ही मशहूर हैं। फिल्म मिलन कैसे हम भूल सकते हैं, जिसमें संजय दत्त के पिता सुनील दत्त साहब ने हीरो का किरदार निभाया था और मोनिश बिहल की माँ नूतन जी ने बतौर हीरोइन का जो किरदार वो निभाया था फिल्म मिलन में।
1: जिंदगी बहुत कीमती है तो फ्यूनरल भी अलग ही होना चाहिए, ठीक वैसे जैसे जिंदगी उन्होंने जी थी। ऑकलैंड इंडियन फ्यूनरल होम ने पिछले कई सालों से हमारी कम्युनिटी को बेस्ट फ्यूनरल सर्विस दी है। हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन और भी किसी भी रिलीजन की जरूरत को समझकर बिल्कुल सही तैयारी की जाती है। यहाँ इजी पे फ्यूनरल प्लान भी अवेलेबल है। इजी इंस्टॉलमेंट टर्म्स पर एडवांस पेमेंट के बारे में पता करने के लिए कॉल करें 2788600।
2: कौन?
3: मैं यमराज हूँ।
2: ओह जय हो महाराज, लेने आए हो तो चलो।
3: कमाल है जाने की इतनी जल्दी।
2: हाँ मैंने अच्छी लाइफ जी है अभी तक और आगे मेरे फैमिली का भविष्य भी एकदम सेट है। ग्लोबल फाइनेंस वालों ने मेरा लाइफ इंश्योरेंस एकदम अप टू डेट कर रखा है।
3: फिर तो तुम्हें यहाँ कुछ और दिन रहना चाहिए और ये ज्ञान सब में बांटना चाहिए।
2: ओके थैंक यू महाराज, मैं बांटता हूँ ये ज्ञान। सभी को कॉल करना चाहिए ग्लोबल फाइनेंस को 09255-5500 पर।
4: राजस्थान की मेहमान नवाजी के तो क्या कहने, और अब वही मेहमान नवाजी और वही स्वाद आपको मिलेगा यहाँ ऑकलैंड में एट श्री रेस्टोरेंट। ऑथेंटिक राजस्थानी एंड डिलीशियस इंडियन वेजिटेरियन क्विजीन, राजस्थान की मशहूर दाल बाटी चूरमा, चाट आइटम्स एंड मेनी अदर स्नैक्स एंड फुल मील्स। ऑकलैंड के मशहूर शेफ रामेश्वर आप सबको निमंत्रण दे रहे हैं टू द श्री रेस्टोरेंट एट 11 bar 726 ग्रेट साउथ रोड मानिकाव ऑपोजिट रेनबोज एंड। और यहाँ फंक्शंस होस्ट करने के लिए भी बड़ी जगह अवेलेबल है। श्री रेस्टोरेंट ओपन 6 days क्लोज्ड ऑन वेंसडे।
5: अजीम के साथ मंगल की रात 7 से।
0: दोस्तों इधर 24 मिनट हो गए हैं सुबह के 11 बजकर और आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए, जबकि मौसम भी अभी भी साथ दे रहा है और ऑकलैंड के लिए खास तौर से यही बतलाया गया है कि आज दिन भर मौसम एकदम चटक ब्राइट रहने वाला है। आपके यहाँ पर मौसम कैसा है? वैसे वेलिंगटन में भी मौसम साफ ही रहेगा, थोड़े बहुत बादल छाए रहेंगे और कल हल्की बारिश होने की संभावना है। और द लकी वंस आर क्राइस्टचर्च में जो दोस्त हमारे हैं, आज कल और परसों यानी कि इतवार, सोमवार और मंगलवार को क्राइस्टचर्च में मौसमी रिपोर्ट की ओर अगर देखा जाए तो बताया गया है कि मौसम एकदम चटक ब्राइट रहने वाला है। गीत संगीत का यह सफर रेडियो तराना पर जारी है ट्रिपल एस के इस प्रोग्राम के दौरान। और पिछला जो गीत आपने सुना फिल्म बेकरार से, उसमें दो आवाजें हमने आप तक पहुंचाई थी लक्ष्मीकांत और प्यारेलाल के संगीत पर, और अब दो को हम डबल कर देते हैं, 4 आवाजें आप तक हम पहुंचाने जा रहे हैं इस बार। एक बार फिर संगीत पर साथ दे रहे हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, गीत को लिखा है आनंद बख्शी साहब ने और आवाजें हैं एक बार फिर से अमित कुमार साहब की, और अमित कुमार साहब का साथ निभाने आ रहे हैं इस बार शैलेंद्र सिंह, अनुराधा पोडवाल जी और साथ में चंद्रानी मुखर्जी जी। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं टी रामाराव जी, बहुत ही जाने माने फिल्म मेकर रहे हैं ये और बहुत ही अच्छी अच्छी पारिवारिक फिल्में इन्होंने तैयार की हैं। अब ये कौन सी फिल्म का नगमा है आप जरा गीत सुने और सोचें और ये भी अंदाजा लगाएं कि इस फिल्म के इस गाने को, जिनको 4-4 प्लेबैक सिंगरों की आवाज में रिकॉर्ड करना पड़ा, आखिरकार ये 4 आवाजें जो हैं ये किन किन अदाकारों पर फिल्मी पर्दे पर पिक्चराइज किया गया, क्या आपको याद है? गाने का मजा लें और सोचें कि कौन सी फिल्म का यह नगमा है। और इन 4 प्लेबैक सिंगरों की आवाज जो है अनुराधा पोडवाल जी, शैलेंद्र सिंह जी, अमित कुमार जी और चंद्रानी मुखर्जी जी, इनकी आवाजों को किन 4 अदाकारों पर किस फिल्म में पिक्चराइज किया गया?

0: तेरे नाम के हम दीवाने हैं। यस, आपको भी जब किसी से मोहब्बत हो जाएगी, आप भी बस उनके ही नाम का गुणगान करेंगे और उन्हीं के नाम के दीवाने बनकर यहाँ वहाँ घूमते रहेंगे। अनुराधा पौडवाल, शैलेंद्र सिंह, अमित कुमार और चंद्रानी मुखर्जी की ये आवाज़ अभी आप सुन रहे थे। याद आया ये कौन सी फिल्म का नगमा रहा है और किन चार कलाकारों पर इस गीत को पिक्चराइज किया गया, इन आवाज़ों को पिक्चराइज की गई। फिल्म थी जुदाई, जिसे 1980 में तैयार की गई थी। इस फिल्म में मुख्य रोल में थे इज अ लीडिंग हीरो जंपिंग जैक जितेंद्र जी और साथ में थी एवरग्रीन रेखा जी। बहुत ही अच्छी कहानी है, अगर आप एक पारिवारिक फिल्म देखना चाहते हैं तो ज़रूर देख सकते हैं ये क्लासिक फिल्म जुदाई, जिसे 1980 में जाने माने निर्देशक टी रामा राव जी ने तैयार की थी। अब बात आती है कि इन चार आवाज़ों को किन कलाकारों पर पिक्चराइज की गई। तो एक तो थे सचिन पिलगांवकर, जो बाद में चलकर बहुत ही जाने माने एक्टर बने और साथ ही साथ डायरेक्टर भी बने, और यहाँ तक कि उन्होंने ये बात शेयर की है ऑन रिकॉर्ड कि फिल्म शोले के कुछ अंश हैं जो उन्होंने डायरेक्ट की हुई है उस जमाने में, जबकि वो एकदम नए नए आए हुए थे। सचिन के साथ नजर आएंगे जानी मानी सीरीज रामायण सीरीज में बने राम जी का किरदार निभाने वाले एक्टर अरुण गोविल, और इन दोनों हीरोज के साथ आपको नजर आएंगे इस गीत पर दो हीरोइंस जिन्होंने बहुत ही लाजवाब अभिनय किया अपने अपने किरदारों में। एक तो थी शोमा आनंद और दूसरी जो थी वो थी तमन्ना। तो ये चार अदाकारों पर, इन चार प्लेबैक सिंगरों के जो आवाज़ है वो पिक्चराइज की गई। सचिन पिलगांवकर, अरुण गोविल, शोमा आनंद और तमन्ना, इन चारों ने भी अपने अपने किरदार है इस फिल्म की कहानी के हिसाब से बहुत ही अच्छा निभाया। कभी मौका लगे तो इस गीत को भी आप चेकआउट कर सकते हैं। एवरग्रीन ये नगमा आज भी 1980 में बनी जरूर है, लेकिन आज भी बहुत ही फ्रेश इस गाने का संगीत, आवाज और लिरिक्स बहुत ही खूबसूरत, और ये फिल्म भी बहुत ही अच्छी रही है। सभी ने इस फिल्म में बहुत ही अच्छा काम किया, यहाँ तक कि देवेन वर्मा और साथ ही साथ विनोद मेहरा ने भी इस फिल्म में बहुत ही अच्छा काम किए हैं। अरुणा ईरानी भी आपको नजर आएंगी, आशा सचदेव जैसे जो कलाकार हैं इनको भी आप इस फिल्म में देख सकेंगे। तो फिल्म का नाम जुदाई, उसी फिल्म का ये ओरिजिनल साउंड ट्रैक आज ट्रिपल एस के सफर में।
1: इस मदर्स डे अपनी मम को एक ऐसा गिफ्ट दें जो पूरा साल उनके साथ रहे। iSubscribe.co.nz पर आप मैगजीन सब्सक्रिप्शन पर अप टू 56% की बचत कर सकते हैं, जहां पर आपको ओवर 2000 मैगजीन मिलेंगी। iSubscribe वो बेस्ट जगह जहां पर आपको अपनी मम के लिए मैगजीन मिल सकती है, प्लस इनका रिवॉर्ड्स प्रोग्राम ज्वाइन करने पर इंस्टेंट $5 का क्रेडिट पाएं। आज ही सेव करें iSubscribe के साथ iSubscribe.co.nz।
2: यार मुझे फीजी जाना था।
3: कब जाना है?
2: दिसंबर की छुट्टियां हो जाए तब जाएंगे।
3: रेंटल सॉर्ट आउट कर लिया?
2: नहीं यार, नहीं मिला कुछ।
3: आई थिंक यू शुड कॉन्टेक्ट कोस्टल रेंटल कार्स। इनके पास फैमिली कार्स, SUVs और सभी लग्जूरियस गाड़ियां हैं, और गाड़ियां अच्छी कंडीशंस में।
4: कोस्टल रेंटल कार्स, विजिट coastalrentalcars.com.fj और फॉर बुकिंग्स कॉल ऑन 0067965202228।
5: एक्सप्लोर फीजी द कोस्टल वे।
6: Get the tick from Mum this Mother's Day and shop massive store-wide savings this weekend at Briscoe's. Whether it's cozy bedding or kitchen favourites, shop Mum-approved deals and massive store-wide savings at Briscoe's. See online for T's and C's.
7: Daddy, kaise Ram Ram?
8: Theek beta, Ram Ram, ghar bane. Kahan tak pahuncha?
7: Painting hue Daddy.
8: Kitna acha builder mil gaye re? का नाम है उन लोगों के?
7: Indelible Homes।
8: हमारे पास भी 10-15 घर रहता, अगर हमारे टाइम पे ऐसा बिल्डर मिल जाता।
7: अभी भी सकता बनाए रेडी, बनाए के हमें दे दो।
8: वाह।
9: न्यूजीलैंड के मोस्ट ट्रस्टेड और एक्सपीरियंस सब डिविजन एंड बिल्डिंग स्पेशलिस्ट Indelible Homes। फोन 0800-233-111।
10: You are tuned into Radio Tarana।

बिल्कुल सुनते रहो ट्रिपल एस विद सागर, जहां पर गाने वो जो आपके दिल को टच कर जाए। और गानों के साथ साथ कुछ नवीनतम खबरें और फिल्मी दुनिया से और गीत और संगीत से जुड़े पर्दे के पीछे की कुछ बातें, ये भी आपसे हम शेयर करते रहते हैं। और इसी तरह से ये सफर सुबह 9 से लेकर दोपहर 2 के बीच हम और आप एक साथ तय करते हैं। और कुछ दोस्तों को आजकल जो घूमने का चस्का ये लगा हुआ है, और ये जो चस्का ये शुरू हुआ कई दोस्तों के साथ कोविड के दौरान, जबकि हम यहाँ वहाँ जा नहीं सकते थे और ओवरसीज जाना ये मुमकिन नहीं था उस दौरान, तो सभी ने ये सोचा कि चलो क्यों नहीं हम लोकल ही ट्रेवल करें। और यहाँ न्यूजीलैंड में भी कई ऐसी जगह है जो बहुत ही खूबसूरत है। हम अक्सर आप ये देखेंगे कि हमारे अगर कम्युनिटी में देखें तो हमारे लोग जो हैं ज़्यादातर इंडिया ही जाते रहते हैं या फिर फिजी ही जाते रहते हैं, लेकिन इन दोनों देशों के अलावा अगर आप न्यूजीलैंड का भ्रमण करेंगे तो ऐसी कई जगह हैं जो आपकी आंखें खोल देंगी। आप एकदम से चौंक जाएंगे कि वाओ, हम इतनी वर्षों से यहां रह रहे हैं, हमने कैसे ये जगह नहीं देखी। और कुछ दोस्तों को लैंडस्केप्स वगैरह जो है, माउंटेन्स वगैरह जो है, वो बेहद पसंद होता है, ये रास आती है। तो आपको हम बता दें कि अगर आपको ऐसी जगह पसंद है तो एक जगह है कासल पॉइंट, आप गूगल कर सकते हैं। गर्मी की छुट्टियों के दौरान अगर आप यहां पर जाएंगे समा में तो और भी खूबसूरत लगेगा, वेरी ब्यूटीफुल। अभी कल परसों ही मैं किसी को फोटोज दिखा रहा था कि कासल पॉइंट एक कितनी खूबसूरत लगती है जब आप गर्मी के मौसम में जाएं यहां पर। तो अगर आप भी लैंडस्केप्स वगैरह पसंद करते हैं तो ये जगह का नाम नोट कर लें, कासल पॉइंट, ये आप जाकर चेकआउट करें और फिर मुझे बताएं कि ये जगह आपको कैसी लगी। ट्रिपल एस का ये प्रोग्राम, और हमारे सुनने वाले ही हमारे सुपरस्टार्स होते हैं और आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ दोस्त अभी भी लंच खा रहे हैं और कुछ दोस्त अभी सोकर जागे हैं और ब्रेकफास्ट, लाइट ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं या फिर ब्रंच करने के मूड में हैं और तैयारियां भी आपने कर रखी हैं। तो आइए इस अगले नगमे में आपको भी हम साथ लिए चलें। कुछ दोस्त अभी भी बिस्तर में हैं, करवटें बदल रहे हैं और ये डिसाइड कर रहे हैं कि क्या हम आज बिस्तर से बाहर निकलें या ना निकलें। काफ़ी मुश्किल होता है, काफ़ी बड़ी डिसीजन ये होती है कि आप बिस्तर से निकले या ना निकले। अगर आपने रात को देर तक काम किया है या फिर कहीं शादी पार्टी में गए थे तो हमेशा याद रखें कि खुद को आराम देना शुड बी योर प्रायोरिटी, तभी आपकी जो सेहत ये बनी रहेगी और आप सेहतमंद रहेंगे। आइए इधर कार्यक्रम में जो दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ऐसे अगले गीत में आपको भी शामिल करें। इधर अनु और जेम्स, आपने भी टेक्स्ट किया है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और चलते हैं लवाहट वेलिंगटन, जहां पर हैं मुकेश और लीला रेड्डी जी, नमस्कारम आप दोनों को भी। साथ ही साथ चलते हैं इधर हैंडसन सेलिब्रिटी है कट्स, जहां के अमित प्रसाद और माला आप दोनों को शामिल कर रहे हैं आपके बेटे आयुष के साथ, शुक्रिया ट्रिपल एस के इस प्रोग्राम से जुड़े रहने के लिए। इधर कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए संदीप, आप भी हमेशा हमारे साथ जुड़े रहते हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। और संदीप, आपके ये दो प्यारे प्यारे बेटे आपकी पत्नी हैं और आपके साथ साथ आपके पेरेंट्स भी हमेशा ट्रिपल एस के इस प्रोग्राम से जुड़े रहते हैं। आपकी बहन है मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में, जो ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए हमारे साथ जुड़ जाया करती हैं, तो उनका भी हम स्वागत कर रहे हैं, शुक्रिया आज एक बार फिर हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए। इसके साथ साथ ट्रिपल एस के सफर को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं फावोना मांगरे साउथ ऑकलैंड, जहां पर है विग्नेश पिले और मोनिका नारायण, साथ में आपके बेटे हैं अक्षत और बेटी है अर्पिता और त्रिशली, उनका भी हम स्वागत कर रहे हैं। बहुत ही प्यारे नाम है ये, अक्षत, अर्पिता और त्रिशली, आप सभी का स्वागत है ट्रिपल एस के इस प्रोग्राम में, शुक्रिया टेक्स्ट पहुंचाने के लिए। इसके साथ साथ इधर और भी कुछ हमारे दोस्त हैं जो साथ जुड़े हुए हैं, आशीष बलसारा जी, आइए कार्यक्रम में आपको भी शामिल करें। और चलते हैं हैंडसन, जहां पर हैं
मिस्टर एंड मिसेज मनियम मुदलियार जी, और आज मिसेज मुदलियार अपना 60th बर्थडे भी सेलिब्रेट कर रही हैं इस वीकेंड, तो हमारी ओर से मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। और आपके जो हस्बैंड हैं मिस्टर मुदलियार जी, जो नॉर्थ वेस्ट में इनसे मुलाकात होती है, कल भी इनसे मुलाकात हम हुई, काफ़ी एक्साइटेड थे ये, उधर कनाडा जा रहे हैं आज, तो ऐसे में पहले सिडनी जाएंगे उसके बाद कनाडा जाएंगे, तो अपनी जो ये लॉन्ग छुट्टी है आप इंजॉय करें सिडनी और कनाडा में। जाते जाते भी आपने अपने फेवरेट बहनोई और फेवरेट बहन इनको याद किया है, उधर रानू में रहते हैं ये, इनसे भी कल दोनों से मुलाकात हुई, जेपी कमलेश नायडू जी और साथ में आपकी पत्नी है डोरिस जी, आप दोनों का हम स्वागत कर रहे हैं, नमस्कारम। और डोरिस जी कल काफ़ी एक्साइटेड थी अपने जो पोते हैं निकलस और उनके साथ फिल्म देखने का जो प्लानिंग ये कर रही थी आपने कहा, तो ऐसे में उम्मीद है कि डोरिस जी निकलस के साथ जो भी फिल्में उन्होंने पिक की थी आपने ज़रूर इन्जॉय किया होगा, और ये जो ग्रैंडसन और ग्रैंडमा क्वालिटी टाइम जो है आपने इन्जॉय की होगी। तो आइए आपको भी हम कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं, शुक्रिया साथ देने के लिए। इसके साथ साथ इधर चलते हैं पोरी रिवर वेलिंगटन, यहाँ से शाहजमीन निशा आपका भी इस्तकबाल कर रहे हैं, गुड आफ्टरनून। और आपकी अम्मी जो है वो फिजी से आई हुई हैं फिलहाल, हमने फेसबुक पर भी फोटोज़ देखें और खुशी हुई देखकर कि आप बेहद खुश हैं अपनी अम्मी जान के साथ, तो आपकी अम्मी जान जो हैं उनका भी इस्तकबाल है आज पहली बार ट्रिपल एस के इस प्रोग्राम में, और उम्मीद यही है, दुआ यही है कि जितने भी दिन आप अपनी बेटी शाजमीन के घर पर हैं उनके साथ हैं, उनके परिवार के साथ हैं, इंजॉय करें और जो क्वालिटी समय है वो बिताएं। साथ ही साथ इधर चलते हैं विंसेंट मनी, नमस्कारम, और माउंट वेलिंगटन से चंद्र प्रकाश और अनीत आपका भी हम स्वागत कर रहे हैं, वेरी गुड आफ्टरनून और शुक्रिया साथ देने के लिए। आइए कार्यक्रम में आपको भी हम शामिल करें।

0: Kick off the winter season with these winning deals from Rebel. Like 20% off all women's Puma, New Balance and Under Armour clothing and running shoes. And 20% off football, rugby and netball equipment. These deals and so much more are now at Rebel Sport. See online for T's and C's.
1: Siddhi Guruvar, Siddheshwar Brahmarishi Gurudev ki pavan upasthiti mein. न्यूजीलैंड में इन शहरों में जरूर पधारे। ऑकलैंड में उनका प्रवचन मंडे 27 अप्रैल, स्वामी नारायण कॉम्प्लेक्स पापा टोयटोय क्राइस्ट चर्च में, सैटरडे 2 मई रोलेस्टन कम्युनिटी सेंटर और वेलिंगटन में संडे 3 मई को इंडियन कल्चरल सोसाइटी हॉल पिठोनी में। प्रोग्राम्स 3 PM से शुरू होंगे, एंट्री फ्री है और महाप्रसाद भी होगा। और जानकारी के लिए उषा कुमार जी को कॉल करें 0210730829 पर।
2: हाँ मेरे लाल,
3: खुश हो ना माँ?
2: बहुत मेरे पुत्र।
3: नागर अच्छा है ना माँ?
2: बहुत वधिया है पुत्र।
3: आशीर्वाद दो ना माँ।
2: हमेशा खुश रहे, चढ़ दिया कलावा च रहे हैं मेरे पुत्र।
3: गालियाँ तो वैसे ही देती रहती है माँ।
2: चुप फिट्टे मुँह तेरे। ओ तो मेरा प्यार है मेरे बच्चे।
4: न्यूजीलैंड के मोस्ट ट्रस्टेड और एक्सपीरियंस सब डिविजन एंड बिल्डिंग स्पेशलिस्ट इंडेलिबल होम्स। फोन 0800-233-111।
5: इस मदर्स डे को बनाए और भी स्पेशल डीजी सेल के साथ। बस भेजे $20 या उससे ज्यादा का टॉप अप या $300 या उससे ज्यादा का कैश ट्रांसफर इनकी किसी भी पार्टनर वेबसाइट से माई कैश वॉलेट के साथ टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स इन द पैसिफिक। और आपका नाम तुरंत जाएगा ड्रॉ में टू विन वन ऑफ द $500 कैश प्राइज। तो $20 का टॉप अप भेजे या $300 का कैश और डीजी सेल के साथ मौका पाएं जीतने का $500 कैश। टीज एंड सीज अप्लाई।
6: दोस्तों, आपको हम याद दिलाते चले, जबकि 10 मिनट रह गए हैं दिन के 12 बजने में, ये आज नहीं लेकिन 23 मई के लिए है। न्यूजीलैंड सोका या फिर न्यूजीलैंड सुवा फुटबॉल क्लब जो है ये एक फंड रेजिंग करने जा रहा है और ये रहेगा 23 मई 2026 को। $10 में आप हलाल चिकन पुलाव विद टोमेटो चटनी ये खरीद सकेंगे। अभी से आप ऑर्डर कर दें और पिकअप एड्रेस जो है ये भी नोट कर लें अभी से, 27 निकलस गिबन्स ड्राइव मनीरेवा। बिनेश प्रसाद को आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 0211645591 पर। और अभी से आप अपना जो ऑर्डर ये इन्हें दे सकते हैं, $10 में हलाल चिकन पुलाव और टोमेटो चटनी। 23 मई को ये रहेगा, अभी नहीं, आज नहीं लेकिन 23 मई को। और न्यूजीलैंड सुवा फुटबॉल क्लब जो है ये फंड रेजिंग कर रहे हैं, तो आप भी इनकी फंड रेजिंग में इनकी सहायता करें, इनकी मदद करें। बिनेश प्रसाद इनको आप कॉन्टेक्ट करें, नंबर एक बार फिर से 0211645591। पिकअप 23 मई को सुबह 11 से दोपहर 2 के बीच। तो वंस अगेन फंड रेजिंग इवेंट है ये NZ सुवा फुटबॉल क्लब की ओर से, हलाल चिकन पुलाव विद टोमेटो चटनी $10 ऑन 23 मई 2026। और भी कहां पर क्या कुछ हो रहे हैं आपके आसपास, आपके समाज में, आप ये जानकारियां जो हैं हम तक पहुंचा सकते हैं, हमसे शेयर कर सकते हैं और आपकी जो जानकारी है वो हम हमारे सुनने वालों तक पहुंचाते चलेंगे अलग अलग प्रोग्रामों में। और आइए इधर, इस बार SSS के इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए कुछ संदेश हो जाए, उसके बाद गीत और संगीत का ये सफर और भी आगे बढ़ाएंगे।
7: Global costs are surging. Rising inflation is on the horizon. Beat the hike with the iFurniture Beat Inflation Sale. Grab designer sofas, dining, beds and more at warehouse prices. Don't just watch prices go up, get ahead of them. Shop smarter at iFurniture and lock in the value today. Shop online at ifurniture.co.nz with NZ wide shipping. Visit us in Auckland, Hamilton and Christchurch. iFurniture. Better, cheaper, smarter.
8: Chemist Warehouse has now opened in Fangaparoa. Find the new Chemist Warehouse in Fangaparoa next to the Coast Shopping Mall.
9: With the biggest range of all your health and beauty essentials at the lowest prices, they've got everything you need to look and feel your best. They are open 7 days a week from early till late, including public holidays. If you can't make it in-store, shop online 24/7. Chemist Warehouse, great savings every day.
10: राजस्थान की मेहमान नवाजी के तो क्या कहने, और अब वही मेहमान नवाजी और वही स्वाद आपको मिलेगा यहाँ ऑकलैंड में। at Shri Restaurant. Authentic Rajasthani and delicious Indian vegetarian cuisine. Rajasthan ki mashhoor dal bati churma. Chaat items and many other snacks and full meals. Auckland ke mashhoor chef Rameshwar aap sabko nimantran de rahe hain to the Shri Restaurant at 11 bar 726 Great South Road Manukau opposite Rainbow's Inn aur yahan functions host karne ke liye bhi badi jagah available hai. Shri Restaurant. Open 6 days, closed on Wednesday.
4: Moa Point Wastewater Treatment Plant se untreated wastewater Cook Strait mein discharge ho raha hai aur Wellington South Coast tak ja sakta hai. Water quality jankariyon ke liye hamesha yaad karke LAWA website dekhe. Tairne jane se pehle lawa.org.nz dekh le. South Coast ke Tarakena Bay se dur rahe. Untreated wastewater tat ke kareeb discharge ho sakta hai short notice par aur bagair chetavani ke. Khaas taur पर गंभीर बारिश के समय और जानकारी के लिए wellingtonwater.co.nz देखें.
11: It's a client who tried DIY. It did not work. It's that 5-minute job still going 5 weeks later. It's a supplier. Everything is out of stock. There's a lot on the line starting a business. To see how ANZ can help, search ANZ How To. Eligibility criteria, T's and C's apply.

0: Tarana. Time check.
1: Proudly brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better with Kashish Foods.
2: आइए दोस्तों, सुबह सुबह अपने जो घड़ी का समय है वो हमारे घड़ी से मैच करते हैं। चलें, आज है नए महीने मई का ये तीसरा दिन, यानी कि 3rd of May 2026। कशिश फूड्स की ओर से दिन के 12 बज चुके हैं।

गुड आफ्टरनून दोस्तों, और यस आप सुन रहे हैं रेडियो तराना का ये ब्रॉडकास्ट 155 न्यू नॉर्थ रोड ईडन टेरेस ऑकलैंड सिटी न्यूजीलैंड से। और ऐसे में उम्मीद यही है कि कई हमारे दोस्त हैं खासतौर से जो ऑकलैंड में, आपने अभी तक जो हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं रोवा ऐप या फिर आई हार्ट ऐप ये ज़रूर डाउनलोड कर लिया होगा। और डिजिटल साउंड में आज एक बार फिर ट्रिपल एस के इस प्रोग्राम का मजा ले रहे हैं, रेडियो तराना सुनते रहें। हमारा जो सोशल मीडिया है, फेसबुक है, ये आप फॉलो करते रहें यहाँ से, और इसके ज़रिए आप तक जो जानकारियाँ हैं हम पहुँचाएंगे, अपडेट करेंगे कि कब 1386 AM वाला जो फ्रीक्वेंसी है वो सुचारू रूप से काम करना शुरू करेगा। वी विल बी बैक, लेकिन इस पर जो मेंटेनेंस के काम ये किए जा रहे हैं। और कभी कभार आप सोचते हैं कि ये जो काम है एक दो दिन में ख़त्म हो जाएगा, एक दो सप्ताह में